0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। यह अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए।

0: राजस्व खुफिया निदेशालय ने पिछले 10 दिनों में देश भर में विभिन्न स्थानों पर 6 बड़े अभियान चलाए हैं। निदेशालय ने 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित भारतीय तारा कछुए, 12 जीवित टोके गेको, लगभग 24 किलोग्राम पेंगोलिन के शल्क और लगभग 500 ग्राम बाघ की हड्डियां बरामद की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। अमेरिका ओपन में अमेरिका की बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरिना सबालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिफा पेगुला से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आराध्यकों निवेदित भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। भोर वही उठ सुमरण कर ले।

0: वंदना कार्यक्रम में अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाड्रेकर व साथी पंडित भीमसेन जोशी और साथियों को। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: गांधी जी के समय भारत में सौंदर्य प्रतियोगिताएं नहीं होती थीं, लेकिन महिलाओं के प्रति गांधी जी के स्पष्ट विचार थे। गांधी जी औरत को व्यापार की वस्तु नहीं समझते थे। सुंदरता भी व्यापार की वस्तु बन जाए, ये बात उनकी कल्पना से बाहर की बात थी। और अब ये सौंदर्य प्रतियोगिताएं दिन पर दिन व्यापार बनती जा रही हैं। गांधी जी की दृष्टि में महिला पुरुष की सहचर थी, सहधर्मिणी थी। वो पुरुष के साथ बराबरी करते हुए हर कदम पर चल सकने के योग्य थी। उसका पुरुष के साथ समान दर्जा था। आजादी के आंदोलन में भी उसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। उसके कारण इस आंदोलन को विशेष बल मिला था। गांधी जी ने महिलाओं को समान अधिकार देने की वकालत की थी। उन्हें संपत्ति में भी समान अधिकार मिले, ऐसा वे चाहते थे। उनकी दृष्टि में महिलाओं का स्थान बहुत ऊंचा था। ऐसे में उन्हें भोग या व्यापार की चीज कैसे बनाया जा सकता है? गांधी जी ने कहा था, महिलाओं के पास वो शक्ति होती है जिसके कारण वो दुनिया में रहने के काबिल बन जाती हैं। वो इसे अपने लिए तथा अपने जीवन साथी और अपने परिवार के लिए सुंदर बना सकती हैं। ये तभी हो सकता है जब वो स्वयं को कमजोर नहीं समझें, अपना बचाव स्वयं करें तथा अपने शोषण से बचें। पुराणों में वर्णित सीता और द्रौपदी जैसी देवियों की भी उनके पुरुषों ने रक्षा नहीं की थी। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि कुछ धनी घरों की आराम तलब महिलाओं ने स्वयं को पुरुषों के हाथ का खिलौना बना दिया है। आज कुछ तथा कथित स्वतंत्र विचारों वाली आजाद महिलाओं को विश्व सुंदरियों के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। इन सौंदर्य प्रतियोगिताओं के आयोजन में सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माताओं और उन्हें बेचने वालों का विशाल संगठन सक्रिय होता है। उनका लक्ष्य होता है सौंदर्य प्रसाधनों के बढ़ते हुए व्यापार को विशेष गति देना। गांधी जी ने कहा था कि किसी महिला की सुंदरता उसके कीमती गहनों, उसकी चाल ढाल तथा कपड़ों से नहीं आंकी जा सकती। इसके लिए तो उसके अंदर झांकना पड़ता है। एक बार गांधी जी वायकोम सत्याग्रह के समय त्रावणकोर की महारानी साहिबा से मिले थे। वे उनके व्यवहार से अत्यंत प्रभावित हुए थे। उन्होंने इनसे मिलने के उपरांत कहा था, हर हाइनेस महारानी साहिबा से मिलकर मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। मैं तो समझता था कि मुझे किसी ऐसी महिला से मिलना पड़ेगा जो कीमती हीरे, जवाहरातों और रेशमी वस्त्रों से लदी फदी होंगी, लेकिन वो तो सादगी की साक्षात मूर्ति थी। गांधी जी की स्वदेशी अवधारणा में सुंदरता की जो परिभाषा थी, वो सुंदरता की नई परिभाषा से मेल नहीं खाती है।

0: आज की नई परिभाषा के मूल में विदेशी विचारों की गंध है। विश्व सुंदरी तथा अन्य सौंदर्य प्रतियोगिताओं के मूल में एक अपसंस्कृति काम कर रही है। अगर इसे रोका नहीं गया तो भारत की प्राचीन संस्कृति का लोप हो जाना असंभव नहीं।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु कार्यक्रम, विषय था गांधी जी की दृष्टि में नारी। आलेख डॉक्टर कृष्णचंद्र जैन का था और वाचन स्वर था राखी कटारा का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

कोप भवन में बैठी रानी कैकई ने पति के कभी के दिए हुए दो वर मांगे हैं, एक भरत को राजतिलक और दूसरा राज्य और कुटुंब आदि की ओर से उदासीन विरक्त मुनियों की भांति राम का 14 वर्षों तक वन प्रवास। राजा दशरथ सहम गए हैं, सहसा कुछ कहते नहीं बना, मानो वन में बाज बटेर पर झपट पड़ा हो। कैकई ने राजा के मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को नृशंस हथनी की तरह जड़ से उखाड़ फेंका है। धर्म की धूरी धारण करने वाले राजा दशरथ ने धैर्य धारण कर आंखें खोली तो प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई इस प्रकार दिखाई पड़ी जैसे म्यान से निकलकर नंगी तलवार खड़ी हो। राजा ने जी कड़ा करके अत्यंत नम्रता के साथ रानी को प्रिय लगने वाली वाणी में कहा, हे प्रिय, भरत और रामचंद्र तो मेरी दो आंखें हैं, मैं सवेरे ही दूत भेजकर भरत और शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा और शुभ मुहूर्त निकलवाकर सब तैयारियां करके डंके की चोट भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा गहरा प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। मैं 100 बार राम की सौगंध खाकर कहता हूं, राम की माता ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे पूछे बिना राम को युवराज पद देने की तैयारी कर ली थी। तुम तो स्वयं भी राम पर स्नेह रखती हो। हे प्रिय, अब हंसी और क्रोध छोड़कर उचित अनुचित का विचार करके दूसरा वर मांग लो, जिससे मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं।

अभी आप सुन रहे थे सतीश पाठिया के संगीत निर्देशन में तैयार श्री रामचरित मानस गान का आज का संगीतबद्ध प्रसंग, जिसे स्वरों से परोया था भूपेंद्र सिंह, मिताली बी सिंह और साथियों ने FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कुछ देर बाद यानी 6:50 पर कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का विषय रहेगा तोरिया की खेती और वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। साथ ही 7 बजे आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भोले बिस्तरे गीत और 7:18 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से।

नमस्कार। 41 मिनट पर आप आनंद लेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी का। इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनेंगे ब्रज वार्ता, ब्रज के भूले बिसरे तीर्थ। वार्ताकार होंगे वनवारी लाल शर्मा। साथ ही इस कार्यक्रम में आनंद लेंगे कुछ ब्रज लोकगीतों का। 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में कुछ फिल्मी नगमे। 9 बजे हमारे श्रोता सुनेंगे कथाक्रम कहानी पीपल की छांव। कहानीकार होंगे मोहम्मद हनीफ मदार।

9:30 पर हमारे श्रोता सुनेंगे गैर फिल्मी गजलें। आज कलाकार होंगे जगजीत सिंह। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम याद है जरा जरा क्रम में नरेश बल्होत्रा से ओपी सिंह की बातचीत। साथ ही 11:30 पर आप सुनेंगे मेरी पसंद स्टाफ द्वारा फिल्म संगीत। 12:00 हमारे श्रोता सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स मथुरा। इस कार्यक्रम में आज विषय रहेगा हड्डियों एवं जोड़ों से संबंधित रोग कारण और निवारण। साथ ही विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ए के पाठक वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल मथुरा।

नमस्कार। 30 मिनट पर आप सुनेंगे ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में रांझा गायन। कलाकार होंगे भगवान दास अज्ञानी। साथ ही 1:15 पर कार्यक्रम बहनों का होगा वनिता लोक कार्यक्रम। आज चर्चा का विषय रहेगा विश्व आत्महत्या विरोध निरोध।

बस। साथ ही इसी कार्यक्रम में चर्चा होगी बेटियों की शिक्षा में महिलाओं की भूमिका। साथ ही सुनेंगी पहनावा वार्ता, जीवन में प्रभावित करना फैशन, और वार्ताकार होंगी उमा अग्रवाल। तो बजकर 30 मिनट पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग, NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में ये जानकारी।
1: किसान भाइयों, तोरिया एक नकदी फसल है और ये ऐसे मौसम की फसल है जो खरीफ और रबी के बीच का जो समय रहता है उसमें इसको उगा करके किसान भाई एक अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं। क्योंकि ये कम अवधि की फसल है, करीब 2.5 से 3 महीने में ये तैयार हो जाती है, तो इसकी कटाई के बाद किसान भाई तुरंत गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। खरीफ की फसल कटने के बाद खेत की अच्छी प्रकार जुताई करके इसके लिए खेत तैयार किया जाता है। अच्छा ये रहता है कि जुताई के पश्चात पलेवा करके अच्छी नमी युक्त खेत में अच्छी तरह से खेत की तैयारी करके उसमें बुवाई की जाए। अच्छी प्रकार जुताई किसान भाई आप कर ही चुके होंगे और उसके बाद अब तोरिया की बुवाई का समय आ चुका है और आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। इसकी बुवाई के लिए जो प्रजातियां प्रचलित हैं वो 90 से 95 दिन में तैयार हो जाती हैं और जिसमें टाइप 9 एक प्रजाति है और इसके अतिरिक्त जो और प्रजातियां हैं उसमें PT 303 है, PT 507 है और एक प्रजाति है भवानी। भवानी प्रजाति इन प्रजातियों की अपेक्षा कम समय लेती है, 2.5 महीने में ही ये तैयार हो जाती है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा लेट भी बो सकते हैं, यानी कि 15 सितंबर के बाद इसकी बुवाई की जा सकती है, यानी कि सितंबर के महीने में इसकी बुवाई करके भी किसान भाई अधिक मुनाफा ले सकते हैं। और अन्य जो प्रजातियां हैं उनकी बुवाई आपको सितंबर के पहले पखवाड़े में ही कर देनी चाहिए। बीज जो है 1 हेक्टेयर के लिए 4 किलोग्राम लगता है। चूंकि इसका बीज बहुत पतला और महीन होता है इसलिए बीज को सूखी रेत या मिट्टी या बालू में मिला करके खेत में समान रूप से बिखेरना चाहिए। बीज को बोने से पहले शोधित करना जरूरी है जिससे कि बीज जनित रोगों से इसकी सुरक्षा हो सके। 2.5 ग्राम थीरम प्रति किलो बीज की दर से इसको उपचारित करके बोया जा सकता है। सिंचित दशाओं में उर्वरक में 80 से 100 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 200 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से देने में इसकी उपज में काफी बढ़ोतरी देखी गई है, साथ ही जो तेल की मात्रा है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। असिंचित दशा में उर्वरक की मात्रा काफी कम कर दी जाती है जिसमें 50 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाता है। इसकी बुवाई अगर आप लाइन में कर रहे हैं तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनें बना करके की जाती है और बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई से अधिक नहीं बोना चाहिए। और जब आपकी फसल करीब 15-20 दिन की हो जाए तो उस समय एक हाथ से निकोनी की जाती है, निकाई गुड़ाई की जाती है, तो निकोनी के समय पौधों का बिरलीकरण किया जाता है और इस बिरलीकरण में पौधों की आपसी दूरी करीब 15 सेंटीमीटर कर दी जाती है। और इस तरह अगर आप तोरिया की बुवाई करें तो खरीफ और रबी के मध्य का जो समय है उसमें तोरिया लेकर के आप एक अतिरिक्त आमदनी अपने खेत से ले सकते हैं।
0: कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, विषय था तोरिया की खेती और वार्ताकार थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। आकाशवाणी का जी मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: कार्यान्वयन सम्बद्धान् दिङ्निर्देशान् प्रकाशयिष्यति। मन्त्रालयेन सूचितं यत् आगामि DILRMP 3.0 इत्येतत् 5.065-65.5 शत कोटि रूप्यकाणां अनुमानित वित्त व्ययेन केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना रूपेण कार्यान्वितं भविष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन ओडिसायाः पृथक् पृथक् स्थलेषु अद्य प्रबलाति प्रबल वृष्टेः सम्भावनां दृष्ट्वा रक्तवर्ण परा संचेतना प्रसारिता अस्ति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

और आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का ये पहला नगमा। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म शोले से, आवाजें हैं किशोर कुमार और मन्ना डे और साथियों की।

इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म दीवार में, और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों को। फिल्म का नाम है धर्मात्मा।

समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

0: मुकेश के गाए फिल्म धर्म करम के इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।
1: नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी। मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर। अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम। जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं

0: मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। देश के 7 सबसे ज्यादा यातायात वाले रेलवे नेटवर्क को 4 लेन करने की परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। लखनऊ और कानपुर सहित उत्तर प्रदेश के 10 रेलवे स्टेशन भी इस परियोजना में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हुआ 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 9.5 साल में 70,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को मिला नया स्वरूप। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में देश के दूसरे बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र का किया शिलान्यास और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा के मूल्यांकन में हुआ बदलाव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ज्यादा यातायात वाले 7 रेलवे नेटवर्क को 4 लेन का बनाने की मंजूरी दे दी। इनमें दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली की परियोजनाएं शामिल हैं। इनके तहत दिल्ली से हावड़ा रूट उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन को कवर करेगा। वहीं दिल्ली से मुंबई रूट में मथुरा, दिल्ली से गुवाहाटी रूट में मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, जबकि दिल्ली से चेन्नई मार्ग पर आगरा और झांसी रेलवे स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन 7 कॉरिडोर पर रेलवे का लगभग 40% ट्रैफिक होता है।
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स प्लस मेनी अदर कॉरिडोर्स जो कि बहुत ज्यादा भविष्य में ट्रैफिक लेने वाले हैं, सब कॉरिडोर्स को 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
2: वाराणसी में कल 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9.5 साल में 70,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को नया स्वरूप दिया गया है।
4: हमने पिछले 9.5 वर्ष में 70,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी ली है इसमें। राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का अपने बजट का पैसा, आंगनबाड़ी केंद्र उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए उसके निर्माण की। वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेयजल की, ये उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज वहां पर बाल वाटिकाएं चलती हैं। खेल खेल में कैसे अक्षर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे वहां प्राप्त करते हैं।
2: मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय पोषण माह की इस वर्ष की थीम मेरी आंगनबाड़ी मेरी जिम्मेदारी को जन भागीदारी से जोड़ते हुए कहा कि आंगनबाड़ी की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश का बचपन स्वस्थ, सक्षम और शिक्षित होगा।
4: आत्मनिर्भर विकसित भारत दिल्ली में बनाने से नहीं, गांव और गलियों से होकर के आत्मनिर्भर विकसित भारत की आधारशिला यहां से प्रारंभ होती है। आंगनबाड़ी केंद्र और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल इसके प्रारंभिक केंद्र बनेंगे और ये से शुरुआत हुई है एक समर्थ और शिक्षित भारत के लिए, स्वस्थ और सशक्त भारत के लिए, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के लिए।

0: सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और उसकी थीम इसीलिए इस वर्ष रखी गई है कि मेरी आंगनबाड़ी मेरी जिम्मेदारी।
1: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि नौवा राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है।
2: सुपोषित बचपन, स्वस्थ मातृत्व और समृद्ध परिवार ही विकसित भारत 2047 के संकल्प की सबसे मजबूत नींव है। हर वर्ष यह आयोजन हमें प्रेरित करता है कि हम पोषण के प्रति निरंतर जागरूक रहें और इसे अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में आयोजित कामकाजी महिला सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही स्नातक अंतिम वर्ष की मेधावी बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के साथ जोड़ने जा रही है।
0: हमने बेटियों और युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और अभी मुझे बताते प्रसन्नता है, बहुत से स्नातक फाइनल ईयर्स की बालिकाओं को, 50,000 मेधावी बेटियों को हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे स्कूटी योजना के साथ जोड़ने जा रहे हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने

0: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कल पीलीभीत में 15 करोड़ रुपए की लागत से खोले गए वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र और प्रदर्शन फार्म का शिलान्यास किया। मेरठ के बाद यह देश का दूसरा बासमती और जैविक प्रशिक्षण व निर्यात केंद्र होगा। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस केंद्र का लाभ सिर्फ पीलीभीत ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों के किसान भी उठाएंगे।
1: जनपद के किसान, हमारे नौजवान, हमारे उद्योग जगत के लोग इस केंद्र का फायदा उठाएंगे और जो इस सरकार का डबल इंजन मोदी जी और योगी जी का फंड है कि किसानों की आमदनी दुगनी करने, किसानों की आय बढ़ाने और इस क्षेत्र के लोगों का, किसानों का और हम लोग कैसे दायरा बढ़ा सके, वो ये केंद्र साकार करके देगा।
0: इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि इस केंद्र का लाभ प्रदेश के उन 30 जिलों के किसानों को भी मिलेगा जिन्हें बासमती उत्पादन में जीआई टैग मिला है। लोकसभा में नेता विपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वह जिले में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव किया है।
2: बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि विज्ञान, गृह विज्ञान में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। बोर्ड खुद 30 नंबर की प्रैक्टिकल की परीक्षा लेगा जबकि अन्य विषयों में पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी, यानी मार्कशीट में ग्रेड के साथ प्रैक्टिकल के नंबर भी दिखेंगे। पहले मूल्यांकन 5 पॉइंट स्केल ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर होता था जिसे अंक पत्र में ग्रेड के रूप में दर्ज किया जाता था। समाचार कक्ष से अरुण।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सेवानिवृत्त विशेषज्ञ चिकित्सकों के पुनर्नियोजन की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि सरकार ने यह फैसला जनहित में लिया है जिससे मरीजों को वरिष्ठ और विशेषज्ञ चिकित्सकों के अनुभव का फायदा मिल सके।
3: चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में जो चिकित्सकों की उम्र है वो चिकित्सीय कार्य के लिए 70 वर्ष तक कर दी गई है, यानी अपने 70वें वर्ष तक उम्र के वो सरकारी अस्पतालों में सभी चिकित्सीय कार्य कर सकेंगे। जो चिकित्सकों की कमी है, विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, उन्होंने इतना लंबा अनुभव हमारे अस्पतालों में प्राप्त किया है और ये निर्णय जनहित में लिया गया कि मरीजों को उनके अनुभव का लाभ मिल सके।
0: प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 3 दिनों तक बारिश का यह क्रम जारी रहेगा। उधर बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। सभी जगहों पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 7 सबसे ज्यादा यातायात वाले रेलवे नेटवर्क को 4 लेन करने की परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। लखनऊ और कानपुर सहित उत्तर प्रदेश के 10 रेलवे स्टेशन भी इस परियोजना में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हुआ 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 9.5 साल में 70,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को मिला नया स्वरूप। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में देश के दूसरे बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र का किया शिलान्यास। और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा के मूल्यांकन में हुआ बदलाव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
5: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य

0: को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत, जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं, उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनबे बारे हमारे सभी ब्रजवासियों को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे वंदे ब्रज वसुंधराम। ब्रज की या पावन धरा को नमन करें वंदन करें और सबसे पहले सुनवा में ब्रज वार्ता ब्रज के भूले बिस्तरे तीर्थ और वार्ताकार हैं वनवारी लाल शर्मा।
1: आपो आए गो हते समझ एक दिन नंद बाबा ने लाला से कही हती, लाला हमारो मन तीर्थन को जाएबे को कर रहे हो हते, सो कान्हा तो बाबा के मन की पहले ही जान गयो हतो, या ते पहले ही शिव तीर्थन को ब्रज में बुलाए के विराजमान कर दिए हते। बाबा को बड़े ही प्यार सो कान्हा यूं पूछत भयो बोल्यो, कौन कौन से तीर्थन को जाएबे को त्यारो मन कर रहे हो बाबा? बाबा बोले, उत्तर से दक्षिण के ताई जिसको तीर्थन के दर्शन को बड़ो ही मन करे, सिकते बड़ो तीर्थ बद्रीनाथ केदारनाथ और दक्षिण में भैया रामेश्वर है, इन तीनों के बीच में जितने वो तीर्थ पड़ेंगे सो बिनके दर्शन करके हमारो मन तृप्त है जाएगो। लाला बाबा की बातें सुन के हसत भव बोल्यो, कछु सुनवे ते पहले ही बाबा बोल पड़े, लाला तू मेरी सुगबातन पे हंस दिए, हमें तो या सोचत भये कि लाला हमारो मन ऐसो कर रहे होते कि शरीरों इतनी लंबी यात्रा से पूरो है जाएगो। बाबा की इन बातन ने सुन के काना धीरे से बोले, बाबा त्यारी जाई चिंता ताई मैंने त्यारे मन के शिव तीर्थन कूँ त्यारे ही ब्रज में बुलाए दिए, वे आपके आशीर्वाद और मेरे कहवे ते त्यारे ब्रज में आके विराज गए हैं। अब बाबा तुम्हें मैं गिनाई दूँ, त्यारे घोड़े में ही केदारनाथ है बद्रीनाथ है और गंगाऊ आए विराजी हैं, संग में रामेश्वर वो आए विराजे हैं, काम वन में कामेश्वर विराजे हैं और बाबा मथुरा ते चल के महर्षि दुर्वासा जी ने आए के अपनो आश्रम आप बनाए हुए, या ते आगे चलोगे तो बाबा यमुना पल्ली पार महर्षि मार्कंडेय आए विराजे हैं, बिनके दर्शन करते भई जब आप आगे जाओगे तो बड़े ही सुंदर सुंदर वनन के दर्शन मिलेंगे, मोर बने सुरभि बने वागे ढिंग सिंह बने हुए, बाबा तो आप बदरी वन अलखेश्वर को जाओगे, लोह वन होत भई दंडेश्वर महादेव के दर्शन करवे ते पहले ही नारद जी द्वारा संतन के ताई मीठे पानी के जल को एक कुंड खुदवायो हो तो ताको नाम ऋषि ने नारद कुंड रख दियो हो तो बामे नहावे ते संतन के आशीर्वाद ते मोक्ष को जीव पाए लेगो, सो बामे नहा के दंडेश्वर के दर्शन

कर तो भाई विश्वामित्रपुरी तपस्थली धरणीधर को जाओगे तो बीच में ब्रह्म सरोवर में स्नान कर तो भाई धरणीधर को पहुँच के भगवान राम सीता माँ के दर्शन कर तो भाई बड़े भैया की ससुराल हों तो भाई और क्षीर सागर में स्नान करके यमुना मैया को पूजन कर तो भाई और अपने गांव पहुँच कछुक दिन अपने परिवारी जन के संग बिताए मथुरा पधारियों मेरी जननी देवकी और वासुदेव अपने मित्र के पास कछुक दिन बिताए अपने गिरिराज के दर्शन करत भई आगे चले आइयो। इन सब कुंडन में नहावे थे और इन तीर्थन के दर्शन करवे थे उस सीधोई जीव गोलोक धाम में विराजेगो और अपनी इच्छा ते जन्म लेवे को अधिकारी होएगो। फिरते जाई ब्रज में जन्म लेके लीला करके सो गोलोक धाम में जाए विराजेगो। लाला की इन बातन ने सुन के बाबा बड़े राजी भई और अपने लाला को आशीर्वाद देते भई बोले लाला तेने मेरो ही ना है सिगरे बड़े बूढ़े के शिव तीर्थन को ब्रज में बुलाए के बड़ो ही उपकार करो है। लाला तू जुग जुग जियो। तुरंत ही लाला ने भृत्यंते छकड़ा मंगवाए के ताई कही हती। तभी बाबा बोल उठे काय के ताई लाला छकड़ा मंगवाए रहो है। कन्हैया बोले बाबा आपके ताई खान पान को कुछ दान दक्षिणा के ताई रखवाए दूँ। अब बाबा हंसते भई कहन लगे लाला 84 लाख योनि ने भोग के जा जीव को मनुष्य जन्म मिले है और ये 84 कोस के ताई टोसा टम्बरू ले जानो पड़ेगो या 84 कोस को तो मैं एक ही दिना में नाप सकूँ पर मोकू सिगरों बिर जाने लाला मोकू कोई रोटी बना के खामन ना देगो। मैंने लाला या 84 कोस में गैया चराई हैं जा गांव के पास गाय रुको करें बिन के दूध में वाई गांव में बांट दियो करे हो। सो लाला जा ब्रज में खान पान की कोई कमी ना है नारायण की दया थे। नंद बाबा मैया यशोदा को संग ले के धीरे धीरे यात्रा को चल दिए। बद्री केदार के दर्शन करत भे महर्षि दुर्वासा के आश्रम पधारे हते। महर्षि दुर्वासा ने नंद यशोदा को बड़ो ही आदर दियो। संपूर्ण ब्रज को जानवे वाले शिष्यन को बाबा को निहोरो कर संग में पठाए दियो ताकि बाबा नदी नाले ऊबड़ खाबड़ राह में सहयोग कर सकें। आगे चल के मैया के संग कामेश्वर होत भये यमुना पार कर मार्कंडे ऋषि के आश्रम में कछुक दिन विश्राम करके आगे चले हते। आगे चल के बाबा सुंदर सुंदर वनन के दर्शन करत भये सुरभि बनते चरती भई गायन के दर्शन करत भये बदरी वन अलखेश्वर की ओर चले जहाँ स्वयं भगवान शंकर वृंदावन पधारे हते। सुंदर वन को निहार अलख बोल डमरू बजायो वन में तपस्या करत भये ऋषि ने प्रसन्न भये हते। तबही ते या स्थान को नाम अलखेश्वर पड़ गयो हतो। तीरथ आज उपेक्षित पर्यो हते या के पास आज बस्ती बसी है वाको नाम बेरा हते। या ते आगे चल के लोहवन होत भये बाबा दंडेश्वर की ओर निकसे तहाँ के नारद कुंड में स्नान कर नारद जी व बिनके द्वारा स्थापित दंडेश्वर के दर्शन किए। जाकि आज तक दंडेश्वर और दंडेश्वरी के लोग परिक्रमा करत भये नारद जी और दंडेश्वर की जय जयकार करें हते। दंडेश्वर डड़ीसरा सो चलत भये बाबा नंद और यशोदा मैया आज के जमो गांव स्थित ब्रह्म सरोवर में स्नान कर भगवान शंकर के हजारों वर्ष प्राचीन शिवलिंग के दर्शन करत भये विश्वामित्र पधारे हते। यहाँ विशाल हवन कुंड के दर्शन करत भये चारों भाइयों के साथ विराजमान भगवान राम जी माता जानकी के दर्शन करत भये कछुक दिन विश्राम करत भये बड़े भैया बलराम जी की ससुराल पहुँचे। वहाँ क्षीर सागर में स्नान करत भये आदर सत्कार पाए मथुरा जावे ते पहले अपने गांव नंदगांव अपने गोकुल पहुँच गए और ग्रामीण बाबा को देख के बड़े ही प्रसन्न भये। वाते बाद में मथुरा पधारवे ते पहले यमुना मैया को पूजन करके मथुरा गए। मथुरा में देवकी और वासुदेव अपने मित्र के घर जाके रुके। मां लाला बहुत दिन विराजे और आदर सत्कार पाए के उनसे आज्ञा पाए के अपने निजगाम नंदगाम जो स्वयं ने बसायो हो तो बाकू गांव नौनेरा हों तो भई पधार गए हते। तभी ते उनके पदचिन्हन पर चल के सिगरो ब्रज
और विश्व के

0: लोग लुगाई या ब्रज की परिक्रमा करते रहे हैं। आज या 84 कोस कूं विकास की बड़ी दरकार है। कहूं कहूं तो पगदंडियू नाय पावे। यात्रा करवे वाले ने अपनी अपनी सुविधा के ताई अनेकन मार्ग बना लिए हैं। यह परिक्रमा पर शोध की आवश्यकता है। फिर 84 कोस सगरे तीर्थन को आनंद लो जा सके। एक बेर मैया यशोदा ने लाला से कही हती कि लाला, ब्रज में खारी पानी है तो तू गायन के ताई मीठे पानी को लालो करियो। यह सोच के लाला ने 12 तालाब या ब्रज में खुदवाई दिए। उनके नाम लालो खर, सोनो खर, दूबो खर, भरो खर, बड़ो खर, जो आज सांचोली में स्थित है। लाला लालो खर नोने रामे आजू मौजूद है। और मई लाला के सखा अनूप सखा ने कुआ और भगवान शंकर को मंदिर बनवायो, जो आजू जीर्ण शीर्ण हो गए होते। काम में बन में 84 कुंड, 84 कुआ, 84 खम्मा मंदिर बनवाए हते। पोखर बन आज भी जाप बठेन के बीच आजू उपेक्षित सो पर्यो है। दंडेश्वर से पहले झाड़ी नाम से विख्यात संतन की स्थली मानस तहसील के खामल गांव में उपेक्षित पड़ी है। ताई ते मेरो कहनो है कि 84 पे गहन शोध की जरूरत है। बोलो ब्रज 84 कोस की जय, कन्हैया लाल की जय।
1: भाई आपने आनंद लियो या ब्रज वार्ता को। ब्रज के फूले बिस्तरे तीर्थ, वार्ताकार है वनवारी लाल शर्मा। ब्रज को सो स्वाद तिहु लोक ना निहार्यो श्याम। ब्रज को सो स्वाद तिहु लोक ना निहार्यो श्याम। कोटि तीर्थन यह माथे कोटि को है। रस की रसायन और प्रेमिन की खान जहां ब्रह्महू टटोर्यो ब्रज गोपिंद को छीको है। ऐसो हमारो ब्रज है और ब्रज की लीला तीनों लोकंते न्यारी है। भैया कौन से पुण्य किए हमने ब्रज में जन्मे ब्रजवासी भय।

ब्रज की लीला तीन लोक ते न्यारी, प्रस्तुत कर रहे हैं ऋषि शर्मा भैया। देव मुनि दुर्लभ, विधाता शिव सर्वस्व, रमा आदि करण को मलायो यश नीको है, इंद्रहु को स्वागत ना भायो मन जोयो, इन ब्रजवासीन के प्रेम के आगे वैकुंठ लगे फीको है। प्रेम को ऐसो आनंद है या को कौन पावे पार। सुनो भैया यरसिया को, स्वर है स्वामी राम स्वरूप शर्मा को।

मेघ श्याम जी को लिखियो, रसिया कौन पावे याको पार। स्वर हो स्वामी राम स्वरूप शर्मा को, ब्रज के परम स्नेही लोग, प्रेम रूप रस दम पतलीला, यह तिनको नित भोग। यही के संग आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब विराम ले है। सब ब्रजवासी भैयान को, मयूर कोशक और उनकी पूरी टीम की ओर से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में
1: प्रभात के साथ, मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य

0: तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्यजीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme

0: building for resilience, innovation, cooperation and sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुँच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास पे बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
2: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
1: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा $4 trillion से बढ़ाकर $30 trillion करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्यीय बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
3: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। एक रिपोर्ट।
4: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश

0: टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने डीएनए किट, अभिक्रमक और डीएनए प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ मिलकर चिलिमे और लोंगटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहतनाज।
1: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दाव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधी उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है, वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस ये सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष, मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मॉनसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए, राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Union Cabinet approves Railway's 8 multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi says Cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. India calls upon BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. India ramps up Nepal flood relief with 8th aid flight special.

0: अपनाए।
1: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: और आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में गीतांजलि के कुछ नगमे। पेश है ये पहला नगमा जिसे हमने लिया है फिल्म नमक हलाल से। आवाजें हैं किशोर कुमार और साथियों की।

किशोर कुमार आशा भोसले को अभी आपने सुना फिल्म ये वादा रहा में, और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों को। फिल्म का नाम है प्रेम रोग।

लता मंगेशकर और साथियों के गाए फिल्म प्रेम रोग के गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कथाक्रम में कहानी पीपल की छांव। कहानीकार है मोहम्मद हनीफ मदार।

गांव के बीचों बीच खड़ा वह बूढ़ा पीपल मानो समय का प्रहरी हो। उसकी जड़ें धरती की नसों की तरह दूर दूर तक फैली थीं और शाखाएं ऐसे झुकी थीं जैसे पीढ़ियों का राज अपने आंचल में छिपाए बैठी हों। उसकी पत्तियां हर बयार के साथ छनकती जैसे कोई अदृश्य वाद्य बज रहा हो। शहर की हवा गांव तक आ रही थी। धीरे ही सही बदलाव हो रहा था। अगर कुछ नहीं बदल रहा था तो यह पीपल का पेड़, ठीक उसी तरह जैसे शिव नारायण नहीं बदले। 70 बरस की देहरी पर खड़े शिव नारायण का चेहरा मानो जीवन की तपस्या का खुला ग्रंथ था। झुर्रियों में संघर्ष की रेखाएं, आंखों में धुंधली परत के भीतर चमकते जुगनू से सपने, चलते चलते थक जाते

पर मन का उत्साह अब भी जवानी की तरह ताजा था। शिव नारायण का जीवन संघर्षों की कहानी थी। जवानी में खेतों की मेड़ पर उन्होंने अनगिनत दिन रात पसीना बहाया। बरसात में खेत कीचड़ हो जाते तो वे नंगे पैर बैलों संग हल खींचते। जेठ की दोपहरी में लू चलती तब भी वे खेत में डटे रहते। लोग कहते जिसके पास हिम्मत हो उसका सूरज कभी अस्त नहीं होता। पर उनकी सबसे बड़ी कसौटी तब शुरू हुई जब पत्नी अचानक बीमारी से चल बसी। उस दिन आंगन जैसे सूना हो गया। तीन छोटे बच्चे, ऊपर से पत्नी का साया उठते ही घर का भार दुगना हो गया। मगर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उन्होंने अपने आंसू पी लिए जैसे ठाना हो कि वे तीनों बेटों के लिए माँ और बाप दोनों बनेंगे। मोहन, गोपाल और सुरेश तीनों बेटों को पिता ने खेतों में नहीं किताबों में पसीना बहाने की नसीहत दी। खुद फटा कुर्ता पहना मगर बेटों की किताबें कभी अधूरी न छोड़ी। जब कभी खेत की पैदावार कम होती तो शिव नारायण उधार लेते, यह सोचकर कि बच्चों की पढ़ाई न रुके। इतना पढ़ाने से क्या होगा, खेती बाड़ी ही तो करनी है, कभी कभी लोग कह देते। तब शिव नारायण मुस्कुराकर कहते, पढ़ाई वो बीज है जो आने वाली पीढ़ियों को भी फल देगा। वक्त पंख लगाकर उड़ता रहा और मोहन डॉक्टर, गोपाल इंजीनियर और सुरेश बैंक अधिकारी बन गया। तब लोगों ने कहा, शिव नारायण की मेहनत रंग लाई है समझो। अब इनके दिन फिर गए। पर शायद लोगों का यह कहना वक्त को मंजूर ना था, क्योंकि सच जल्द ही सामने आया कि दिन तो बेटियों के फिरे थे, शिव नारायण की रातें अभी अकेली थीं। कभी जिस आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, अब वहां सन्नाटा पसरा रहता। अकेले पड़े शिव नारायण कभी कभी यूं ही नजरें घुमाकर अपने इस घर को देखते तो अचानक जैसे बुदबुदाते, घर वही है जिसमें लोग बसते हैं, ईंट पत्थर तो महज मकान है। त्योहारों पर बेटों का आना जाना भी धीरे धीरे कम हो गया। जब कभी आते भी तो मोबाइल की स्क्रीन में आंखें गड़ी रहतीं, दो घड़ी पिता से बात करने का वक्त न मिलता। शिव नारायण के मन में अक्सर सवाल उठता, क्या यही जीवन है, मेहनत की फसल काटकर अकेलापन पाना। सोचते सोचते छत को एकटक ताकते न जाने कब उनकी आंख लगती। उस साल फसल अच्छी हुई थी तो गांव में दशहरे की धूम थी। हर चौपाल, हर घर विजयदशमी की तैयारी कर रहा था। यकायक शिव नारायण के मन में भी एक सपना जागा, इस बार तीनों बेटे आ जाएं, बच्चे भी साथ होंगे तो एक बार आंगन फिर से जीवित हो उठेगा। यही सोचकर उन्होंने चिट्ठियां लिखी थीं, लेकिन बाहरी किस्मत जवाब कुछ अलग ही आए। मोहन की ड्यूटी हॉस्पिटल में लगी है, गोपाल का नया प्रोजेक्ट, सुरेश का ऑडिट, माने किसी को छुट्टी नहीं है। यह समझना शिव नारायण की समझ से बाहर था। पीपल की छांव में बैठे बैठे उन्होंने गहरी सांस ली और जैसे खुद को तसल्ली देने को बोले, जिन्हें साथ होना चाहिए वही दूर है, शायद यही वक्त को मंजूर है। कल का दशहरा था। पीपल के ऊपर शाम अपने पैर जमाती हुई गहरी होती जा रही थी। शिव नारायण पीपल से पीठ टिकाए शहर से गांव की ओर आने वाली पगडंडी को अपलक ताक रहे थे, जैसे अपने बच्चों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। लेकिन वे कहीं आते नजर नहीं आ रहे थे। हाँ, उन्हें उस पगडंडी पर दूर एक औरत आती हुई नजर आई। उसकी गोदी में एक छोटा बच्चा था और पास आने पर उन्होंने देखा उसका चेहरा धूल और आंसुओं से सना था। शिव नारायण ने उससे बड़े अपनेपन से पूछा, कौन हो तुम और किसके घर जा रही हो? उसने कांपते स्वर में कहा, मेरा नाम सीमा है, पति मजदूरी करते थे, अचानक उन्हें बीमारी ने छीन लिया, मायके ने मुंह मोड़ लिया, ससुराल ने दरवाजा बंद कर लिया, अब मेरे लिए कहीं जगह नहीं, बस यूं ही इधर पांव ले आए हैं। हालांकि कुछ गांव वाले मनचले भी वहां आ गए थे, लेकिन किसी को उसमें कोई आनंद ना आया तो लगभग सब किनारा कर गए। मुसीबत में कौन पड़ता है, कहावत चरितार्थ हो रही थी। न जाने क्या सोचकर शिव नारायण आगे बढ़े। उन्होंने उसकी आंखों में झांका और बोले, बिटिया मेरा घर बड़ा है और खाली पड़ा है, आ चल, वहाँ तेरे लिए भी जगह है और तेरे बच्चे के लिए भी। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने बच्चे को कसकर सीने से लगा लिया और बाबूजी आप बस इतना ही

बोल पाई हूँ। सीमा और उसका बेटा जब घर में आए तो जैसे लगभग खंडहर दिखते घर में जीवन लौट आया। बच्चा पीपल के चारों ओर खेलता, सीमा आंगन बुहारती और शिव नारायण चाय पीते हुए पीपल के ऊपर की तरफ देखते और मुस्कुराते। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। बूढ़ा पगला गया है, गैरों को घर में बसा लिया, बेटे होते हुए परायों पर भरोसा कर रहा है। पर शिव नारायण ने परवाह न की, उनके लिए तो यही घर का उजाला बन गया था। कुछ महीनों बाद अचानक तीनों बेटे गुस्से से लाल होकर गांव पहुंचे। मोहन चिल्ला रहा था, बाबा हम जिंदा हैं, फिर भी आपने अजनबियों को अपना लिया। तभी गोपाल गरजा, आपको हमारी इज्जत की चिंता ही नहीं? सुरेश ने तीखा ताना मारा, लगता है आपको हमसे मोह ही नहीं रहा। शिव नारायण ने सब सुना, फिर पीपल की छांव की तरह शीतल स्वर में बोले, बेटो सच कहूँ तो तुम अब केवल नाम के बेटे हो। जब मैं बुखार में तड़प रहा था तब तुम में से कौन आया? किसी त्योहार पर मेरी चौखट किसने पार की? ये बिटिया और इसका बेटा ही हैं जिन्होंने मेरे अकेलेपन की दीवारें तोड़ी। बेटों के पास कोई उत्तर नहीं था। शिव नारायण ने तीनों को एक बार एक एक कर देखा, फिर बोले, तुम्हारे अपने अपने संसार हैं, मुझे शिकायत नहीं, लेकिन यह घर भी खाली कब्रिस्तान नहीं बनेगा। इसमें अब जीवन की चहल पहल है। यह बिटिया और इसका बेटा भी अब मेरे अपने हैं, फिर तुम्हें क्यों इनके होने से समस्या है? और हाँ, कान खोलकर सुन लो, यह घर इनका भी उतना ही है जितना तुम्हारा। कहते कहते उनकी आंखों के किनारे फूट पड़े थे, पर भीतर मन में गहरी शांति थी। समय का पहिया एक बार फिर अपनी गड़गड़ाहट के साथ घूमने लगा था। सीमा ने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसका बेटा पढ़ाई में आगे बढ़ा। शिव नारायण का चेहरा फिर खिलने लगा। अब गांव वाले भी मानने लगे थे कि सिर्फ खून से नहीं अपनेपन से परिवार बनता है। बेटों ने भी अब जल्दी घर आना शुरू कर दिया था। शिव नारायण भी कभी कभी पीपल के नीचे बैठे बैठे सोचते कि क्या इन्हें एहसास हुआ कि पिता ने जो किया वह सही था या कुछ और इन्हें खींच लाता है। लेकिन फिर भी इस पर दिमाग लगाने की बजाय उसे वक्त पर छोड़कर घर की तरफ चल देते। वर्षों बाद शिव नारायण बहुत बीमार रहने लगे थे। न जाने कैसे उन्हें अपना अंतिम समय करीब लगने लगा था। तब उन्होंने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया था। हालांकि सीमा इससे परेशान थी कि बाबूजी आप अपनी जमीन क्यों बेच रहे हैं? तब उन्होंने सीमा के बेटे की तरफ इशारा करके कहा था, अपने इस बेटे को बाहर पढ़ने भेजने के लिए। सुनकर सीमा की आंखें छलक आई थीं। सीमा के बेटे को शहर जाने के कुछ समय बाद ही शिव नारायण ने अंतिम सांस ली। तब उनका सिर पीपल की गोद में ही टिका था। अब भी इस पीपल की छांव को बुहारते हुए बूढ़ी हो चली सीमा जैसे बाबूजी से बतियाती है, और बूढ़ा पीपल हवाओं में सरसराता हुआ मानो बार बार यही दोहराता है, जड़ें वही मजबूत होती हैं जो दूसरों को छाया देती हैं।

आप सुन रहे थे कथाक्रम में कहानी पीपल की छांव, और कहानीकार थे मोहम्मद हनीफ मदार। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: 47 किलो हर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अब से बस थोड़ी ही देर में आपको सुनवाते हैं जिले की हलचल। आइए सुनिए बिजनौर और महोबा जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और बिजनौर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतीय का।
2: राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर महोबा के वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीक आधारित कार्यशाला

0: का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली से आई स्पेस इंडिया की टीम ने विद्यार्थियों को रॉकेट विज्ञान के सिद्धांतों और अंतरिक्ष तकनीकी की बारीकियों से परिचित कराया। कार्यशाला के दौरान छात्रों ने स्वयं पेपर रॉकेट और गैस रॉकेट तैयार कर उनका सफल प्रक्षेपण किया। इसके साथ ही हाइड्रो रॉकेट और वाटर रॉकेट का प्रक्षेपण कराया गया। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को रॉकेट के निर्माण, प्रक्षेपण और उसके सिद्धांतों के पीछे काम करने वाले वैज्ञानिक सिद्धांतों की जानकारी दी। विद्यार्थियों को वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से अंतरिक्ष स्टेशन और अंतरिक्ष की वर्चुअल विजिट कराई गई। वहीं सेफ सोलर ऑब्जर्वेशन के जरिए छात्रों को सूर्य एवं सौर मंडल का सुरक्षित तरीके से अवलोकन कराया गया। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम एक्टिविटी के माध्यम से आधुनिक भवनों में इस्तेमाल होने वाली तकनीक की जानकारी भी दी गई। विशेषज्ञों ने भवनों में ऊर्जा प्रबंधन, तापमान नियंत्रण, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा और निगरानी प्रणालियों के बारे में छात्रों को समझाया। जिले के पार्षदी विद्यालयों के विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ने के लिए 40 इसरो लैब का निर्माण कराया गया है। इन लैबों में छात्र सौर मंडल, अंतरिक्ष और विभिन्न खगोलीय गतिविधियों के बारे में प्रयोगात्मक तरीके से जानकारी हासिल कर रहे हैं। इस अवसर पर AIASC में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए DM गजल भरद्वाज ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यदि उन्हें उचित संसाधन और अवसर उपलब्ध कराए जाएं, तो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री कृष्णा पासवान ने महोबा पहुंचकर पशुपालन विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने निराश्रित गौवंश के संरक्षण और गौआश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने वर्षा ऋतु को देखते हुए सभी गौआश्रय स्थलों पर व्यवस्थाएं समय से दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने संक्रामक रोगों से पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए 100% टीकाकरण कराने पर जोर दिया। गौशालाओं में संरक्षित गौवंश के साथ ही जिले के अन्य पशुओं का भी नियमानुसार टीकाकरण सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने गौआश्रय स्थलों में पर्याप्त हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए गौचर भूमि पर नेपियर घास की बुआई कराने के निर्देश दिए हैं। महोबा जिले समेत मध्य प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जिले के कई गांव प्रभावित हुए हैं। क्यूलारी और धसान नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद लहचूरा बांध के 9 फाटक खोल दिए गए। बांध से काफी पानी छोड़ा जा चुका है, जिससे नदी किनारे बसे गांव में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि लहचूरा बांध के सभी 9 फाटक 2-2 मीटर की ऊंचाई तक खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि पानी के फ्लो के अनुसार फाटकों को घटाया और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बांध से पानी छोड़े जाने के कारण महोबा जिले के 9 और झांसी जिले के 6 गांव प्रभावित हुए हैं। प्रशासन की ओर से प्रभावित गांव में मुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क कराया जा रहा है। लोगों से नदी और जल भराव वाले क्षेत्रों के आसपास नहीं जाने की अपील की गई है। जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उधर सीहोर नदी के उफान पर आने से करीब 13 गांव का संपर्क टूट गया है। जैतपुर और कुड़ई के साथ थुरट छतवारा मार्ग के बीच करीब 20 गांव का भी संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और नदी नालों के पास जाने से बचने की अपील की है।
1: लहचूरा डैम के 9 फाटक खोले गए इस समय 2 मीटर की हाइट से, और जैसे जैसे पानी का इनफ्लो हमें मिलेगा नदी में, उसी के हिसाब से हम उसकी मात्रा घटाएंगे बढ़ाएंगे। जनपद महोबा के 9 गांव प्रभावित हैं और झांसी के 6 गांव, दोनों जनपदों को लगा के लगभग 15 गांव प्रभावित हैं। 89,700 क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं आज हम, और जैसे जैसे आगे हमें पानी की मात्रा हमको ऊपर से मिलेगी, उसी के हिसाब से हम अपने फाटकों की संख्या घटाएंगे बढ़ाएंगे। लोगों से अपील की जा रही है, हम लोग मुनादी भी करा रहे हैं, जिला प्रशासन भी लगातार सहयोग कर रहा है, और हम लोग भरसक यही प्रयास कर रहे हैं कि कोई दुर्घटना न होने पावे।
0: महोबा जिले के बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें कौशल प्रशिक्षण और बेहतर कैरियर मार्गदर्शन देने के लिए सेवा योजना विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को पंजीयन के बाद उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। जिला सेवा योजन अधिकारी आकांक्षा वाजपेयी ने बताया कि सरकार की पहल के तहत स्नातक युवाओं को सेवा योजन विभाग से पंजीकृत कराने के साथ ही स्किल और एबल्ड जैसी पहल से जोड़ा जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार अवसर उपलब्ध हो सके। विभाग की ओर से रोजगार मेले और कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से भी युवाओं को निजी कंपनियों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न कंपनियों के साथ विभाग का टाई अप है। इसके माध्यम से हर माह करीब 100 से 150 युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। रोजगार मेले में युवाओं को उनकी शैक्षिक योग्यता, कौशल और रुचि के अनुरूप कंपनियों में रोजगार के अवसर मिलते हैं। इसी के साथ ही सेवा योजन विभाग अब युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसरों से जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। इसके तहत जापान, सऊदी अरब, जर्मनी और रूस जैसे देशों में रोजगार के लिए युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। विदेश में नौकरी के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार कराने और अन्य प्रक्रियाओं में भी विभाग की ओर से मार्गदर्शन दिया जाता है। विदेश जाने वाले युवाओं को संबंधित देश की भाषा का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके लिए स्मार्ट क्लास के माध्यम से भाषा एवं तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है, ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवा विदेश जाकर बेहतर तरीके से रोजगार हासिल कर सके।
2: महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का।
3: श्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में उत्तर प्रदेश के

0: बिजनौर जिले की ग्रामीण महिलाओं के हौसले और आत्मनिर्भरता की जमकर सराहना की। बिजनौर जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त सहयोग से विदुर प्रेरणा ब्रांड की शुरुआत की गई है। इस स्थानीय ब्रांड ने जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी है। इस पहल के तहत जिले के स्वयं सहायता समूहों की लगभग 2,40,000 महिलाएं सीधे तौर पर जुड़कर काम कर रही हैं। इन समूहों द्वारा उच्च गुणवत्ता के अचार, पापड़, साबुन, झाड़ू, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक वाहन भी उत्पाद किए जा रहे हैं। विद्युत स्टोर के माध्यम से इन उत्पादों को देशव्यापी बाजार मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें बिजनौर के स्थानीय उत्पादों को वोकल फॉर लोकल के तहत नई पहचान मिली है। विदुर प्रेरणा ब्रांड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक वर्ष में 10 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर दर्ज किया है, जिससे जिले की 35,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनने की राह पर अग्रसर हैं। जिले के कोतवाली ब्लॉक के ग्राम टांडा माईदास में एक हर्बल टी प्लांट की स्थापना की गई है। इस प्लांट का पूरा प्रबंधन और संचालन आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 10 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को सीधे तौर पर रोजगार मिला हुआ है। मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया।
1: जो प्रोडक्शन यूनिट है उसको भी विस्तार देने की सोच रहे हैं। हम लोग एक प्रोड्यूसर ग्रुप बनाएंगे जिसमें कम से कम 100 महिलाएं एक साथ कार्य करें, और इसकी जो टेस्टिंग है, क्वालिटी है, कंट्रोल है, उसको भी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं।
0: स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी किए गए नवीनतम आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं। इन आंकड़ों के अनुसार आयरन फॉलिक एसिड सिरप सप्लीमेंट कवरेज में बिजनौर जनपद ने पूरे प्रदेश में 85% कवरेज के साथ पहला स्थान हासिल किया है। 95% कवरेज और सटीक रिपोर्टिंग के चलते जिला राज्य में नंबर 1 पर है। इस रैंकिंग में मुरादाबाद मंडल का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। मंडल के सभी 5 जिलों ने प्रदेश में शीर्ष जिलों में अपनी जगह बनाई है। बिजनौर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में गंभीर लापरवाही बरतने पर मोहम्मदपुर देमल ब्लॉक की 27 आशा कार्यकर्ताओं को सेवा समाप्ति की संस्तुति की गई है। वहीं 5 आशा संगनियों का मानदेय रोकते हुए अंतिम नोटिस जारी किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंदक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि उच्चाधिकारियों, कमिश्नर और जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रमों की निरंतर समीक्षा में सामने आया कि मोहम्मदपुर देमल ब्लॉक में आभा आईडी बनाने की प्रगति मात्र 67.14% और आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए प्रगति केवल 57.59% रही है। इसके अतिरिक्त परिवार कल्याण कार्यक्रम, पल्स पोलियो अभियान और संस्थागत प्रसव जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों में पिछले 2 वर्षों में इन कार्यकर्ताओं द्वारा कोई संतोषजनक सुधार का या प्रयास नहीं किया गया। अधिकारियों ने कड़ी चेतावनी दी है कि राष्ट्रीय जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में किसी भी स्तर पर अनदेखी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद बिजनौर में गिरते भूजल स्तर को सुधारने और वर्षा जल को सहेजने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़े महाअभियान की शुरुआत की है। कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत जिले के सभी 11 विकास खंडों में एक साथ 157 तालाबों में खुदाई का कार्य शुरू किया गया। बिजनौर में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी बचाने के उद्देश्य से प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया है। जिले में अब तक 409 अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा हो चुका है और कुल 562 भूमियों को चिन्हित किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि तालाब भूगर्भ जल को प्राकृतिक रूप से रिचार्ज करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। गौरतलब है कि जनपद का जलीलपुर विकास खंड वर्तमान में पूर्णतः क्रिटिकल यानी संकटग्रस्त जोन में है, जबकि नेटौर, सिहारा और कोतवाली देहात को सेमी क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी में तेजी से घटते जल स्तर को थामने के लिए इस तालाब खुदाई अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आबो हवा।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मथुरा रिफाइनरी मथुरा। मथुरा रिफाइनरी, स्वच्छ एवं हरित रिफाइनरी, पर्यावरण के प्रति एक जिम्मेदार और समर्पित प्रतिष्ठान, विकास का आधुनिक मंदिर, पर्यावरण प्रबंधन के लिए एशिया की पहली ISO 14001 रिफाइनरी मथुरा रिफाइनरी, विशाल इकोलॉजिकल पार्क को सहेजे, ब्रज के फ्लोरा एवं फोना का जीता जागता

0: नमूना ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षण को सदैव समर्पित
1: मथुरा रिफाइनरी स्वच्छ एवं हरित रिफाइनरी।
2: अगर हमें प्रगति करनी है तो ऐसे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है उत्पन्न होंगे ही, इसलिए हमें ऐसे उपाय सोचने हैं जिनसे व्यर्थ पदार्थ जो आम तौर पर हानिकारक भी होते हैं ठिकाने लग जाएं और उनसे किसी को भी हानि ना पहुंचे। ये उपाय हैं व्यर्थ समझकर फेंक दिए जाने वाले पदार्थों का पुनः उपयोग यानी रिसाइकलिंग करना। इससे पदार्थों को फेंकने की समस्या ही नहीं रहेगी और हमारा पर्यावरण भी संरक्षित होगा। इस संदर्भ में मैं जापान का उदाहरण देना चाहूंगी। कचरे और बेकार पदार्थों को पुनः इस्तेमाल करने की क्षमता से जापान के मोटर उद्योग को बहुत

0: इस्तेमाल करने की क्षमता से जापान के मोटर उद्योग को बहुत बढ़ावा मिला है। वह अमेरिका का बेकार लोहा सस्ते दाम पर खरीद लेता है, जिसका उपयोग कार उद्योग में किया जाता है। वर्तमान मानव अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न खनिजों का दोहन कर रहा है। यदि इनका अनियोजित शोषण होता रहा तो भविष्य में इनकी पूर्ति संभव नहीं होगी। खनिजों, धातुओं से बने उपकरण एवं अन्य वस्तुओं का प्रयोग सीमित समय तक होता है, किंतु उसमें प्रयुक्त धातु को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। धातु को बार बार प्रयोग में लाकर उसका अधिकतम उपयोग संभव है। ऐसा करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। ब्रिटेन में 50% इस्पात धातु छीलन यानी स्क्रैप से प्राप्त किया जाता है। हमारे देश की बात करें तो यहाँ गोबर से उपले बनाकर ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, जिससे वायु प्रदूषित होती है। इस गोबर से गोबर गैस या बायोगैस बनाई जा सकती है। बायोगैस ऊर्जा का स्वच्छ और कभी भी समाप्त न होने वाला स्रोत है, जिसका अभी तक भारत में पूरी तरह दोहन नहीं किया जा रहा है। बायोगैस को हम पशुओं के मलमूत्र, कृषि अपशिष्ट पदार्थ, जलीय जीव मांस जैसे शैवाल, जलकुंभी, नगरों का गंदा जल, लकड़ी का बुरादा अथवा छाल, औद्योगिक इकाइयों का अपशिष्ट आदि को जैव रासायनिक क्रियाओं से रिसाइकिल करके प्राप्त कर सकते हैं। बायोगैस का प्रयोग करके लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों की भारी बचत की जा सकती है तथा पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। उद्योगों के व्यर्थ पदार्थों को पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। देश की अनेक प्रयोगशालाओं में अध्ययन एवं अनुसंधान किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर कोयले की बारीक धूल यानी फ्लाई ऐश को ही लीजिए। ताप बिजली घरों और कोयला जलाने वाले अन्य उद्योगों के निकट इनके बड़े बड़े ढेर लगे रहते हैं। अब इससे सीमेंट और अनेक प्रकार की भवन निर्माण सामग्री, ग्लास वूल आदि तैयार किए जा रहे हैं। उससे बनी ईंटें अधिक मजबूत और टिकाऊ होती हैं। आवश्यकता है उनके प्रयोग को बढ़ावा देने की। वर्तमान समय में हम अपने घरों की बात करें तो स्नान गृहों को फ्लश करने तथा बगीचों की सिंचाई करने में स्वच्छ जल का प्रयोग किया जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में स्वच्छ जल का अपव्यय होता है। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए रिसाइकल्ड वाटर का प्रयोग किया जा सकता है। हम व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास कर सकते हैं। किचन में निकलने वाले बायो वेस्ट को रिसाइकल करके वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षित होगा और किचन गार्डन के लिए खाद भी मिल जाएगी। घर में प्लास्टिक का अनुपयोगी सामान एवं कचरा अलग छांट कर रखें, जिसे बाद में रिसाइकल किया जा सकेगा। दिल्ली में कंजर्व इंडिया नामक एनजीओ प्लास्टिक की पन्नियों, कूड़ा प्लास्टिक से फोल्डर, फाइल, बैग, प्लास्टिक की चादर इत्यादि बनाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के साथ साथ कचरा बीनने वाले तथा कबाड़ियों को सम्मानजनक वेतन दे रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे मूल काम अपनी व्यवस्था एवं जीवन शैली में परिवर्तन लाना है। उसे संयमित कर प्रकृति के साथ सहयोग पर आधारित करना है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें अंग्रेजी के 3 R पर काम करना होगा। रिड्यूस यानी प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम उपयोग करें एवं उनके वैकल्पिक स्रोत तलाशे जाएं। रीयूज यानी फिर से इस्तेमाल, जैसे कोई उपकरण में मामूली खराबी है तो उसे ठीक करवाकर पुनः प्रयोग में लाएं। रिसाइकलिंग, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे, ये 3 R पर्यावरण संरक्षण के लिए मूल मंत्र है।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे मथुरा रिफाइनरी मथुरा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। विषय था वस्तुओं का पुनः उपयोग और पर्यावरण। आलेख और वाचन था डॉक्टर मीना गुप्ता का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गजलों में। आज के कलाकार हैं जगजीत सिंह। पेश है आपकी खिदमत में ये पहली गजल।

समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं गैर फिल्मी कथनों के कार्यक्रम में जगजीत सिंह को आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

समय आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गजलों के कार्यक्रम में जगजीत सिंह की गाई कुछ गजलें आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

रहे थे जगजीत सिंह की गाई कुछ गजलें आकाशवाणी की मथुरा वृंदावन केंद्र से, और आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कुमार सानू और साथियों को भी आपने सुना फिल्म दीवाना में, और आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों को। फिल्म का नाम है शोला और शबनम।

अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू को भी आपने सुना फिल्म आशिकी में, और आइए सुनते हैं मोहम्मद आजीज, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों को। फिल्म का नाम है आग और

0: लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों के गाए फिल्म मैंने प्यार किया की इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम याद है जरा जरा क्रम में नरेश मल्होत्रा से ओपी सिंह की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, सूचना, मनोरंजन और जानकारी यानी शिक्षा से लेकर के आपके मनोरंजन तक आकाशवाणी ने अपने इस 90 साल के सफर में बहुत कुछ जन सामान्य को दिया है। आज भी हम उस काम में लगे हुए हैं, लेकिन इस 90 साल के दौर में हमारे कुछ ऐसे साथी जिन्होंने इस दौर को न सिर्फ देखा बल्कि जिया भी, और इस जो दायित्व था आकाशवाणी का उसको निभाने में अपनी भूमिकाएं भी निभाई। उसी क्रम में आज हमारे साथ हैं श्री नरेश कुमार मल्होत्रा साहब। आप ADP से रिटायर्ड हुए यानी सहायक निदेशक, म्यूजिक के कलाकार रहे, टॉप ग्रेड कलाकार, और कंपोजिंग का भी काम किया। बहुत सारी विधाओं में उन्होंने आपकी भी सेवा की, संस्था की भी सेवा की, और इस रूप में उनके कुछ अनुभव, कुछ ऐसे खट्टे मीठे अनुभव हैं जिनको सुनकर के मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। मल्होत्रा जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार।
2: नमस्कार। सब श्रोताओं का भी मैं स्वागत करता हूँ। क्योंकि ये मेरा अपना संस्थान है तो इसलिए एक तरीके से मैं आपसे डायरेक्ट रूबरू हूँ।
1: जी जी जी जी, जी, जी, जी, जी।

0: तो जो सच्चाई वाली बात यह है कि रेडियो आकाशवाणी, मैं जब आई थिंक 5वीं या 6वीं क्लास में था तो एक छोटा सा रेडियो हमारे घर, उसमें मेरे ख्याल ज़्यादातर रेडियो जापान के रहते थे, पैनासोनिक कंपनी का एक रेडियो था मेरे पास, तो उसका एक बार गिरने से शीशा भी टूट गया, वो भी हमने चेप चुप के उसको थ्रू कर लिया। तो रोज रात को बिना नागा, क्योंकि उसमें जो एक परंपरा थी छतों पे सोने की, सारा परिवार इकट्ठा सोया है, पिताजी माताजी भाई बहन जो भी है, एक लाइन लगा के बड़ा पंखा चल रहा है, रात को 10:30 से 11 बजे का आइटम मैं रोज सुनता था, 5वीं क्लास की बात बता रहा हूँ। तो एक दिन पंडित भीमसेन जोशी जी का राग दुर्गा सुन रहे थे, तू सुर ताल दे, ये उसके बोल थे, झप ताल की बंदिश है, बहुत खूबसूरत गाया उन्होंने। तो इसका अंतरा मेरे को समझ नहीं आता था, तो मेरे में पर ये एक ग्राह्य तत्व ऐसा था कि मैं जो चीज़ एक बार सुनता था उसको याद कर लेता था। ये बचपन से मेरे पे ठाकुर जी की कृपा थी। तो मैं गा रहा था तो मेरे पिताजी कहते हैं, तू इसका अंतरा क्यों नहीं गाता है? मैं कहा, पिताजी अंतरा समझ नहीं आया मेरे को। क्यों समझ नहीं आया? लिया मैं बताता हूँ। तो बहरहाल वो मैंने उनको शब्द बताया, नहीं ये शब्द तू गलत गा रहा है, कोई नहीं, वो तो हर 7वें 8वें दिन बजता है, आकाशवाणी रोहतक से और दिल्ली से दोनों आता था, तो वो आकाशवाणी रोहतक से आई थिंक मैंने सुना रहा होगा, या दिल्ली से जा, वो रेगुलर फिर 10-12 दिन में आ गया, अब तू उठ के बैठ जा, मैं बता रहा हूँ 10:30 बजे। तो पिताजी ने 1 सेकंड में उसको ठीक कर दिया। तो ये जो एक रेडियो की मेरी लगन थी, तो मेरे को बहुत कमाल की लगती थी कि यार ये अच्छा है, वहाँ जाते हैं रिकॉर्ड करते हैं आवाज़ को, फिर ऐसे बजता है पूरे इंडिया में। हमारे यहाँ आकाशवाणी बड़ौदा भी लगता था उसमें, मैं जब छोटा था, जींद की बात बताऊँ, हरियाणा के अपने घर,
1: आप जींद के रहने वाले,
0: हाँ जींद के रहने वाले, तो बड़ौदा लगता था, बड़ौदा बड़ा स्टेशन था, और दिल्ली का तो मैं 8:15 बजे का आइटम रोज 8:10 हो गया था बाद में, और 11:05, 11:30 रात को फिर ऐसे 10 बजे या राष्ट्रीय कार्यक्रम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम शनिवार को, संडे का तो बाद में जुड़ा काफ़ी बाद में, तो रेगुलर सुनता था मैं। एक आधा दिन कोई मिस हो गया या कहीं ऐसा, क्योंकि स्कूल के बच्चे थे उसमें कोई ऐसा कहीं जाना आना होता नहीं था। तो ये मेरा जो बैकग्राउंड मेरे को आकाशवाणी के प्रति जो मेरा लगाव था आपसे कहिए, या जो मेरे को आकाशवाणी के प्रति वो उस डब्बे के अंदर जो आवाज़ आती थी वो मेरा एक आकर्षण,
1: वो एक आकर्षण था, प्रेरणा थी कि आवाज़ कैसे आती है।
0: अच्छा फिर क्या हुआ, मेरे पिताजी एक बार गए बम्बई, मैंने उनको कहा, मैं कहा पिताजी वो जो एक वो ऐसा रिकॉर्ड करने वाले आते हैं, एक वो अगर टेप रिकॉर्डर ऐसा मिल जाएगा तो मैं उसको रिकॉर्ड करके दोबारा सुन लूँगा। तो लकली मेरे पिताजी दोबारा गए बम्बई, एक पैनासोनिक का रेडियो लाए, बहुत खूबसूरत, एकदम चमचमाता हुआ, तो मेरे लिए तो खुशी का पारावार नहीं था। और 10 कैसेट भी लाए खरीद के, उसमें वो बक्स जो है 10 का ही आता था, वो एक तो खुली भी मिल जाती थी, मेरे को अच्छे से याद है, एक दो बार जरूर पड़ी मैं खुली ले आया बाद में। तो इस तरीके से मेरा धीरे धीरे लगाव बढ़ा। फिर मैं जब जिन दिनों में कॉलेज में चला गया, हाँ ड्यूरिंग मेरे स्कूल टाइम मेरे को 3-4 बार जो राष्ट्रीय फेलोशिप स्टूडेंट्स की थी वो मिली है, और विज्ञान भवन आज के दिन तो सारे जो नेशनल लेवल के जो भी अवार्ड सेरेमनी होते हैं वहीं होती हैं। मैं जब 7वीं क्लास में था तो फर्स्ट टाइम जब मेरा उसके लिए सिलेक्शन हुआ, सामने विदुषी शरण रानी जी बैठी थी, आहा इतना सुंदर चेहरा, मैं आज भी उनको देखता हूँ। मैं, मेरा छोटा भाई और मेरे पिताजी लेके गए थे मेरे को।
1: तो आपके पिताजी भी म्यूजिक से दखल रखते थे?
0: दखल इन द सेंस, मेरे पिताजी भजन गाते थे, जो सच्चाई वाली बात है, भजन की परंपरा मेरे घराने में ही है, मेरे बाबा जी बहुत अच्छे भजन गाए थे, उनको इतने भजन याद थे कि हमें शर्म आती थी। मेरे पिताजी का रेंज बहुत अच्छा था, स्केल वो आई थिंक डी शार्प से ऊपर से गाते थे, तीसरे काले से। तो शरण रानी जी, विदुषी शरण रानी सामने हमारा इंटरव्यू, हमें पता नहीं था कौन था, हम दोनों ने गाया, तो वो बोलती हैं नीचे से, आपके साथ कौन आया है? तो हमारे पिताजी आगे के, हम आए हैं, तो आप तो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। मैं कहा जी, तो टीचर क्यों नहीं आया? आप देखिए उस समय के जो कलाकार होते हैं, कितने महान कलाकार होते थे वो लोग, तो वो उन्होंने फिर जैसे तैसे, आपको अपने स्कूल का नंबर पता है, जो स्कूल का टेलीफोन नंबर, तो कार्ड दोनों ने लगा रखा था गले में। मैं कहा ये हमारे पास है, इसके कुछ ऊपर है, तो उन्होंने जैसे तैसे नोट कर लिया कुछ, अब हमें पता नहीं क्या नोट,
1: क्या नोट किया।
0: तो उन्होंने फोन लगाया वहां कि आपके यहाँ 2 स्टार बच्चे हैं और आपके स्कूल से टीचर कोई नहीं गया, उनको फेलोशिप अवार्ड हुई है, ये कैसा स्कूल है आपका? तो शाम

0: पता लगा हमारे वो जो एक कोई टीचर थे, गुप्ता गुप्ता करके, मैं नाम भूल गया हूँ, वो दुकान पे आ गए, भैया आपके दोनों बच्चों को तो वो फेलोशिप मिली है और कर प्रिंसिपल उनको स्टेज के ऊपर सम्मानित करेंगे, आप भी आइए। तो वो मेरे को इसलिए ऐसा ये क्षण प्रतीत होता है कि रेडियो की वजह से ही हुआ, क्योंकि उसमें रेडियो में एडवर्टाइजमेंट हुआ था कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या जैसा भी जा सकते हैं, तो हम चले गए। तो धीरे धीरे धीरे ये रेडियो का जो क्रेज बढ़ता गया। कॉलेज के दौरान फिर मैं गाने लगा, एक हमारे यहाँ खुशीराम कौशल जी करके एक सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन है, बांसुरी वादक थे वो, पहाड़ के थे, कुल्लू की तरफ के, तो बेचारे वो जितना सिखा सकते थे अच्छा सिखाते थे, तो पर हम दोनों भाई बहुत लगन वाले थे। अच्छा, उस दौरान बड़े कमाल की बात ये भी है सिंह साहब, मैं फुटबॉल बहुत खेलता था जब मैं कॉलेज में था, तो मैं अपने उस क्षेत्र में एक दो बार कॉलेज के लेवल से टूर्नामेंट भी खेलने गया, तो मेरे एक दो दाहिने पैर में और एक लेफ्ट में चोट भी लगी हुई है। तो हमारे बाबा जी को पता लगा कि फुटबॉल खेलता है, बहुत डांटा उन्होंने, तू गाना गाएगा फुटबॉल खेलेगा, आवाज़ खराब हो जाएगा भाग भाग के। तो फिर हमने धीरे धीरे बंद कर दिया। कॉलेज के दौरान हम कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं थी, कोई कंपटीशन ऐसा नहीं था, कोई वो नहीं था जहां हम नहीं गए हों,
1: भाग नहीं लिया।
0: इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल होता था पूरे कॉलेज का, उसमें भी कई बार हम हर साल 3-4 रोल ऑफ ऑनर हमें मिलने ही मिलने, बिना फेलियर एक कभी हुआ, सेकंड प्राइज कभी आया नहीं
1: जी।
0: ये सिर्फ रेडियो की कमाल
1: जी, मतलब आकाशवाणी उसके उसमें
0: हाँ। अच्छा, उस दौरान भी हम जुड़े रहते थे, ऐसा नहीं भाई अपना वो हुआ रोज गाना सुना, मान लिए राग सुना तो जाके बोला उनको अपने जो हमारे मास्टर जी से सिखाने वाले, छोटा बच्चा था मैं 10वीं तक, तो उनको बोला मेरे को ये सीखना है। कॉलेज में जाने के बाद तो एक प्रोफेसर थे संगीत के, बहुत बड़े
1: प्रोफेसर, मंच मिल गया,
0: एच के सलूजा साहब थे मेरे को अच्छे से याद है। फिर एक जो कृष्णा बिष्ट और भारती चक्रवर्ती मैडम हमारे यहाँ जींद, मेरे विदुषी भारती चक्रवर्ती, वो वोकल की थी, थोड़े दिन उनसे सीखने को मौका मिला। इस दौरान मैं फिर 1980 में ऑडिशन के लिए आकाशवाणी रोहतक गया, 79 या 80 मेरे को याद है, 82 में लास्ट में कॉल आया ऑडिशन के लिए, तो मैं गया वहाँ देने। तो मेरे साथ एक मेरी प्रोफेसर थी मधु भटनागर, वो मेरे को ले गई, उसका लकली उस दौरान रिकॉर्डिंग था, उसने कहा चलो मैं साथ चलते हूँ तेरे को सहारा हो जाएगा, मैं बड़ा खुश हुआ। तो हम चूँकि छोटी जगह से गए थे, जींद में कोई ऐसा इतना माहौल नहीं था, पर हमें लगा हमारी बारी आई है रेडियो में जाने की, तो हम अंदर से वो बहुत बहुत उत्साह था। तो वहाँ चले गए जी, ऑडिशन हुआ, तो मेरे को याद है मैं राग अभोगी गाया था, तो उधर से पर्दे के पीछे से आवाज़ आई कि आप राग यमन गाइए, बड़ी गंभीर आवाज़ थी। तो हमने जैसे तैसे वो भी गाए, एक आधा राग और भी, ऐसे 3-4 राग गाए, तो ऑडिशन हो गया। बाद में फिर वो जो मैडम हमारे साथ गई थी मधु भटनागर जी, उन्होंने हमें मिलवाया एक्सपर्ट से, वो उनके गुरु थे, लकली अब मेरे गुरु हैं पंडित तेजपाल सिंह जी, उन्होंने कस के डांटा मेरे को, यमन तुमसे गाया नहीं जाता, भोगी गा रहे थे, ऐसे ही कहा उन्होंने। और मैं तो वो बाहर खड़े थे जो एक छोटा सा पार्क था, वहीं बस वो जूते उतारे, उनके चरणों में अपना सिर रख दिया, मैं आप ही मेरे गुरु हैं, आप बताइए क्या करना है। तो मैं ऑडिशन हो गया क्लियर, लोकल ऑडिशन होता था पहले, फिर मेरा रिकॉर्डिंग गया जी। और वो जो जैसा मेरे को विदित हुआ कि हम 37 लोग उसमें पास हुए थे, 5-6 दिन ऑडिशन हुआ था, तो उसमें अकेला वोकल में मैं पास हुआ। तो आकाशवाणी के वहाँ कुंदन लाल जी थे, वो बोलते बहुत अच्छे कलाकार थे, बुजुर्ग थे काफ़ी उस समय भी, वो मेरे को कहते हैं कि तुम तो सिर्फ अकेले पास हुए हो यार, कोई पास नहीं हुआ, मेरे बच्चे ही पास नहीं हुए, पर तुमने गाना अच्छा गाया था। देखो मेरे को आज भी ये पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें याद आ रही हैं, कि ऐसे सीक्वेंस जुड़ रहा है कि कैसे मैं रेडियो में जाऊंगा, एक के बाद एक चीज़ें होती गई, ग्रेड आ गया। इसी दौरान मैं 1984 में गुरुजी का शिष्य बन गया, एमए करने के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया एकदम, क्योंकि मेरी वहाँ सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होना था, क्योंकि मैं थ्रू आउट टॉपर था अपने म्यूज़िक फील्ड में। तो मैं कहा नहीं, मैं तो गाना सीखना है, तो मैं गुरुजी की शरण में चला गया 1984 में। तो गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अपने गुरुजी का शिष्य बना 1985। तो उससे बस शिष्य बनने से 6 महीने पहले ये यूपीएससी की पोस्ट निकली थी, वो मैं भरा

0: 88 में फिर इंटरव्यू हुआ, तो ऐसे मेरी एक प्रॉपर एंट्री आकाशवाणी में हुई।
1: मतलब 88-89 में आप आकाशवाणी में?
0: पर मैं ज्वाइन 91 के, हमारा बैच 88 है।
1: ज्वाइन 91
0: के। उसके बाद वो कुछ ना कुछ कारण रहा, हमारे पिताजी एक बार खूब उन दौरान कष्ट में थे, तो हमारा जब पोस्टिंग आ गया अल्मोड़ा के लिए, आकाशवाणी अल्मोड़ा 16 मई 1991 मेरे को डेट याद है, तो पोस्टिंग आ गया, तो हमारे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो चिंता कर रहे थे ये घर से बाहर कहीं गया नहीं, अभी कैसे वहाँ रहेगा
1: अल्मोड़ा।
0: तो लकली हमारे पड़ोस में कोई रहते थे, भागती भागती एक लेडी थी बेचारी आई कि काका जी तुसी चिंता न करो, मेरा भरा उत्थे हैगा, वो पंजाबी में बोल रहा हूँ कि मेरे ब्रदर वहाँ हैं, वो उनकी ज्वेलरी की शॉप है, वो इनको बहुत अच्छे से रखेंगे। तो आप विश्वास करिए कि 16 मई 1991 को मैं वहाँ गया हूँ, ज्वाइन किया हूँ, और 21 मई को आपको पता ही होगा राजीव गांधी जी की डेथ हुई, बड़ा माहौल ख़राब हो गया था, तो उनको पता लग गया, उन्होंने फ़ोन किया, वर्मा जी थे बेचारे जोगिंदर वर्मा जी, तुरंत आ गए, सब उन्होंने सामान पैक किया, मेरा अपने घर ले गए। तो मेरी जान में जान आई, मैं कहा यार एक अपने घर का व्यक्ति है। इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा रेडियो में एंट्री से लेकर उससे पहले का पीरियड भी रेडियो के साथ ही रहा, कहीं पे भी मेरा आकाशवाणी छूटा नहीं। और बाद में जबकि मेरे पिताजी की इच्छा थी हम डॉक्टर बने, मेरा छोटा भाई बन गया, मैं नहीं बन पाया अनफॉर्चुनेटली, पर हमें साइंस में था बहुत इंटेलिजेंट, मैं बहुत जो डाइसेक्शन करने में पूरे कॉलेज में एक नंबर पे था, अर्थवर्म का, खरगोश का, फ्रॉग का, अर्थवर्म का जो नर्व रिंग होता है पूरे क्लास में किसी का नहीं निकलता था, मेरा निकलता था साबित।
1: लेकिन आपको म्यूजिक की
0: नहीं, वो एक्चुअली वो इसलिए हो गया, बाद में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि जब मेरा मेडिकल में नहीं हुआ डॉक्टरी सिलेक्शन, तो मैं देन कन्वर्ट टू म्यूजिक। तो ऐसे 16 मई 1991 को मैंने आकाशवाणी अल्मोड़ा जो है
1: एज ए कार्यक्रम अधिकारी
0: संगीत
1: तो अल्मोड़ा से आप जी शुरुआत।
0: पर यह कि वो आपको पता ही है कि जब आप इसमें ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आपको इनके सबके साथ और चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारा मूलतः जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव था उसका जो रोल था प्लानिंग प्रोडक्शन एंड
1: एग्जीक्यूशन,
0: तो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, आप मना नहीं कर सकते। मेरे को अच्छे से याद है मैं वहाँ बहुत सारे दिन युवाणी भी देखा, और एक महिलाओं का कार्यक्रम थोड़े दिन मैंने वहाँ देखा अल्मोड़ा में, तो इस दौरान मैं सारी जो अल्मोड़ा की कुछ डिशेज होती थी, कुछ दाल एक थी भट की दाल पता नहीं कुछ ऐसा बोलते थे, वो किडनी स्टोन के लिए बड़ी ऐसा बोलते हैं, तो कुछ व्यंजन हमने सीख लिए उनके।
1: जी जी जी मतलब जीवन जो आकाशवाणी की एक खूबसूरती है कि जैसे जीवन हमें सिखाता है, आकाशवाणी भी छोटी छोटी चीजों से
0: और दूसरा
1: सिखाती चलती है, आगे लेके चलती है,
0: हमें जोड़ना भी सिखाती है वो।
1: जी जी जी
0: आकाशवाणी का देखिए सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ रोल है वो यही है, हर व्यक्ति के लिए वहाँ कुछ ना कुछ है, हर व्यक्ति वो किसी फील्ड का भी हो, बस उसमें एक ही है कि आपके अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि आप उसको ढूंढने का मतलब आपको समय पता होना चाहिए, भाई मेरे मतलब का प्रोग्राम 10 बजे आएगा, रात को 10:30 बजे, मैं बचपन से रात को 10:30 का आइटम रोज सुनता था, मेरे को पता है सवेरे आकाशवाणी रोहतक से 7:30 बजे का आइटम आता था, सब पता है, रटा हुआ था। तो इस दौरान मैं वहाँ पे वो देखा, कोऑर्डिनेशन बहुत दिन देखा, फिर वहाँ ट्रांसपोर्ट का क्या रुतबा होता है वो देखा, पर इस दौरान कुछ चीज़ें बहुत मेहनत भी हुआ, क्योंकि हम एकदम नए उसमें ट्रैक में गए थे। देखिए गाना गाना एक अलग वो है, मेरा क्लासिकल वोकल मैं गाता हूँ वो एक टोटली फॉर्मेट अलग है, पर जब आप एक डेजिग्नेटेड सीट के ऊपर हैं, जब आप एक एग्जीक्यूटिव है या ऑफिसर हैं, तो उसके दायित्व अलग हैं सारे,
1: तो वहाँ फिर संस्था को चलाना
0: है। हाँ संस्था को चलाना है, वहाँ गाना थोड़ी गाना है, कि मैं गाना गाता हूँ उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है आप कभी कभी गाइए, कोई मना थोड़ी करेगा। तो उस दौरान फिर हमने सारे जो इसके रूल्स रेगुलेशन हैं सब बेसिक ट्रेनिंग कोर्स हुआ, वो तो वहाँ हुआ, पर इसके बाद एक हमारे डायरेक्टर आए थे मिस्टर बलराम राय, उन्होंने एक एक चीज़ हमें सिखाई, एक एक चीज़ सारे कितने डूज हैं डोंट्स हैं, आपका एज गस्टेड ऑफिसर क्या रोल है, ब्रॉडकास्टिंग के क्या नियम है, ये क्या नियम है, आप दूसरे कंट्रीज के प्रति आप डॉक्टरी का अगर मान ले कोई व्यक्ति डॉक्टर के बातचीत करता है कौन कौन सी चीज़ें बोल सकता है। अभी मैं आज भी हैरान होता हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ें जो अभी यूट्यूब में देखते हैं कुछ भी इजिली कर रहे हैं, आप उसमें नहीं कर सकते थे, ये खा लीजिए इससे आपका ये दर्द ठीक हो जाएगा, हम नहीं बोल सकते,
1: नहीं बोल सकते,
0: वी आर नॉट सपोज टू,
1: क्योंकि जो सुन रहा है वो हमारे सामने नहीं है,
0: नहीं सामने नहीं है, पर वो अगर मान लिया कल को चैलेंज कर देगा तो हमारे पास वो नहीं है,
1: सही बात है,
0: क्योंकि हमारा जो रूल है वो हमें अलाउड नहीं करता, जो है डॉक्टर बोल

0: सकता है। मैं बींग एंड ब्रॉडकास्टर ये नहीं बोल सकता आप ये चीज खा लीजिए इससे आपका ये दर्द दूर हो जाएगा, ये हमें परमिट नहीं करता। तो इस तरीके से फिर हमने एक एक चीज को सीखा। पर यह था कि जब मैं 91 में वहां ज्वाइन किया हूं, 15 अगस्त का एक प्रोग्राम मैंने सबसे पहले किया, पूरे आकाश अल्मोड़ा शहर के नौजवान बच्चों को ले आया, लड़के लड़कियां, तो गांव की गुहार पर, देश की पुकार पर नौजवान बढ़े, चलो आई कंपोज ए ब्यूटीफुल सॉन्ग देशभक्ति की। तो वो इतना पॉपुलर हुआ, इतना पॉपुलर हुआ, तो पूरे अल्मोड़ा शहर में हो गया, कोई व्यक्ति आया, भाई अच्छा है, अच्छा संगीत सिखाया बच्चों को, हर गली में जाओ तो कोई ना कोई मिल जाए, छोटा सा अल्मोड़ा शहर है। तो आकाशवाणी जो जो चीज वहां से मिला मेरे को, मैं आज भी उसको
1: एंजॉय कर,
0: हाँ रोमांचित होता हूँ
1: जिंदगी में, आपको थ्रिल,
0: हाँ रोमांचित होता हूँ अभी उसको याद कर। हमारी वाइफ ने बहुत उसको एंजॉय किया, जब बाजार में जाते थे हर व्यक्ति चाय पी के जाइए आइए बैठिए, तो हमें लगता था भाई हम तो आए हैं यहाँ पर, कितना मान सम्मान, सिर्फ उसकी वजह से। वो एक हमारी एंट्री थी, आप मान के चले आए जन म्यूजिशियन, अफसर हम अलग थे, चलो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव अलग थे, पर हमने एक प्रोडक्शन में दो सॉन्ग किए थे, कि ये क्या था, कोई और भी था, वो रविंद्रनाथ ठाकुर जी का कोई गीत था, भारती जा विजय करें शायद।
1: तो आकाशवाणी को लोग उस समय एक ऐसी संस्था के रूप में, जो मतलब जो शुरुआत में हम कह रहे थे कि जिसका जानकारी, सूचना, शिक्षा, मनोरंजन तो है ही, लेकिन एक कल्चरल जो देश की जो थाती है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता, उसकी संभाग के तौर पे लेती थी।
0: हाँ,
1: आज भले बहुत साधन हो गए हो,
0: नहीं, नहीं,
1: लेकिन तब नहीं था, तब आकाशवाणी इसका पालन पोषण किया।
0: सिंह साहब, मैं आपको बताऊं, बहुत सुंदर आपने बात की है, मैं आपको एक बड़ा इंस्टेंस बताता हूँ। उन दिनों में रामचरितमानस गान बहुत प्रचलन था
1: जी,
0: सवेरे जो खेती का कार्यक्रम था उसके बाद रामचरितमानस आता था। तो मिनिस्ट्री उसमें जो गरीब कुछ कलाकार होते थे उनको स्पॉन्सरशिप कर पैसा देती थी, कुछ थोड़ा थोड़ा, अभी ये तो मेरे को याद नहीं कितना, पर देती थी। तो एक ऐसे चेक देने के लिए मैं किसी गांव में, मेरे एसडी ने बोला कि ये तीन चेक हैं, ये आसपास के लोग हैं, आप गाड़ी लेके जाओ, और इस बहाने आप अल्मोड़ा के आगे इंटीरियर में जाना था काफ़ी, तो ये उनको हैंड ओवर करके आओ। तो हम किसी पहाड़ की चोटी से जब जा रहे थे, एक जगह गाड़ी ऊपर जहाँ ने रोक दी, तो उन्होंने देख लिया गाड़ी वहाँ रुकी है, वो वहाँ से वो सामने कहीं देख रहे हैं, एक एक डेढ़ किलोमीटर नीचे
1: जी जी,
0: वो ड्रम बजाना शुरू कर दिया, तुतरी ड्रम बज रहा है, जो पहाड़ की रणसिंगा होता है वो बहुत हो रहा है एकदम ब्राइट सब। तो मैं कहा ये तो बड़ा सुंदर बजा रहे हैं, आपके स्वागत के लिए बज रहा है, मैं क्या मतलब, आप सोच नहीं सकते मेरे को कितना रोमांच हुआ। तो मैं जब वहाँ गया तो एक बूढ़ी औरत मेरे को अच्छे से याद है, वो बेचारी बैठ नहीं सकती थी, वो ऐसे आशीर्वाद दे रही थी कि मैं बेटा आपका, वो अपनी कुमाऊनी भाषा में बोल रही थी, रामचरितमानस मेरे को सब याद है, सबसे सुंदर काम आप ये करते हैं कि रामचरितमानस गाना आता है, आप सोच के देखिए। और उस महिला ने वो सवेरे का एपिसोड सुना दिया मेरे को, ये देखिए मेरे को रोमांच कितना लग रहा है। तुम रेडियो, आप सोच के देखिए, ये रेडियो की जीवंतता थी
1: जी जी जी,
0: क्योंकि पहाड़ की जीवन जो है वो थोड़ा सा कष्टकारी है, तीन चार महीनों को छोड़ दीजिए, बाकी सर्दी आने के बाद तो छः सात महीना एकदम दूसरे किस्म का माहौल होता है। पर वो मेरे को सीन आज भी याद है, उस माता की शक्ल भी याद है बूढ़ी औरत की, वो इतनी आशीर्वाद दे रही थी सिर्फ इसलिए। मैं कहा नहीं नहीं माता जी, उसको मैं नहीं बजाता, नहीं नहीं आप रेडियो वाले आप ही बजाते हैं।
1: तो लोग संस्था को पहचानते थे,
0: बिल्कुल,
1: व्यक्ति और कलाकार से ज़्यादा संस्था अपने आप में बड़ी थी, तो उसको जो है। लेकिन आज जब हम देखते हैं, आपने वो सब दौर देखा, वो देखा, अब तो हर व्यक्ति के पास बहुत सारे साधन हो गए, लेकिन एक समय ऐसा था जब सिर्फ आकाशवाणी ही इन चीज़ों के लिए जानी जाती
0: थी। पर एक्चुअली देखिए, इसमें दो चीज़ें सिंह साहब, मैं बताऊँ, ये बात सही है, मेरा वहाँ से जब उस दौरान मैं अल्मोड़ा में और बहुत सारे काम किया, मैं लोग गाथा के बहुत रिसर्च किया, बहुत सारा रिकॉर्डिंग किया, लगभग 1500-750 घंटे का रिकॉर्डिंग किया है वहाँ, 10-12 जितनी रेयर लोग गाथा थी उसके ऊपर। एक बार कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने PhD किया, एक बार हमारे साथी थे मनोज सिंह ब्रिजवाल जी, उन्होंने स्पेशली मेरे को कहा कि नरेश आज तेरा एक PhD में नाम आया है कुमाऊँ यूनिवर्सिटी में, एक किसी बच्चे ने कोई PhD किया उसमें तेरा रेफरेंस दिया है, कि ही वॉज द पर्सन हु रिकॉर्डेड सो मैनी लोग गाथा हियर एंड विद कम्प्लीट टेक्स्ट। तो मेरे को इससे बड़ी क्या खुशी हुई, मैं उस दौरान डायरेक्ट
1: काम को रिकॉग्निशन मिला।
0: हाँ अच्छा, इसके बाद जब मेरा ट्रांसफर हुआ, देखिए मैं आपको बहुत कमाल की बात बताऊँ, भोपाल में हमने एक ऐसी, जब 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, मैं उस दौरान भोपाल में था
1: जी,
0: तो भोपाल का जो एरिया है या जो उसका साथ में चार

0: मजिस्ट्रेट मिलते हैं, उसके हर गांव के जो स्वतंत्रता सेनानी थे सब के नाम का एक एक अंतरा बना के, ऐसे हमने 58 अंतरों का एक सॉन्ग बनाया था, 58 अंतराज। तो उसकी कमाल देखिए, क्योंकि मैं शुरू से कंपोजर भी रहा, मैं अपने गुरुजी के साथ पंडित तेजपाल सिंह जी साथ बहुत काम किया कंपोजिंग का
1: जी।
0: जिस जगह का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, मान लीजिए बुंदेलखंड का था, तो वहां बुंदेलखंड ही म्यूजिक का अंतरा था, उसको जो हमने कंपोज किया, मोल्डिंग किया उसका, तो वो जब 2.5 घंटे का गाना ऑन एयर हुआ, मैं आज भी उसको याद करके रोमांचित होता हूँ कि ये कैसे हम
1: कैसे कर पाए हम कैसे,
0: पर रेडियो की ये कमाल थी, वो करवा लेता था। अच्छा, फिर उसकी एप्रिसिएशन आती थी। आपको याद होगा जिन दौरान मैं यहाँ भोपाल, ये आकाशवाणी मथुरा की भी बात उठाऊं, इस दौरान हमने भोपाल में दोबारा मैंने जो नेशनल प्रोग्राम लाइव शुरू किया, लाइव फ्रॉम द स्टूडियो, आई एम द पर्सन, इतने साल के बाद एक डायरेक्टेड का कोई ऐसा मीम आया कि कोई स्टार्ट करना, मैं कहा यस आई विल स्टार्ट इट। और वहाँ चूंकि कंप्यूटर वगैरह था, इंजीनियर टीम थी पूरी, तो हमने उसको शुरू किया। इस दौरान मेरा ट्रांसफर हो गया मथुरा में। मथुरा में आने के बाद आपको याद होगा संस्कार गीत का जो ओरिजिनेशन है, आई एम द पर्सन, मेरे को आज भी खुशी है, 13 एपिसोड बना था यहाँ से, पर उसका नेपाल से कहाँ कहाँ से उसे के लोग।
1: अच्छा, इसमें मैं जानना चाहूंगा कि जो संस्कार गीतों की एक आकाशवाणी ने एक ऐसा काम करके रखा कि आने वाले समय में शायद ये चीजें नहीं रहेंगी, क्योंकि धीरे धीरे चीजें धूमिल हो रही हैं संस्कारों से, व्यवहार से, परिवारों से। तो कभी लोग इसको देखेंगे उठा के, तो आकाशवाणी ने एक ऐसा काम किया पूरे देश में कि हर जाति, हर वर्ग के हर संस्कार के गीतों को रिकॉर्ड करके रखा। और तो इसके पीछे की जो सोच थी वो क्या, वो और क्या मतलब?
0: नहीं नहीं, देखिए सोच मैं आपको बताऊं, मैं और यहाँ पर ज्यूरिंग जब आकाशवाणी मथुरा में था, ये सोच यहीं से डेवलप हुई। मेरे साथ पंडित सोमदास शर्मा जी थे, ADP मेरे वो थे, ASD। तो हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग में प्लानिंग किया कि हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं। भाई हमारे जैसे मथुरा में अगर देखें, ठाकुर जी के जन्म से सबसे बड़ा उत्सव होता है जन्माष्टमी, तो हमने कहा यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो संस्कार गीतों की ऐसे हमने शुरुआत किया। और इस दौरान आपको एक बड़ा कमाल का इंस्टेंस बताऊं, आप मेरे श्रोता को भी बहुत आनंद लगेगा कि एक गाना हम रिकॉर्ड करके लाए कोई कोसी के पास किसी बूढ़ी महिला का, तो वो अंदर तो घूंघट डाल के बैठ जाने नहीं देते थे। तो हम एक तो जो महिलाएं थी उनको बोला कि आप थोड़ा सा साथ बैठ के गा दीजिए, इनसे थोड़ा सा ठीक करके एक गाना अच्छा है लोकगीत। तो वो लोकगीत के बोल थे, रात को हम कन्या जनवाएंगे, तो यशोदा से पूछे दाई कि रात को हम कन्या जनवाएंगे कैसे भय कनाई। भाई रात को तो कन्या का जन्म हुआ था, ये जो भी इंस्टेंस है या जो उसकी परिकल्पना है लिखने वाले की, पर उस गीत में बड़ा कमाल का भाव था। जब ये एयर्ड हुआ लखनऊ से नेशनल स्टेट कप पे, कहाँ कहाँ से लेटर नहीं आया, ढेर लग गया यहाँ आकाशवाणी मथुरा में, इतने लेटर आए थे इसका इस लोकगीत के ऊपर। तो वो बार बार कहीं ये किस आदमी ने ऐसा ढूंढा, तो उसका ओरिजिनेशन हमने यहाँ से किया, जो बाद में हमने डायरेक्टरेट में जब हम चले गए, सोमदास शर्मा जी ने इसको संसद में उठा के हम इतने हजार लोकगीतों का रिकॉर्डिंग करेंगे, ऐसे उसका वो शुरुआत, पर वो हुआ यहीं से
1: मतलब मथुरा से।
0: फिर आगरा ने किया, ऐसा किया, वो किया, पर हर स्टेट ने किया,
1: सबने किया।
0: क्योंकि अगर देखिए आज भी अगर मेरे से बीइंग म्यूजिशियन पूछे, मैं आपको बताऊं, हमारी जो एनरिच्ड संगीत है वो हमारा भारत में ही है। हर क्षेत्र में लोकगीत में देख लीजिए, क्लासिकल में देख लीजिए, ध्रुपद द्वार में, गाने में, नाचने में, डांस में, लोकगीतों में, गीत में, सुगम, हर फील्ड में। आप अगर कलकत्ता को, बंगाल को देखें, लोकगीत सबसे ज्यादा वैरायटी वहां है। ऐसे मध्य प्रदेश में जितनी बोलियां, उन बोलियों के वेरिएशन के भी बहुत सारे लोकगीत हैं। तो ये बहुत, मैं समझता हूं संगीत जो आकाशवाणी ने किया है उससे बड़ा कोई कर सकता नहीं। देखिए मैं आपको एक अच्छी कमाल की बात बताता हूँ। ड्यूरिंग मैं जिस दौरान डायरेक्टेड में था, चूंकि मैं प्योर क्लासिकल का व्यक्ति रहा, तो मैं जितने घराने, कुछ घराने के आर्टिस्ट धीरे धीरे एक या दो रह गए थे या बूढ़े हो गए थे, जैसे आगरा घराना कोई गाने वाले नहीं थे, तो ऐसे जो कुछ और घराने रेयर थे हमने उनको दोबारा जीवंत किया। फिर मैं जिस व्यक्ति का नेशनल प्रोग्राम लगाता था उनसे पूछ लेता था, भाई मान लिया था रामपुर सैसवान घराने का कोई आर्टिस्ट मैंने रिकॉर्ड किया, तो उनसे पूछ लेता था आपके घराने में कौन कौन से रेयर राग हैं। तो पर मैं ये देख लेता था ये व्यक्ति, ये आर्टिस्ट गा सकता है,
1: गा सकता है।
0: तो वो जितने भी रेयर राग थे या रेयर कंपोजिशन।

0: मैं सारे रिकॉर्ड कर दिया, वो देर से हमारे आर्काइव्स में कहीं है। तो जैसे ही रिकॉर्ड होता था एक सीडी में स्पेशल आर्काइव्स के लिए अलग से हम मंगाते थे, ये हमने रूल बना दिया था बाद में कि जो भी रिकॉर्डिंग आएगी आइदर सुगम संगीत के प्रोग्राम की आएगी या संगीत नेशनल प्रोग्राम अखिल भारतीय संगीत सभा, उसकी दो कॉपी आएंगी, एक कॉपी सीधी आर्काइव्स में जाएगी। पहला काम है प्रिजर्वेशन होना चाहिए। तो उसका मेरे को इसलिए आनंद लगता है कि बहुत सारे ऐसे रेयर राग मेरे में, चूंकि जिनको जानता था जो नहीं गा सकते थे लोग, वो रिकॉर्ड हुए हैं। तो कल को कोई व्यक्ति रिसर्च करेगा,
1: ढूंढता हुआ आएगा कि भाई इस आगरा का घराना था, इसमें ये राग गाया जाता है, तो वो वहाँ आकाशवाणी उसकी मदद कर सकता
0: कर सकता है। तो ये रेडियो का रोल भी है,
1: रोल है,
0: आकाशवाणी का रोल ये भी तो है ना कि हम चीजों को इस तरीके से निकाल के रखें। उगलवाना जो है वो जो व्यक्ति वहां बैठा उसका काम है, बशर्ते उसको पता होना चाहिए, या फिर आप ऐसे व्यक्ति को जोड़िए जो इस चीज के इस लेवल पे जानता हो। कि मैं चूंकि वोकलिस्ट था तो मेरे को तकरीबन हर घराने के 10-10 आर्टिस्टों से मेरा अच्छा इंटरेक्शन था। अगर उस्ताद अमजद अली खान साहब को बुलाया तो मेरे को पता ये राग ये अच्छा बजा सकता है, तो उनका वही राग रिकॉर्ड करना है। एक बार आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के लिए मैंने डॉक्टर एन राजम को मॉर्निंग का कंसर्ट दे दिया, सुबह की सुबह 4 होती थी ड्यूरिंग संगीत सम्मेलन। तो मैंने उनको फोन किया तो मेरे को कहती हैं आपने मेरे को सवेरे का संगीत सुबह क्यों दिया, वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट है पर कितनी हम्बल है, ये मैं आपको इसका उदाहरण दे रहा हूँ। तो मैंने उनको मैं कहा मैडम सच्चाई वाली बात है आपके इवनिंग के तकरीबन सब राग हैं हमारे पास, काफ़ी हैं, पर मेरे को लगता है इस दौरान सवेरे 2 के मॉर्निंग राग आ जाएंगे मेरे पास। इतनी खुश हुई कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ये जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको ये सब चीजें आंखें ऐसे खोल के रखना, क्योंकि हमारा स्पियर रेडियो का बहुत बड़ा है, आपको जिस फील्ड में जो चीज चाहिए आपको सब मिल जाएगी।
1: जी जी, तो श्रोता बंधु आप थे श्री नरेश कुमार मल्होत्रा साहब, आप सहायक निदेशक प्रोग्राम म्यूजिक से सेवानिवृत्त हुए आकाशवाणी में। एक लंबा सफर, एक लंबा कार्यक्रम, वो लंबी याद है जो आज कुछ उसमें से हमने आपके साथ साझा की। आगे भी इस क्रम को जारी रहेंगे। मल्होत्रा साहब आप आए, अपने अनुभव और जानकारी से हमारे श्रोताओं से फिर से एक बार जुड़े थे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जय श्री राधे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम याद है जरा जरा, क्रम में नरेश मल्होत्रा से ओपी सिंह की बातचीत। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार यानी आज 10 सितंबर 2026 में 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है हड्डियों एवं जोड़ों से संबंधित रोग, कारण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर AK पाठक, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ, आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके या हमारे मोबाइल नंबर 9412-2555-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में हड्डियों एवं जोड़ों से संबंधित रोग, कारण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है हड्डियों एवं जोड़ों से संबंधित रोग, कारण और निवारण। श्रोताओं, यदि आप हड्डियों एवं जोड़ों से संबंधित समस्याएं जैसे जोड़ों में दर्द, अकड़न, सूजन, आवाज आना, गठिया, रिकेट्स, हड्डी का कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया जैसे लक्षणों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो पूछिए सवाल डॉक्टर AK पाठक, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ, आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार यानी आज 10 सितंबर 2026 और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए सुनिएगा फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को। फिल्म का नाम था दिल, शब्द रचना समीर की थी और इस गीत को धुन से सवारा था आनंद मिलन ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को लिया है हमने फिल्म परदेश से। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और इस गीत को संगीत से सवारा है नदीम शबर ने।

फिल्म संगीत हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे शंकर महादेवन को। फिल्म का नाम था दिल चाहता है। शब्द रचना जावेद अख्तर की थी और इस गीत को धुन से सवारा था शंकर एहसान लॉय ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की युगल आवाजें हैं। फिल्म का नाम है धर्मात्मा। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने और इस गीत को संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म धड़कन से। आवाज़ें हैं अलका।

अभी आपने सुना समीर का लिखा गीत, नदीम श्रवण का संगीत, आवाजें थी अलका याग्निक और सोनू निगम की। फिल्म का नाम था धड़कन। इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार यानी आज 10 सितंबर 2026 को 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है हड्डियों एवं जोड़ों से संबंधित रोग, कारण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ए.के. पाठक, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके या हमारे मोबाइल नंबर 9412255975 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में हड्डियों एवं जोड़ों से संबंधित रोग, कारण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है हड्डियों एवं जोड़ों से संबंधित रोग, कारण और निवारण। श्रोताओं, यदि आप हड्डियों एवं जोड़ों से संबंधित समस्याएं जैसे जोड़ों में दर्द, अकड़न, सूजन, आवाज आना, गठिया, रिकेट्स, हड्डी का कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया जैसे लक्षणों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो पूछिए सवाल डॉक्टर ए.के. पाठक, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार 10 सितंबर 2026 यानी आज, और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल को, फिल्म का नाम था देवदास। इस गीत को लिखा था नुसरत भट्ट ने और इस गीत को संगीत से संवारा था इस्माइल दरबार ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। उदित नारायण की आवाज़ है और फिल्म का नाम है दिल जले। शब्द रचना जावेद अख्तर की है और इस गीत को धुन से संवारा है अन्नू मलिक ने।

अभी आप सुन रहे थे पूर्णिमा और साथियों के स्वर में अंजाम फिल्म का ये गीत। शब्द रचना समीर की थी और इस गीत को धुन से सवारा था आनंद मिलिंद ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म लज्जा से। आवाज है अलका याग्निक की। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सवारा है इस गीत को अन्नू मलिक ने।

0: अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक को, फिल्म का नाम था लज्जा। शब्द रचना समीर की थी और इस गीत को धुन से संवारा था अन्नू मलिक ने। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है सिम्स हेलो डॉक्टर कार्यक्रम। प्रायोजित इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मथुरा। आज का विषय है हड्डियों एवं जोड़ों से संबंधित रोग, कारण और निवारण। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर AK पाठक, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ।
1: सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली मथुरा।
2: श्रोताओं नमस्कार। आपका अपने उस कार्यक्रम में जिसका आप इंतजार करते हैं पूरे सप्ताह, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हड्डी संबंधी बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो हमको दो चार करती हैं, परेशान करती हैं। उनके क्या कारण हो सकते हैं, क्या समाधान हो सकते हैं, क्योंकि विज्ञान बहुत बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। जो काम पहले डॉक्टर करते थे आज उनको मशीनें करने लगी हैं। थोड़ी सी बात आज रोबोटिक सर्जरी पर भी करेंगे, ये क्या है, और कई बार ऐसा लगता है कि क्या इंसान से बेहतर मशीनें काम कर सकती हैं। तो ये मैं नहीं, डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि कैसे उनका उपयोग करते हैं मशीनों का। आप हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं 0565 लगा करके 2530135 नंबर लगाइएगा, बेसिक पर है, और एक व्हाट्सएप नंबर भी है 9412225575, जहाँ कहीं भी है। ऐप के माध्यम से भी हमारा ये कार्यक्रम पूरे ऑल ओवर इंडिया सुना जा रहा है। तो आप अपनी समस्याएं जो हड्डी के संबंध में हो सकती हैं, चलने फिरने में, उठने में, घुटनों का दर्द है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, हम एक एक करके उन पर बात करेंगे। हमारे साथ आज रहेंगे डॉक्टर अश्विनी कुमार पाठक साहब, जो वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा में। डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार।
3: नमस्कार सर जी। नमस्कार श्रोताओं।
2: तो बताइए कि ये समस्या तो ऐसी है कि अब तो जिसको हम 50 और 60 साल पे सोचते थे कि भाई हड्डियों का दर्द हो रहा है, अब तो बहुत जल्दी होने लगा है।
3: सर आजकल हड्डियों में दर्द होने का जो सबसे बड़ा मेन कारण है वो सर लोगों की लाइफ स्टाइल का इशू है। लोग अपने खाने पीने पे प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं। दूसरा वेट का इशू सर आप देख ही रहे हो आजकल, फिर हाँ ओवर वेट, प्री मैच्योर ओबेसिटी, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो बोन स्ट्रेंथ है वो कम होती है और इसकी

0: समस्याएं फिर जल्दी
1: जी,
0: आने लगती हैं।
1: श्रोता हमसे जुड़ने लगे हैं, एक एक कर प्रश्न लेते हैं। हेलो
2: हेलो,
1: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: नाम बताइए भैया।
2: हेलो,
1: हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए, नाम बताइए।
2: अरे महुली से बोल रहा हूँ मैं, जगदीव आश्रम के पास महुली गांव है।
1: ठीक है, मोहली है, बताइए, नाम बताइए अपना।
2: मेरे घुटनों में दर्द रहता साहब, काफी पुराना दर्द है।
1: पुराना दर्द है, घुटनों में दर्द है। उम्र कितनी होगी?
2: उम्र है मेरी 60 साल।
1: 60 साल है। नाम नहीं बताया आपने।
2: मेरा नाम चंदन सिंह।
1: चंदन सिंह जी, ठीक है, डॉक्टर साहब से बात
0: हाँ,
1: कराते हैं।
0: दर्द आपका कितने समय से रहता है?
2: हेलो, अरे
0: हाँ, आपका दर्द कितने समय से रहता है घुटनों में?
2: कभी
1: कब से है चंदन सिंह जी ये दर्द है आपको?
2: 10 साल हुए, कम से कम 10 साल
1: 10 साल हो।
2: ना।
0: अच्छा, देखो, आपने एक लिमिट क्रॉस
2: डॉक्टर
0: कर दी है, आपका पेन 10 साल से हो रहा है,
2: डॉक्टर
0: तो उसके लिए कभी
2: साहब,
0: आपने कुछ एक्सरे कराए हैं आज तक, या किसी डॉक्टर को दिखाया है? नहीं,
2: मुझ पर मतलब जैसे जमीन पर बैठ गए ना, पैर मुड़ के वैसे नहीं बैठा जाता है।
0: जी देखो, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जैसे आपने मुझे बताया कि 10 साल से मुझे दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपके आसपास जो भी डॉक्टर हैं उन्हें आप दिखाइए, और आप वैसे भी मथुरा के रहने वाले हैं तो आप हमें भी आके दिखा सकते हैं, क्योंकि 10 साल से दर्द होना इसका मतलब कुछ कुछ तो ऐसी समस्या है कि जिसको हमें एक बार प्रॉपर देखना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम आपको उचित इलाज बता पाएंगे कि जिससे आपको आगे का जीवन स्वस्थ रहे, परेशानी ना हो, क्योंकि घुटने बहुत ही ज़रूरी चीज़ हैं, बिना।
1: हाँ, मतलब कहने का चंदन सिंह जी ये है कि अब वो उम्र इतनी है कि आपको सिर्फ टेलीफोन से सुन करके कोई इलाज नहीं मिलेगा, एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल में जाइए
0: हाँ
1: और दिखाइए, एक्सरे कराइए। और बहुत दिनों से भी हो रहा है, तो एक 10 साल आप बता रहे हैं, 60 साल की उम्र है, तो जी
2: आपके हॉस्पिटल में नहीं इलाज होगा?
1: हाँ, क्यों नहीं होगा,
0: हो
1: क्यों नहीं।
0: जाएगा हमारे यहाँ,
1: हाँ
0: हो जाएगा, आप मुझे दिखा सकते हैं।
1: है ना, तो डॉक्टर अश्विनी पाठक बात कर रहे हैं, आप जाके सिम्स में बात कर लीजिए, ठीक है जी। तो अब जैसे डॉक्टर साहब 60 साल उम्र, अब तो और जल्दी भी हो रहा है, लेकिन व्यक्ति को एक तरह से जब तक तो बहुत परेशानी नहीं हो, वो ये मानता नहीं है कि मैं इसके साथ रहने की एक तरह से आदत सी बना लेते हैं
0: बिल्कुल सर,
1: जी।
0: क्या है ना सर, शुरुआत में जब हमें हल्का फुल्का दर्द होता है तो हम उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, यदि हम उम्र के हिसाब से घुटनों की बात करें तो इस परेशानी को हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है। इसमें ग्रेडिंग होती है 0 से लेके 4 तक।
1: जी
0: इनिशियल जब शुरुआत में जब हमें दर्द होता है तो हल्का फुल्का दर्द रहता है 1 से 2 दिन का, फिर वो दर्द ठीक हो जाता है, हो सकता है कि वो दर्द अगले 6 महीने तक भी नहीं आता है या 2 साल भी नहीं आएगा, फिर आपको हल्का
1: हेलो, हाँ जी,
0: फुल्का।
1: नमस्कार
2: नमस्कार जी।
1: शुभ नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मेरा सुरेश चंद्र अग्रवाल,
1: सुरेश जी कहाँ से बोल रहे हैं?
2: जयसिंहपुरा बांगर।
1: अच्छा, जय सिंहपुरा बांगर से। अग्रवाल साहब बताओ, उम्र बता दो पहले अपनी।
2: उम्र है 73 साल।
1: 73 साल में क्या समस्या हो रही है आपको हड्डियों की?
2: कितने
1: अच्छा, आवाज कर रहे हैं, कट कट की आवाज। हाँ
0: अच्छा,
1: बताए, सुन रहे हैं।
0: आवाज के साथ में क्या आपको दर्द भी होता है या सिर्फ आवाज ही आती है?
2: दर्द होता है।
0: अच्छा देखो, सिर्फ आवाज आना तो कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती है जो जोड़ों में से, लेकिन आवाज के साथ में यदि आपको दर्द हो रहा है और दर्द असहनीय है तो आपको एक बार जरूर दिखाना चाहिए, उच्च डॉक्टर से
2: और
0: सलाह लेनी चाहिए।
2: रीढ़ की हड्डी में दर्द
1: रीढ़ की हड्डी है।
0: देखो, रीढ़ की हड्डी का दर्द, घुटने का दर्द ज़्यादातर टाइम एक साथ ही चलता है लोगों में, ऐसा बहुत ही कम
2: हाँ
0: देखने को मिलता है कि रीढ़ की हड्डी में दर्द ना हो और घुटने, दोनों ऐसा नहीं होता है, दोनों दर्द साथ में ही होते हैं। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि एक बार आप उचित डॉक्टर से सलाह लें
1: और
0: और
1: 73 साल उम्र है अग्रवाल साहब, अब तो दिखा लेना चाहिए
0: दिखा लेना
1: अच्छे
0: चाहिए।
1: डॉक्टर और अच्छे
2: रीढ़
1: उस पे जाके।
2: की हड्डी का तो विभूत पटाड़िया का चल गया है इलाज।
0: जी,
2: वह जाम है कारी बाबू में, विभूत
1: जी जी जी जी तो
2: पटाड़िया।
1: एक जगह अगर आपको नहीं परेशानी का समाधान मिल रहा, तो दूसरा हॉस्पिटल देखिए। अभी हम आकाश सिम्स के बैनर पे ये बात कर रहे हैं, तो जाके एक बार दिखा लीजिए, वहां भी अच्छे
2: अरे
1: डॉक्टर
2: कृष्णा
1: हैं
2: नगर गए, वो जीप कटता डॉक्टर
1: जी। कोई
2: कृष्णा नगर में गए थे, वो बेकार था डॉक्टर।
1: बात नहीं, अब जो बेकार है उसको छोड़ दीजिए, अच्छी जगह जाइए। तो इसीलिए तो ये कार्यक्रम हम लेके आए हैं आपके लिए कि भाई जहाँ समाधान नहीं मिल रहा, वो पैसा दीजिए, अच्छी जगह जाइए, वहां पर समाधान मिलेगा।
2: ये कर जाएंगे।
1: हाँ, ये
0: हाँ,
1: क्यों
0: एक
1: नहीं
0: बार आके
1: करेंगे,
0: दिखाइए, फिर हम
1: जाके
0: बात
1: संपर्क
0: बात बात
1: करिए,
0: करेंगे,
1: ठीक है?
0: जो समस्या है उसको
2: हाँ, कहाँ पर
0: देखेंगे क्या है।
2: बैठते हैं जी?
1: ये है आपका जो नया असिस्टेंट बना है ना,
2: हाँ हाँ

0: राधा वैली के पास, आकाश सिम्स हॉस्पिटल, ठीक
1: राधा
0: है?
1: वैली में है, पास
0: हाँ, राधा वैली के पास है, हाईवे पे,
1: है
0: ठीक है?
1: मतलब भटकगे के आस पास है। अच्छा
0: हाँ बिल्कुल, दिख जाएगा आपको, ऊंची सी बिल्डिंग दिख जाएगी, आकाश सिम्स लिखा दिख जाएगा, तो जाके दिखाइए आप, ठीक है जी? तो अब डॉक्टर साहब, जैसे अब
2: जी सर,
0: ये सुरेश चंद जी की, ये 73 साल हैं, हमारे चंदन सिंह जी 60 साल हैं,
2: जी
0: तो
2: सर,
0: बुजुर्गियत में तो ये समस्याएं हैं। अब ऐसे में क्या लगता है कि भाई जो बुजुर्ग बात कर रहा है, मरीज बात कर रहा है, तो लेकिन परिवार की भी तो जिम्मेदारी है
2: हाँ
0: कि भाई चीज़ें आएंगी, उम्र बढ़ेगी, तो हम शुरू से खान पान, जीवन शैली और उस पर ध्यान रखें तो शायद कुछ बेहतर चीज़ें हो जाएंगी।
2: हाँ सर, देखो एज के हिसाब से समस्या आना तो स्वाभाविक सी बात है,
0: हाँ
2: लेकिन इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की भी होती है कि भाई
0: हाँ
2: बुज़ुर्ग इंसान है तो उसको समय रहते हुए दिखाना,
0: हाँ
2: और यदि कोई परेशानी शरीर में है तो चाहे इवन मैं जॉइंट की बात नहीं करूँगा, कोई भी समस्या हो शरीर में कुछ है तो वो आपको पीड़ा तो देगी और वो
0: बिल्कुल
2: कम भी नहीं होगी, समय के साथ बढ़ती है
0: सही
2: परेशानी।
0: बात है, और
2: तो
0: इसीलिए शायद हॉस्पिटल और डॉक्टर भी हैं, तो आप
2: हाँ,
0: जाएं मिलें और अपना
2: तो
0: समाधान कराएं। एक श्रोता और जुड़ रहे हैं हमसे। हेलो
1: हेलो।
0: जी नमस्कार
1: हाँ सर नमस्कार, मैं दीपक कुमार बोल रहा हूँ मथुरा
0: दी,
1: से। जी
0: दीपक कुमार मथुरा से।
1: सर।
0: जी, बताइए।
1: हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरी उम्र इस वक्त 28 साल है, और जैसे वजन वगैरह मैं उठाता हूँ तो नीचे कूल्हे के ऊपर जो हड्डी है सर, वहाँ पे दर्द होता है।
0: कूल्हे के ऊपर दर्द होता है वजन उठाते में सिर्फ?
1: हाँ सर, वजन उठाता हूँ तभी होता है, फिर ऑइंटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो सही ऐसा क्यों होता है और क्या इलाज
0: मैं
1: करा
0: डॉक्टर साहब से बात कर रहा
2: जाए? आप हमें ये बताइए कि जो आपको दर्द होता है वो सिर्फ वजन उठाने के टाइम पे दर्द होता है, या फिर जैसे सुबह आप सो के उठते हैं तो उस समय दर्द ज़्यादा रहता है, या शाम को दर्द ज़्यादा रहता है, कुछ थोड़ा सा इसका आइडिया दे सकते हैं हमें?
1: नहीं सर, जैसे हैवी लिफ्टिंग वगैरह अगर कर लेता हूँ या फिर कोई वजन वगैरह उठा लेता हूँ, कमर झुकी रहती है, तब होता है सर।
2: अच्छा, वैसे कोई परेशानी नहीं है आपको उठने बैठने
1: हाँ सर,
2: सोने
1: वैसे
2: में?
1: कोई परेशानी नहीं सर।
2: देखो, सबके शरीर की बनावट अलग अलग होती है, यदि आपको वैसे परेशानी नहीं है और वज़न उठाने से परेशानी हो रही है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ज़्यादा वज़न उठाने की कोशिश ना करें, क्योंकि दो इंसान कभी एक जैसे नहीं होते हैं, भगवान ने आपके शरीर की बनावट उस तरह दी है कि वो वेट को नहीं ले पाता है।
1: बिल्कुल सर।
2: और
1: और सर
2: बाकी
1: जैसे अगर
2: देखो,
0: सर नहीं तो वजन उठाते क्यों, को कोई विशेष जो घरेलू काम में जैसे सिलेंडर उठा लिया तो हो जाएगा आपको?
1: हाँ सर हो जाता है, क्या है कि और फिर जिम भी जाना होता है तो सर फिर वेट
2: मैं
1: हो
2: समझ
1: जाता
2: गया।
1: है।
2: देखो,
0: हाँ
2: अब
0: तो
2: इसके कारण मसल वीकनेस भी हो सकती है, या फिर कोई आपके जॉइंट की क्या स्थिति है वो भी हो सकती है, तो देखो इन चीज़ों का आपको पता करना है तो फिर आपको एक बार हमसे कंसल्ट करना पड़ेगा, या फिर कोई भी आपके पास वरिष्ठ चिकित्सक हो उससे आप कंसल्ट करें, ठीक है?
1: अच्छा सर,
2: कि उसका कारण क्या है। देखो, बिना कारण के कुछ भी इस तरह से कह पाना बड़ा मुश्किल होता
0: एक
2: है।
0: बार डायग्नोस कराइए, है
2: हाँ,
0: ना?
2: डायग्नोस
0: बिल्कुल
2: कराइए उस चीज़ को, और दूसरा मैं ये सलाह दूंगा कि जब तक आप वेट उठाने को अवॉइड करें, अननेसेसरी कोई परेशानी बढ़े।
0: जिम जिम भी आप ट्रेनर के उसमें ही करें,
2: हाँ, कई
0: है?
2: बार ऐसा भी होता है कि मसल वीकनेस की वजह से हमें मसल ट्रेंड हमारी होती नहीं है, और कई बार हम हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, उससे भी समस्याएं होती हैं और टीयर और बढ़ता है मसल्स में। तो
1: सर एक और चीज पूछ रहा था मैं, ये ऑइंटमेंट वगैरह कोई नुकसान भी करते हैं क्या सर, ज्यादा लगाने
2: नहीं,
1: से?
2: लंबे समय तक लगाएंगे तो नुकसान करेंगे, बाकी ऐसे एज सच हफ्ते दो हफ्ते में तो कोई नुकसान नहीं करता है, बशर्ते आपको पुरानी कोई परेशानी ना हो तो।
1: ठीक, एक
2: जी
1: बार डायग्नोज करवाऊं।
0: ओके।
2: हाँ
0: हाँ
2: जी,
0: एक बार क्या है, एक्सरे कराइए, एमआरआई कराइए, जब तक पता ना लगे तब तक उसको छोड़िए मत, ठीक है दीपक भैया? तो अब डॉक्टर साहब, जिसे पहले इसको हम ओल्ड एज की बीमारी मानते थे, हड्डियों को, जोड़ों को, अब जैसे बच्चा है ये तो 28 साल का ही है,
2: जी सर,
0: यंग है, लेकिन जिम जा रहा है, तो अब जैसे बहुत सारे लोग जिम जा रहे हैं, जैसे सुन लिया कि भाई अच्छे उसके लिए जिम जाना चाहिए, लेकिन जिम का भी तो एक अच्छा जिम भी हो और अच्छा ट्रेनर भी हो,
2: हाँ सर,
0: हर
2: ये
0: एक्सरसाइज भी तो हर आदमी के लिए नहीं बनी
2: नहीं
0: हुई है।
2: सर, आपके हर इंसान की शरीर की बनावट अलग होती है, दो लोग एक जैसा काम कभी नहीं कर सकते हैं, तो अपने शरीर में क्या काबिलियत है इंसान को पहचानना चाहिए। ये नहीं कि जिम में जाके सामने वाला 150 किलो डेड लिफ्ट कर रहा है तो
0: हाँ तो
2: आप भी
0: मैं भी
2: उतना
0: कर
2: करेंगे, नहीं, ये
0: लूंगा।
2: चीज़ बिल्कुल
0: हाँ,
2: गलत है।
0: वो हमारा उद्देश्य भी नहीं
2: हाँ,
0: है,
2: और
0: उद्देश्य हमारा स्वस्थ रहना है।
2: स्वस्थ रहना है सर, बिल्कुल।
0: हाँ, तो उसमें जितना ट्रेनर आपको परमिट करता है उतना
2: हाँ, उसी
0: आप।
2: हिसाब से।
0: एक और श्रोता हमसे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो
1: हेलो,
0: जी नमस्कार,
1: हम बिपिन कुमार बोल रहे हैं गाँव चौली से।
0: गांव चौली से। बिपिन जी बताइए क्या समस्या है आपको?
1: हमारी समस्या ये है कि हमारे 35 साल पैरों संजो के नीचे
3: खजली सी होती है।

0: पैरों में।
1: जी
0: अच्छा ठीक है, मैं पूछता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों के लिए सुनपन, झंडाहट या इस तरह की
2: अच्छा, ये
0: समस्याएं
2: परेशानी तो सर फिर स्पाइन से लिंक होती है,
0: हैं।
2: जिसमें हमारी जो जिसको साइटिक नर्व कहते हैं, उसका जो ओरिजिन पॉइंट है आपका लंबर स्पाइन से लेकर सैक्रम तक, वहाँ कोई ना कोई कंप्रेशन रहता है। इसकी वजह से सुनपन होना, झंझनाहट होना, इस तरह की परेशानियाँ, ये सब स्पाइन से लिंक रहता है।
0: एक व्हाट्सएप से हमें ये दो सवाल मिले हैं। ये प्रकाश जैन नांदेड़ महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, ऐप से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। मेरे दाएं पैर का घुटना दर्द करता है, क्या
2: जी
0: करना चाहिए? उम्र 70 साल, तकलीफ 2 साल से है। और इसी में लिखा है 5 साल से दो, ये शायद दो वो हैं,
2: हाँ ठीक है
0: ये
2: सर।
0: फातिमा लिख रही हैं
2: जी
0: रामपुर महाराष्ट्र से,
2: जी
0: और
2: जी
0: दूसरा
2: जी
0: प्रकाश जैन जी,
2: जी
0: ये लिख रहे हैं कि 5 साल से दोनों घुटनों में दर्द होता है, एक्सरसाइज और गोली लेने के बाद भी दर्द होता रहता है। तो घुटनों के दर्द की बात है
2: देखो
0: इसमें।
2: देखो, अब दोनों लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि भाई हमें परेशानी काफ़ी टाइम से हो रही है। अपने जैन जी की परेशानी तो 5 साल से है, और जो फातिमा जी हैं उनकी परेशानी 2 साल से
0: जी
2: है।
0: जी
2: नियम तो ये कहता है कि आपके 2 हफ्ते से ज़्यादा का दर्द है
0: तो
2: तो
0: दिखाना
2: उसको
0: चाहिए।
2: दिखाना चाहिए, और ये पता करना चाहिए कि दर्द क्यों हो रहा है। इनकी परेशानी तो काफ़ी पुरानी है, और तो इन्हें दिखाना चाहिए,
0: मतलब
2: हाँ
0: सलाह लेनी
2: सलाह लेनी
0: चाहिए
2: चाहिए।
0: उसमें एक बार
2: अच्छा,
0: जाके।
2: दूसरा इन्होंने पूछा है एक्सरसाइज। परेशानी आपको कोई भी हो, लेकिन परमिटेड एक्सरसाइज करते रहना चाहिए।
0: करते रहना
2: मतलब मैं ये
0: चाहिए।
2: नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करें, पर जितना आप अपने जॉइंट्स को, हाथ पैर को चला सकते हैं, आप उतनी एक्सरसाइज करें, क्योंकि ख़राब जॉइंट को तो बदला जा सकता है, पर ख़राब मसल तो बदली नहीं जा सकती है।
0: नहीं तो
2: तो
0: एक्सरसाइज मतलब
2: एटलीस्ट,
0: मसल्स के
2: हाँ
0: लिए
2: तो
0: हमारा
2: आपकी,
0: शरीर काम
2: हाँ
0: करता
2: आपकी जो
0: रहे।
2: मसल्स है वो तो एटलीस्ट मेंटेन रहेगी। नहीं तो क्या होता है ना कि लोग जॉइंट ख़राब होने के साथ साथ में दर्द होने की वजह से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उससे मसल्स भी ख़राब हो जाती है,
0: फिर वो मसल्स वीकनेस होती है तो फिर दूसरी तरह की समस्याएं हो
2: वो
0: जाती
2: दूसरी
0: हैं।
2: तरह की समस्याएं
0: वो
2: हो जाती
0: हड्डी
2: हैं।
0: नहीं, फिर पूरा
2: हाँ,
0: शरीर दर्द
2: पूरा
0: करता है।
2: शरीर ही फिर
0: एक
2: परेशान
0: कुछ
2: होता
0: लोग कहते
2: है।
0: हैं ना, सुबह उठे पूरी नींद लेके आ रहे, शरीर दर्द कर
2: हाँ
0: रहा है।
2: सर, तो
0: तो
2: ये
0: वो काम की बात नहीं, वो सोने के बाद भी दर्द
2: सोने के बाद
0: कर
2: भी दर्द करता है। तो
0: रहा
2: एक्सरसाइज करते रहो, बाकी पेन है ठीक है, लेकिन परमिटेड एक्सरसाइज, कि आपके डॉक्टर जितनी सलाह दे कि हमें इतनी एक्सरसाइज करनी है, उसको
0: हाँ,
2: करें ज़रूर।
0: मतलब एक्सरसाइज के लिए भी सलाह है, खाने पीने की भी सलाह, एक्सरसाइज की भी
2: बिल्कुल
0: सलाह,
2: सर।
0: मतलब
2: सर
0: जीवन
2: मैं
0: व्यवस्थित।
2: सर सबसे पहले एक्सरसाइज की सलाह दूंगा कि भाई आप पहले एक्सरसाइज परमिटेड, जो आपके शरीर, जो आपको आपकी उम्र के हिसाब से, आपके शरीर के हिसाब से जितना आप कर सकते हैं उसको करिए।
0: और कम से
2: और
0: कम कुछ नहीं करें तो टहलना
2: हाँ,
0: तो
2: टहल
0: जा
2: टहल तो आदमी सकता ही है सर,
0: तो अगर कहीं भी दर्द है तो आप सुबह शाम टहल लीजिए, खाना
2: हाँ
0: खाने के बाद टहल लीजिए, लेकिन शरीर को बिल्कुल इतना आराम मत दीजिए। आजकल हम लोग सब घर एसी, कार एसी, ऑफिस एसी, तो एसी की जो वातावरण है वो भी तो व्यक्ति को थोड़ा सा
2: हाँ सर, थोड़ा
0: बेकार।
2: आलसी तो बनाता ही है। ये चीज़ें तो हैं,
0: जी,
2: हाँ, क्योंकि ज़्यादा
0: आजकल।
2: लग्जरी इंसान के लिए थोड़ा सा, भाई भगवान ने हमें, इंसान को इसलिए पैदा थोड़ी नहीं किया था कि इतनी लग्जरी में रहना है। भाई इंसान के अलावा और कोई,
0: जी
2: हमारी
0: जी
2: पृथ्वी के
0: जी
2: जितने भी
0: जी
2: एनिमल्स हैं वो लग्जरी
0: हाँ,
2: में तो नहीं
0: एक
2: रहते
0: श्रोता हमसे जुड़े हैं। हेलो
2: जी
0: हेलो जी, ना नमस्ते भैया।
3: मैं पवन कुशवाहा वृंदावन से बोल रहा हूँ।
0: पवन जी, बहुत बताइए, उम्र बता दीजिए।
3: उम्र मेरी 32 साल है।
0: 32 साल है, समस्या बताइए।
3: एक पैर में दर्द है हमारे, जब से एक्सीडेंट हो गया 5-6 साल से एक पैर में दर्द होता है।
2: दर्द
3: एक
2: कहाँ से कहाँ तक होता है आपको?
3: घुटने से लेके जांघ तक,
2: अच्छा,
0: घुटने तक,
2: घुटने से ऊपर होता है, घुटने से नीचे होता है?
0: जांघ तक
3: पूरे
0: ऊपर
3: पैर में
0: होता
3: होता।
2: अच्छा, पूरे पैर। क्या कमर में भी दर्द रहता है?
3: हाँ सर।
2: ठीक है, तो देखो दोनों चीज़ की
0: तो
2: परेश
0: इसमें डॉक्टर साहब, जैसे ये बता रहे एक्सीडेंट इनका हुआ, तो क्या कोई रोड वोड भी पड़ी है क्या?
3: ये अपने आप ही दर्द करता है। जब लॉकडाउन में हुआ था हमारे, एक पैर में दर्द जब जब से हो रहा है लगातार।
0: अच्छा, ठीक है ठीक
2: नहीं देखो, अब इसका कारण एक्सीडेंट भी हो सकता है सर, और हो सकता है कि उस चीज़ को कोरिलेट कर रहे हों। कोरिलेट मतलब उससे अंदाज़ा लगा रहे होंगे, हमें एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से आज ये
0: उसकी
2: समस्या बनी
0: वजह।
2: हुई है। जिस तरह बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये रीढ़ की हड्डी की थोड़ी सी परेशानी लग रही है मुझे, तो उसको देखना पड़ेगा हमें कि भाई ऐसा कारण क्या है इस चीज़ का।
0: तो एक बार डायग्नोज
2: हाँ,
0: करा
2: डायग्नोज
0: उसको।
2: सर।
0: अब इसमें डॉक्टर साहब, जैसे एक अच्छा जीवन चल रहा है, लेकिन जब
3: ये ठीक है से बोल रहा हूँ।
0: जी ठीक है भैया पवन जी ना, तो आप दिखाइए अच्छे डॉक्टर को, अच्छे हॉस्पिटल में दिखाइए कि सब कुछ ठीक चल रहा है,
2: जी सर,
0: लेकिन जब ठीक चल रहा है तो हम ध्यान नहीं देते।
2: जी सर,
0: जब वो समस्या आती है तो फिर हमारा ध्यान जाता है, और समस्या बढ़ जाती है तो फिर ज़्यादा ध्यान जाता है। एक्चुअली लगता ही है कि जब आदमी का काम छूटता है, घर की और चीज़ें वो आती है, तो आदमी को लगता है नहीं, मैं परेशान।

0: उसमें तो ये ना हो, इसके लिए हमारा रहन सहन, खान पान, इन जिन चीजों पे, क्योंकि पहले नहीं होता था, लेकिन अब खान पान बहुत बदला है, जीवन शैली बहुत बदली है।
1: सर, एक मेडिकल में एक ब्रांच होती है, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो उसका जो उसमें एक टॉपिक आता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
0: क्योर, हाँ,
1: प्रिवेंशन
0: बचा
1: इज,
0: बेहतर है इलाज से।
1: हाँ, बचाव बेहतर है इलाज से। लेकिन हमारी समस्याएं, चाहे इस तरह की हमारी सोसाइटी की परवरिश समझो, चाहे कुछ भी समझो, हम इस चीज़ पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमें हमारे शरीर में आगे क्या समस्याएं हो सकती हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब समस्या हमारे सामने आ जाती है, तब फिर उस पर ध्यान देते हैं, और समस्या आने के बाद भी ध्यान नहीं देते हैं। जब समस्या हमारे गले से ऊपर चली जाती है कि अब लगता है कि अब जान बचना मुश्किल है, तब हम ध्यान
0: तो
1: देते
0: ध्यान
1: हैं।
0: देते। एक श्रोता जुड़ रहे हैं हमसे। हेलो,
2: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्कार।
2: नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं किशनपुर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम मोर मुकट है।
0: मोर मुकुट जी, नाम तो आपका बढ़िया है। बताइए समस्या, बताइए, उम्र बता दीजिए।
2: समस्या ये है कि मेरी एक लाली है, उसकी उम्र 18 वर्ष है।
0: अच्छा,
2: उसका एक पैर हल्का हो गया, उसके पैर में दर्द होता है, चलने में थोड़ी तकलीफ होती है।
0: कोई कारण है, कोई बुखार उखार आ गया ऐसा?
2: पहले कुछ पहले दर्द हुआ था, तो उस दर्द दर्द में धीरे धीरे पैर उसका हल्का हो गया है, थोड़ा पैर का पंजा जो है थोड़ा सा तिरछा हो गया, नेक हल्का हो गया है। हाँ
0: मतलब एक पैर दूसरे से थोड़ा हल्का लगता है
2: हाँ एक पैर थोड़ा हल्का लगता है,
0: क्या?
2: और जो थोड़ा झुक के चलती है थोड़ा।
1: समझ गया
0: जी जी
1: मैं।
0: डॉक्टर
1: जो
0: साहब
1: आप
0: बता रहे।
1: पैर हल्का बता रहे हैं, क्या वो पैर दूसरे पैर से थोड़ा छोटा हो गया है?
2: थोड़ा सा झुक के चलती है, हल्का सा मालूम पड़ता है।
1: हल्का सा। अच्छा, पंजा और घुटना पूरी तरह से चलते हैं, उनमें कोई समस्या तो नहीं है?
2: हाँ, दोनों ठीक चलते हैं, मगर वैसे वजन लेके नहीं चल पाती है
1: मैं
2: वो।
1: समझ गया। देखो, जिस तरह आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी कूल्हे की समस्या हो सकती है,
2: बिल्कुल
1: और हाँ, इसको आपको दिखाना चाहिए। अभी बच्ची की बहुत उम्र कम है, तो समय रहते हुए इलाज हो जाएगा तो उसका जीवन ठीक चलेगा, क्योंकि भाई कोई भी इंसान हो, चलेगा तो पैरों से ही। और अभी तो 18 साल की उम्र है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि उसको एक बार दिखवाएं।
0: तो डॉक्टर साहब, ऐसे उसमें क्या रहा होगा, जो मतलब कोई चोट लगी होगी, कोई
1: नहीं
0: बुखार?
1: सर,
0: अच्छा
1: कई बार बच्चों में कूल्हा अपने आप ही ख़राब होने लगता है, और जैसे
0: अच्छा
1: इन्होंने फीवर का बताया, हो सकता है कोई इन्फेक्शन रहा हो, तो वो तो उसको मैं एक
0: उस
1: बार,
0: समय ध्यान नहीं गया,
1: हाँ, ध्यान नहीं गया
0: लेकिन
1: है,
0: समस्या हो गई है
1: हाँ, तो उसको
0: अब।
1: एक बार में देखना
0: मैंने
1: पड़ेगा।
0: आपने कहीं दिखाया क्या मोर मुकुट जी, बच्ची को? जी
2: जी सर, मैंने इसको एक बार SMS में दिखाया जयपुर,
0: अच्छा, क्या बताया?
2: तो उन्होंने इसकी MRI की बाद में जांच के बाद में उन्होंने बताया रीढ़ की हड्डी में गांठ है बताई थी, तो इसका ऑपरेशन बोला था, मैंने ऑपरेशन नहीं कराया था।
1: अच्छा, हाँ, तो
0: तो
1: कूल्हे,
0: MRI तो हो चुकी है ना?
2: हाँ, MRI हो चुकी है, लेकिन काफी पुरानी है वो,
1: कोई
2: 8
1: बात
2: साल
1: नहीं,
0: तो आप
1: आप
0: एक
1: आके
0: बार
1: उनसे
0: सिम्स में
1: कंसल्ट
0: आके
1: करिए।
0: दिखा लो, आकाश सिम्स
1: हाँ,
0: हॉस्पिटल
1: कंसल्ट
0: मथुरा में
1: करिए।
0: है, और अच्छा हॉस्पिटल है, आप
1: हाँ,
0: आइए एक बार दिखाइए, अच्छे डॉक्टर हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि समस्या के साथ ही हम बैठे रहेंगे, आप एक बार दोबारा से आइए दिखाइए, क्योंकि बच्ची
1: उम्र
0: की
1: कम
0: जीवन
1: है,
0: का प्रश्न है, और 18 साल उम्र तो अभी शुरुआती हो रही है, तो एक बेहतर
2: हाँ,
0: जीवन उसको मिले, इसलिए हम अगर माँ बाप हैं या भाई भी हैं उनके, तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है कि अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल में दिखाएं उसमें। तो अब तो डॉक्टर साहब सुविधाएं भी बहुत हो गई हैं, अब तो जैसे बात कर रहे हैं हम तो रोबोटिक सर्जरी, अब मतलब ये एक इंसान से भी आगे मशीनें आ गई, तो क्या मतलब इसका मतलब क्या समझे लोग?
1: सर देखिए, ऐसा है कि मशीन इंसान से अच्छा तो काम कभी कर ही नहीं सकती है।
0: मतलब
1: बाकी
0: चलाता
1: मशीन,
0: तो इंसान है
1: हाँ,
0: उसको।
1: मतलब मशीन को चलाता तो इंसान ही है।
0: बेहतर
1: अब स्किल्ड पर्सन मशीन को चलाएगा तो
0: काम
1: बेहतर
0: होगा।
1: काम होगा। तो डिपेंड करता है कि उसको ऑपरेटर कैसा है। अच्छा
0: हाँ
1: ड्राइवर होगा तो गाड़ी अच्छी चलाएगा।
0: नेचुरली ना।
1: तो वैसे ही सर, हम जैसे ऑर्थोपेडिक्स में रोबोटिक की बात करेंगे, तो ये हम आकाश में हमने फिलहाल रोबोट से सर्जरी स्टार्ट कर दी है, और रोबोट के फायदे नुकसान के बारे में हम दोनों के बारे में बात करेंगे, भी फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है। तो फायदा ये रहता है कि एक छोटे चीरे से काम हो जाता है, टिश्यू डैमेज कम होता है, और जो इम्प्लांट का, जो हम इम्प्लांट डालते हैं, उसका जो प्लेसमेंट है वो पर्टिकुलर पेशेंट के हिसाब से पर्टिकुलर फिक्सेशन हो जाता है। जैसे इस पेशेंट को ये रिक्वायरमेंट है, इतने डिग्री का हमें एंगल चाहिए, उतने डिग्री का एंगल हम उस पेशेंट में फिक्स कर सकते हैं रोबोट से,
0: मतलब चाहे वो घुटने का कर रहे हो, चाहे कूले
1: का
0: कर रहे हो,
1: जितना डिग्री का हमें रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर दैट पर्सन, ये सब चीजें बिफोर सर्जरी एनालाइज कर लेते हैं कंप्यूटर में, रोबोट जो पूरा एआई सिस्टम वो बता देता है और रोबोट उस चीज को उसी डिग्री पे फिक्स करवाता है, उसका

0: हमें ये फायदा मिलता है,
1: देख डॉक्टर ही रहा होता
0: हाँ,
1: है
0: देख तो सर डॉक्टर ही होता है,
1: होता है, लेकिन मशीनों के जो लाभ हो सकते हैं जैसे दूरबीन से सर्जरी आई,
0: बिल्कुल सर,
1: तो अब उसमें जो व्यक्ति खुली आंखों से नहीं देख पा रहा दूरबीन से वो
0: बेहतर, जैसे सर मेरे कोई चीज 3 डिग्री पे सेट करनी है और एक चीज को मुझे 5 डिग्री पे सेट करना है, तो 2 डिग्री का फर्क आ गया। अब इस चीज को मैं अपने हाथ से प्लेस करूंगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, रोबोटिक आर्म होगी, मैं उसको सेट करूंगा तो रोबोटिक आर्म उस चीज को
1: वहीं जाके
0: उसको फिक्स कर
1: देगा, जब तक वो उस एंगल पे नहीं आ जाएगी तब तक वो अपना काम
0: कर तो मैं ही रहा हूँ सर सारा काम, बट वो उस चीज को मैं प्रॉपर
1: मदद मिल गई,
0: हाँ मुझे मदद मिल गई
1: आपके, मतलब हाथ मजबूत हो गए,
0: हाँ सर हाथ मजबूत हो गए मेरे तो, और चीरा कम रहता है तो सर पेशेंट को बाद में दर्द वगैरह भी समस्या कम रहती है, बाद के आउटपुट ठीक रहते हैं।
1: एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, हेलो
2: हेलो
1: जी नमस्कार,
2: नमस्कार मैं मथुरा से बोल रही हूँ
1: जी, नाम बताइए,
2: नाम मेरा अंकिता,
1: अंकिता जी जी बताइए अंकिता जी,
2: ये ना मेरे एक साइड में दर्द रहता है घुटने में,
1: घुटने में एक साइड में,
2: हाँ
1: ठीक है घुटने में एक साइड में, बताइए डॉक्टर साहब से बात करिए, उम्र बता दीजिए,
2: उम्र मेरा होगा 38।
1: अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ,
0: ये दर्द आपको कितने समय से बना हुआ है?
2: 2-3 साल हो गया होगा,
0: 2-3 साल। देखो आपकी उम्र अभी 38 की है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और घुटने में दर्द है तो ये चीज़ थोड़ा सा स्वाभाविकली अच्छी बात नहीं है, ठीक है, और समय भी काफ़ी हो चुका है तो
2: मतलब 1-2 हाँ जब से फैट हुआ है ना मतलब शरीर में तब से, मतलब फैट मेरा होगा, वेट 84 के करीब होगा मेरा वेट।
0: देखो वेट की भी आपको समस्या है, अच्छा कोई चोट लगी थी इसमें या फिर ऐसे दर्द होना स्टार्ट हो गया?
2: चोट नहीं लगी थी, बस ऐसे ही फैट की वजह से ऐसा लगता है ना कि एक साइड में स्वेलिंग भी है, मतलब एक पैर से या दूसरे पैर की साइड में, मतलब देखने से ऐसा लगता है कि एक साइड में मतलब दर्द भी रहता है,
0: ठीक है,
2: और
0: मैं समझ
2: में भी दर्द रहता है और स्वेलिंग भी है शायद,
0: ठीक है। देखो आपने कई सारी समस्याएं मुझे बताई हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपकी एज भी उम्र भी ज़्यादा नहीं है तो आप इसको आपके नियर बाई जो भी डॉक्टर हैं उन्हें दिखाइए, समस्या का समाधान नहीं हो सकता है तो फिर मथुरा में तो हम बैठे हुए हैं तो आप हमसे भी मिल सकते हैं
1: आपके शहर में।
2: ये कह रही थी कि ये यूरिक एसिड तो नहीं ना,
0: मतलब नहीं यूरिक एसिड की परेशानी घुटनों में नहीं देखने को मिलती है, ये परेशानी या तो आपकी पैर के अंगूठे में या फिर हाथ के अंगूठे में मिलती है जनरली,
2: अंगूठे में ना ऐसा लगता है जान ही नहीं है, मतलब
0: नहीं जान वाली बात नहीं, यूरिक एसिड की परेशानी इतने लंबे समय तक ऐसे नहीं चलती है, यूरिक एसिड जिसको भी रहता है वो 2-3 दिन में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है मरीज को,
1: जो यूरिक एसिड मतलब गठिया से अपन मान के चले,
0: हाँ सर गठिया ही होता है एक तरह का, सर गठिया तो एक शब्द है जिसको हम यूज करते हैं कोई भी परेशानी,
1: मतलब
0: नहीं नहीं सर गठिया एक शब्द है, ज्वाइंट की किसी भी परेशानी को हम गठिया बोलते हैं
1: क्योंकि वो गांठों में हो रहा है,
0: हाँ ज्वाइंट की कोई भी परेशानी दैट इज द गठिया, अब उसके आगे पीछे हम क्या लगा रहे हैं उससे डिसाइड होता है कि क्या है,
1: क्या है
0: जैसे यूरिक एसिड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, आर्थराइटिस द टर्म जो शब्द है ये हम किसी भी जॉइंट की परेशानी में बोलते हैं,
1: आजकल जैसे बोन डेंसिटी की भी बात हम कर रहे हैं कि भाई आजकल जैसे डॉक्टर से जाओ क्योंकि अब सुविधाएं हो गई हैं तो विटामिन डी की कमी हो रही है, आपकी बोन डेंसिटी कम हो रही है, उम्र बढ़ रही है, तो इस तरह की चीज आती है तो आदमी को लगता है कि ये क्या, मतलब एक नया टर्म आ गया, तो मतलब हड्डियों की स्ट्रेंथ कम हो रही है,
0: हाँ सर देखिए जो हमारी बोन है वो आपकी जैसे जो हमारी हड्डियां हैं वो आपकी उम्र के हिसाब से नेचुरली उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है, उसका जो कारण है वो ये है कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो कम होता है,
1: कम हो रहा है।
0: खासकर ये परेशानी फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलती है,
1: जी, जी,
0: जब मीनोपॉज हो जाता है तो हार्मोन्स तो उनकी बॉडी में एक तरह से बिल्कुल मिनिमम हो जाते हैं,
1: बंद हो जाते हैं,
0: तो फीमेल्स में समस्याएं 45 के बाद देखने को मिलती हैं और जो मेल हैं उनमें समस्याएं 60 साल के बाद जनरली देखने को मिलती हैं। अब बोन डेंसिटी होने का एक कारण तो आपका हार्मोनल हो गया, ठीक है ना, दूसरा कारण हो गया हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, हमारी बोन का डायरेक्ट जो हमारी हड्डियां होती हैं उनका हमारी कसरत से हमारी फिजिकल एक्टिविटी से डायरेक्ट लिंक होता है, यदि आप बहुत ज़्यादा आराम करेंगे कसरत नहीं करेंगे तो आपकी हड्डियाँ नेचुरली वीक होती चली जाएंगी, क्योंकि हमारी बॉडी को ये लगता है कि इतनी हैवी बोन की तो आवश्यकता ही नहीं है तो अननेसेसरीली इन पे इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करी जाए,
1: मतलब एक्सरसाइज का मतलब ये है कि भाई शरीर को शरीर काम के लिए बना है,
0: बिल्कुल सर।
1: मतलब अब उसको यूज नहीं करेंगे तो फिर उसकी स्ट्रेंथ अपने आप कम होगी, इसलिए एक्सरसाइज करिए, काम करिए, चलिए फिरिए घूमिए, अगर आपकी बैठने की भी काम है तब भी बीच बीच में ब्रेक ले लीजिए
0: सर, आप जैसे

0: आप देखिए कि जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है 50 साल
1: जी
0: से ऊपर, जनरली आदमी अपनी वेट ट्रेनिंग बिल्कुल छोड़ देता है, वो
1: हाँ
0: 5 किलो वजन तक अपने हाथों पर नहीं उठाता है। तो अब आप बताइए कि जब आप बिल्कुल भी वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो
1: हाँ तो
0: आपकी हड्डियां कैसे मजबूत होंगी,
1: सही
0: एक
1: बात
0: सिग्नल
1: है।
0: कैसे जाएगा बोन को
1: जी
0: कि
1: जी
0: हमें इतनी
1: जी
0: हैवी बोन की आवश्यकता है।
1: एक श्रोता हमसे चलते चलते जुड़ रहे हैं। हेलो,
2: हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: डॉक्टर नमस्कार।
1: नमस्ते भैया, नाम बताओ।
0: मैं भीकचंद बोल रहा हूँ, जुड़ावाई से।
1: भीकचंद?
0: हाँ सर
1: जी, जुड़ावाई से।
0: उम्र है मेरी 81 साल।
1: 81 मतलब 79, ठीक है।
0: और मेरे कोलू में गैप है।
1: कोलू में
0: गैप
1: हो गया
0: है। हाँ, तो हो गया है। नसों में खिंचाव है।
1: हाँ ठीक है, बहुत सारी चीजें तो आपने बताई दी। हाँ,
0: और चलने में पर डंडा से चलता हूँ।
1: डंडे से चलते हैं, ठीक है।
0: लाठी से उपाय है भाई?
1: हाँ डॉक्टर साहब बता रहे।
2: देखिए, आजकल उपाय तो काफ़ी हैं, ठीक है। और जैसा आपने हमें बताया, कोलू में गैप हो गया है, नसों में भी परेशानी है, तो मैं आपकी बात को समझ गया। लेकिन इस चीज़ को मैं अपने सिरे से भी देखना होता है कि आप जो गैप की बात कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, और जो आपने नसों में दबाव बताया उसका भी एक बार हमें देखना पड़ेगा एक्सरे और MRI से, कि जब तक कि आपकी जो वास्तविक परेशानी है वो क्लियर नहीं होगी, तो उससे पहले इस परेशानी में क्या इलाज होना है, आगे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये पता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है
1: जी। तो भीकचंद जी, दिखा लीजिए। उम्र 80 साल में तो,
2: हाँ, तो
1: लगता है कि आपको रेगुलर दिखाना चाहिए।
2: हाँ बिल्कुल,
1: परिवार के लोगों से कहिए कि वो आए दिखाएं, और अच्छे हॉस्पिटल को जरूर ध्यान रखिएगा।
2: हाँ।
1: अब जुड़ावे चूंकि गांव है, तो गांव से निकल के ही मत दिखाइएगा, शहर में आइए, अच्छे हॉस्पिटल में आइए। थोड़ी सी जांचें होंगी, थोड़ी सी वो होगी, तो चीज़ें पता लगेंगी कि वास्तव में आपकी परेशानी का कारण क्या है। तो
2: सर, एक बात और मैं कहना चाहूँगा अपने श्रोताओं से, कि कई बार हमारे सिटी में या गांव देहात में लोग ऐसा भी करते हैं कि अपनी परेशानी को जल्दी ठीक होने के लिए स्टीरॉयड का सेवन करते हैं।
1: हाँ।
2: जैसे बेटनिसोल है और डेकाडोन है। मैं श्रोताओं से ये कहूँगा कि ऐसी दवाइयों का सेवन ना करें और एक उचित डॉक्टर से सलाह लें।
1: कई बार तो दूसरे के इलाज के लिए चीजें दवाइयां दी, उसको ही लेके हम कर लेते हैं, हमारा दर्द भी ऐसा।
2: बोन डेंसिटी खराब होने का और खासकर जॉइंट खराब होने का एक स्टेरॉइड भी बहुत बड़ा कारण है आज की डेट में, जो आउटर एरियाज में यूज कर रहे हैं काफी। तो स्टेरॉइड को जहां तक अवॉइड करना चाहिए। स्टेरॉइड भी एक लाइफ सेविंग ड्रग है, लेकिन इसको डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए।
1: हर समय नहीं ले सकते, बिना सलाह के नहीं ले सकते, जब उसकी जरूरत है तभी लेना चाहिए। एक तरह से ऐसे ही है कि शुरुआत में ब्रह्मास्त्र तो नहीं चला सकते।
2: हाँ जी। नहीं सर, वो तो दोधारी ब्रह्मास्त्र है।
1: हाँ हाँ,
2: वो डैमेज ज्यादा करता है, सलाह से यूज ना करा जाए।
1: तो हर कार्यक्रम के बाद में और शुरू में श्रोता हम यही कहते हैं कि नीम हकीम खतराए जान, मतलब इलाज अपने आप नहीं करें, किसी दूसरे का सुन के नहीं करें, दूसरे की बताई हुई दवा का लेकर के नहीं करें। कुछ परेशानी अगर शरीर में आ रही, और ये हमारा शरीर इस तरह का बनाया हुआ है कि परेशानी शुरू हो से पहले कुछ सिम्टम देता है, तो ये दर्द होना या बुखार आना या सर दर्द होना, ये सिम्टम है, ये परेशानी नहीं है। ये बता रहे हैं हमको कि कुछ परेशानी बेहतर हो सकती है, तो उसको इलाज के लिए जाइए, डॉक्टर से मिलिए, हॉस्पिटल में भर्ती। क्यों डॉक्टर साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ?
2: सही बात है।
1: तो सिम्टम से डरना नहीं है।
2: नहीं सर, सिम्टम से क्यों डरना नहीं चाहिए, और कोई परेशानी आपके शरीर में है तो वो समय के साथ बढ़ती है, कभी कम नहीं होती
1: जी। जी, और ये सौभाग्यशाली है कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ चिकित्सा पद्धति ने बहुत विकास किया है, और आज जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि 47 में विकसित भारत होगा, तो हमारी चिकित्सा पद्धति इसमें बहुत बड़ा काम करेगी। अब तो बाहर से लोग आ रहे हैं।
2: सर देखिए, डेवलप्ड होने के लिए हमें अपना हेल्थ सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: आप जब तक हेल्थ सिस्टम के हिसाब से फुली डेवलप्ड नहीं है, तो आप डेवलप्ड कंट्री कभी नहीं कहला सकते।
1: जी जी जी।
2: क्यों सर, बहुत सारे इंडेक्स हैं डेवलप्ड कंट्री में जो हम इंक्लूड करते हैं, जैसे बहुत सारे इंडेक्स हैं, मैं नाम क्या लूंगा,
1: उसमें स्वास्थ्य भी एक बड़ा वो है।
2: स्वास्थ्य भी सर एक बहुत बड़ा आता है। यदि आपका हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं है, आप डेवलप्ड कंट्री कभी बन ही नहीं सकते।
1: तो ये अगर हमारी सरकार ने, हमारी व्यवस्था ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री सोचा है कि हम विकसित भारत हों जब आजादी के 100 साल मनाएं, तो इसमें हम सबका भी योगदान है कि हम स्वयं को स्वस्थ रखें, अपने समाज को स्वस्थ रखें, अपने राष्ट्र को भी आगे बढ़ने में योगदान दे सकते हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी कुमार पाठक जी रहे, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ, आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। एक अच्छा हॉस्पिटल, आप जाइए दिखाइए, और जो सलाह और जो जानकारी हमारे आसपास है, क्यों ना उसका फ़ायदा लिया जाए। डॉक्टर साहब आप आए, जुड़े हमारे कुछ श्रोताओं के, आपने समाधान किए। वैसे तो समाधान यही है, जागरूकता है।
2: हाँ सर, जागरूकता है
1: कि आप जाएं और चीज़ों का जो हमारे आसपास है उसका फ़ायदा उठाएं,
2: कष्ट में ना रहें।
1: तो कष्ट मिटाने के लिए
2: ये जिम्मेदारी घर वालों की भी बनती है भाई। जॉइंट की परेशानी तो बुजुर्ग आदमी में ही होती है, तो बच्चे भी इस चीज का ध्यान दें कि भाई कष्ट हो रहा है हमारे माता पिता को, तो उसको
1: उनको ले जाए
2: उनको ले जाए।

0: तो डॉक्टर साहब एक बार पुनः आपका धन्यवाद कि आप आए, जुड़े हमारे श्रोताओं के, और श्रोताओं आपका भी, कि अगले सप्ताह फिर आपके साथ हम रहेंगे किसी एक अच्छे विषय और डॉक्टर के साथ। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार
1: जी। नमस्कार सर।
2: सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर शिरादा वैली मथुरा। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर शिरादा वैली मथुरा।
3: अभी आप सुन रहे थे हड्डियों एवं जोड़ों से संबंधित रोग कारण और निवारण। विशेषज्ञ थे डॉक्टर ए.के. पाठक, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स मथुरा। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर।
4: मान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
5: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
6: इतनी रात में SMS, KYC अपडेट कीजिए, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
7: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सुनाए।
1: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है ब्रज लोकगीत कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे रांझा गायन। आज के कलाकार हैं भगवान दास अज्ञानी।
3: बाबा इतनी बात सुन करके और बड़ो खुश है गयो कि मेरी मेहनत वसूल है गई और मैं रांझे के महल पे आकर के रांझे की बोझाई ने मुकू रांझे को पतो तो बाबा क्या कहता है।

नजर घुमा करके देख रहे हो, रांझो कहूं नजर ना आ रो बाबा को, और गैया ही गैया नजर आ रही हैं। तो हमारे महापुरुष हमारे उस्ताद लोग ये बता में कि वह समय में गैया बोलती ही। तो बाबा एक झूमर गैया के पास जा करके और गैया से कहा, कह रो भैया

जब झूमर गैया ने हीर का नाम सुना और रांझे का नाम सुना तो वो समझ गई कि अब हमारा बिछड़ने का समय आ चुका है और रांझा हीर से मिलने के लिए चला जाएगा। मगर उसकी भी मजबूरी साहब, गैया को बतानो पड़ो, रांझे को पतो, तो कैसे गैया रांझे को पतो बता रही है, भैया

करने के बाद में और बाबा वहां से रांझे को बई सूत में चल दियो, जहां टीलो और टीले के ऊपर कदम को पेड़ बाके नीचे रांझो सो रहे। वहां जा करके कहा देखे बाबा कि एक ग्वारिया अपने जो है रतन दुलाई ओढ़ करके सो रहे हो। बाबा ने परवानो निकारो और परवानो निकार करके एक नजर परवाने पे और दूसरी नजर वा ग्वारिया के ऊपर। जो जो चिन्ह हीर ने लिखे वो ही चिन्ह वा ग्वारिया के ऊपर मौजूद है। बाबा बोलो के हो ना हो भाई जे ही रांझो जा जगानो तो चाहिए। तो बाबा रांझे को कैसे जगा।

बातें है। बाबा बोलो भैया मैं कैसे तो रांझो मानू। और ग्वारियन ते पूछी बहू जे कहबे लगे के भैया हम रांझे हैं। इधर जब बाबा घर से जंगल के लिए चलो तो सेती ने एक 12-14 वर्ष को अपनो बेटा जा को नाम चनुआ से कई बोले जा जंगल में और बेटा छुप करके और बाबा की और अपने चाचा की गुप्तगू सुनियो। तो बाबा से पहले चनुआ आए करके कदम के पेड़ के ऊपर पत्तन में दुबक करके बैठ गयो। तो रांझो कहवे लगो के बाबा मैं ही रांझो हूं। बोले भैया पहले बहुत गुआरिया मिले, लाला बहू कह रहे के हम रांझे हैं, तो भैया मैं कैसे मानू के तू ही रांझो। रांझो बोलो बाबा कैसे माने को के मैं रांझो हूं। तो बोले ऐसो है भैया, जब मैं सिहाले से चलो तो यह बात को प्रण कियो के जब तक रांझे

को पतो नाय लगा लूंगो जब तक अन्न जल ग्रहण नाय करूं। तो भैया अगर तू रांझो है तो या बियावान जंगल में और मोकू अजमत के भोजन करा दे, क्योंकि बाबा को मालूम थी कि राजा 70 पीरन को ओलिया है। तो वानी बाबा मैं गईयन को गुआरिया तो को भोजन कहाते कराऊ, ना कड़ैया है ना भट्टी है ना तेल है ना हलवाई है। बोले ना भैया देख ले तो परवानो चाहिए तो करा दे, नहीं हम तो चले आगे। रांझो 5 कदम उस कदम के पेड़ से पीछे हट करके और मालिक को समर रो है।

बोले भैया घबरावे की तो बात ही है, जा बियाबान जंगल में और ये फकीर मूसो कह रो है कि अजमत के भोजन करा। तो बोले जा में कोई घबरावे की बात ना है, भोजन तो अजमत के है जाएंगे। तो बोले कैसे होंगे? तो बोले देख, एक पस्सों धूल उठा दगरे में ते और पढ़ करके बिस्मिल्ला पूरब की ओर उड़ा दे, बाद धूल के झोटा में से एक अलव्याई पड़िया आवेगी भैया, और बाके नीचे बाबा को कमंडल लगा दियो, वो दूध से भर जाएगी और जो पदार्थ बाबा को चाहिए बाको नाम लेगो वो बा दूध में ते निकाल निकाल के खा तो जा भैया। इतनी कह कर के और पीर रूपो सह जाए तो राजा क्या करता है?

ले भोजन कर ले। अरे बोले तेने मो कोई राक्षस समझो है जो मैं जब पड़िया खांगो भैया। बोले ना बाबा नाराज मत हुए, ऐसो कर के अपनो कमंडल जाके थनन के नीचे लगा। जैसे ही बाबा ने थनन के नीचे कमंडल लगायो, पड़िया अपने आप पास आई और घर मर करके और दूध ते बाबा को कमंडल भर गो।

0: बाबा बोलो चौं भैया लाला एक बात तो बता, दूध पीना होता तो तेरी 14,000 गैया हैं, इनको ही दूध पी ले तो जब पड़िया की का जरूरत ही। बोले ना है बाबा, तुम्हें जा चीज की जरूरत है और बा चीज को नाम लो और दूध में हाथ डार और निकाल। तो साहब बाबा ने श्रोता मुंह में पानी नहीं आ जाए, भैया लड़ुआ कचौड़ी बालू साई चमचम रसगुल्ला रसमलाई रबड़ी बाबा ने सबरे जंगल में ढेर लगा दिए और अपने भूरा भैंसा के सामने कहले बेटा आज तक तो भुस्कायो।
1: अभी आप सुन रहे थे ब्रजलोक गीत कार्यक्रम के अंतर्गत रांझा गायन, कलाकार थे भगवान दास अज्ञानी। इसी के साथ आज का ब्रजलोक गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमा के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में कृषि क्षेत्र में सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने मलेशिया के कृषि मंत्री मोहम्मद बिन साबू के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत के जरिए करने पर सहमति जताई। म्यांमा के कृषि मंत्री मिननोंग के साथ बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कृषि व्यापार की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में दालें, कपास, डेयरी विकास और कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स से WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
1: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
2: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
0: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। मुंबई।
0: दिल्ली पुलिस ने 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत ये आदेश जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें ये संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसे हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु में मधुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के

0: उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 19 सितंबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। कच्चे तेल की कीमत कल $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक बढ़कर 74,869 जबकि निफ्टी 27 अंक बढ़कर 23,459 पर रहा। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी ही देर में यानी अपराह्न 1:15 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा विश्व आत्महत्या निरोध दिवस पर। इसके अलावा चर्चा होगी बेटियों की शिक्षा में महिलाओं की भूमिका विषय पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे पहनावा वार्ता, जीवन में प्रभावित करता फैशन, जानकारी देंगी उमा अग्रवाल। इसी कार्यक्रम में महिलाएं जानेंगी घरेलू टिप्स और आनंद ले सकेंगी फिल्म संगीत का। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी दीप्ति शर्मा। फिल्म संगीत आप सुनेंगे अपराह्न 1:45 पर और NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा अपराह्न 2:30 पर। हमारी ये प्रथम सभा समाप्त होगी अपराह्न 3:00। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ संध्या 4:00। 5:00 सुना जा सकेगा फिल्म संगीत। युववाणी कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 5:30 पर। आज इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा गोविंद बल्लभ पंत जयंती पर। इसके अलावा आज की बात होगी विश्व आत्महत्या निरोध दिवस विषय पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे मार्गदर्शन के अंतर्गत मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर, जानकारी देंगे निखिल शर्मा और इनसे बातचीत करेंगे OP अरविंद कुमार।

ब्रिज साहित्यिक कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:15 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे देश हमारों के अंतर्गत रमणीक स्थल धर्मशाला। वार्ताकार होंगे कैलाश कुमार कौशिक। फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन का समय रहेगा संध्या 6:30 पर। किसान वाणी कार्यक्रम सुना जा सकेगा संध्या 6:50 पर। ये कार्यक्रम होगा प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा।

2026 के अंतर्गत भारत बनाम बांग्लादेश के मध्य खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल क्रिकेट मैच का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आंखों देखा हाल, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7:31 पर। ये कार्यक्रम का शीर्षक होगा शाम सुहानी। फिल्म संगीत सुना जा सकेगा रात्रि 8:00 और कार्यक्रम एक ही फिल्म से मैं आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। कार्यक्रम न्यूज एट 9 सुना जा सकेगा रात्रि 9:00, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। चित्रपट संगीत सुहाने तराने आप सुनिएगा रात्रि 9:15 पर। कार्यक्रम कंट्री बाइट आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर और कार्यक्रम इनसाइट्स सुना जा सकेगा रात्रि 9:45 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

रूपक आप सुनेंगे अनहद नाद, लेखक व प्रस्तुति होगी सोमदत्त शर्मा की। समय होगा रात्रि 10 बजे। उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विदुषी नैना देवी का दादरा गजल गायन। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है समवेत स्वरों में देशभक्ति परक रचना।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशभक्ति परक रचना। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब सुनिएगा महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं दीप्ति शर्मा।

रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, कदमों को रुकने मत देना। जिंदगी खूबसूरत है बहुत, बस इसे दिल से जीना सीख लेना। कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के वनिता लोक कार्यक्रम में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बहनों, हम बात कर रहे हैं अपने जीवन की, अपनी जिंदगी की। हमारा जीवन अनमोल है। कभी कभी परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि इंसान को लगता है कि समस्याओं का कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत का काम है। विश्व आत्महत्या निरोध दिवस हमें यही संदेश देता है कि किसी की बात को सुनना, उसे समझना और समझाना और समय पर उसका हाथ थाम लेना एक जिंदगी को बचा सकता है। मैनू आज 10 सितंबर का दिन है और आज के दिन को विश्व आत्महत्या निरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आत्महत्या की रोकथाम के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करना और संकट में फंसे लोगों को समय पर सहायता उपलब्ध करना। इस दिन को मनाने का महत्व यही है कि मानसिक तनाव, अवसाद और भावनात्मक परेशानियों का समाधान लेना, आत्महत्या से जुड़े गलत धारणाओं को कम करना, परिवार और समाज को ये समझाना कि किसी की भी परेशानी को सुनना और उसका साथ देना बेहद महत्वपूर्ण है। ज़रूरत पड़ने पर मनोवैज्ञानिक, चिकित्सीय और सामाजिक सहायता लेने में किसी भी तरह की शर्म या संकोच नहीं करना चाहिए। यही इस दिन को मनाने का महत्व है। याद रखने योग्य यही संदेश है बहनों, कि हम खुलकर बात करें, एक दूसरे को सुनें, एक दूसरे को साथ दें और समझें, समझाएं, क्योंकि एक उम्मीद एक जिंदगी को बचा सकती है। तो बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी और हम सभी अपनी ज़िंदगी से बेहद प्यार करें, क्योंकि ज़िंदगी हंसने हंसाने के लिए है और खुलकर जीने के लिए है।

0: बहनों, घर केवल ईंट पत्थरों से बना हुआ स्थान नहीं है, बल्कि प्रेम, अपनापन और संस्कारों से बना एक संसार है। परिवार ही बच्चे की पहली पाठशाला होती है, जहां वे बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना, सहयोग, अनुशासन और जिम्मेदारी निभाना सीखता है। आज की बदलती जीवन शैली और व्यस्तताओं के बीच में परिवार के साथ समय बिताना और अच्छे संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने से पहले ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि बच्चों को संस्कार ही सिखाएं। लेकिन बच्चे क्या है, संस्कार के साथ साथ आज की बदलती हुई जीवन शैली में फैशन को ज़्यादा महत्व देते हैं। मैनू फैशन जीवन को सुंदर और आत्मविश्वासी बनाने का माध्यम हो सकता है, लेकिन इसे अपनी ज़रूरत, व्यक्तित्व, संस्कृति और आर्थिक स्थिति के अनुरूप अपनाना चाहिए। सही मायने में फैशन वही है जिसमें हम सभी आधुनिक भी दिखें और स्वयं के प्रति सहज भी रहें। तो इन्हीं बातों में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं उमा अग्रवाल से, पहनावा वार्ता के अंतर्गत जीवन में प्रभावित करता फैशन।
1: बहनों, आज के इस आधुनिक दौर में फैशन से एक भी जीवन का ऐसा पहलू नहीं बचा जिसे फैशन ने नहीं लुभा रखा हो। फैशन इस कदर हमारे मन मस्तिष्क पर हावी है कि हम अपनी हर एक क्रिया, जैसे चलना, फिरना, उठना, बैठना, खाना पीना, किसी से बात करना, इन सबको भी एक फैशनेबल ढंग से करना चाहते हैं। वैसे तो बहनों, फैशन ने बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक को भी अपने अधीन कर रखा है, किंतु हमारे युवा वर्ग पर कुछ अधिक, और युवा वर्ग में भी कुछ महिलाओं को अपनी चपेट में अधिक ले रखा है, क्योंकि महिलाएं अपने फैशन को लेकर अधिक चिंतित रह

रहती हैं। महिलाओं में तो सौंदर्य बोध जन्मजात होता है और आजकल हर वर्ग की महिला चाहती है कि वह दूसरों की तुलना में 19 ना लगे और इसके लिए वह अपने आप को प्रचलित फैशन के अनुरूप ढालना चाहती है। किस तरह की बिंदियाँ, किस तरह की साड़ियाँ, किस तरह की लिपस्टिक, किस तरह की चूड़ियाँ, सैंडल आदि फैशन में चल रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक। यहाँ तक कि बालों की बैकलिक भी मैचिंग की ही होनी चाहिए। इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देती हैं। किस सीरियल में किस अभिनेत्री ने किस तरह की पोशाक पहन रखी है, इन सब का भी विशेष ध्यान रखती हैं और उसी के मुताबिक खुद भी बनना चाहती हैं, चाहे वो पहनावा उन पर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता हो। पर इससे क्या, पहन तो फैशन का रखा है, लेकिन मेरे विचार में बहनों ये फैशन नहीं वरन अनुकरण है। बहनों मेरे विचार में से तो वास्तव में फैशन वो है जो दिखने वालों की आंखों को सुंदर लगे, ना कि उपहास के पात्र बने। लेकिन बहनों आप ये मत समझना कि मैं यह कह रही हूँ फैशन हमारे आज के इस युग की ही उपज है, वरन फैशन तो हमारे समाज में सदियों से चला आ रहा है। यह हो सकता है कि किसी समय में फैशन का दौर कुछ अधिक हो और किसी समय में कम। सच तो यह है कि फैशन सदा से ही एक गोल पहिए की भांति हमारे समाज में घूमता है। फैशन में कभी कुछ स्थायी नहीं रहता। हाँ, यह बात अलग है कि किस समय किस तरह के फैशन का प्रचलन है। बहनों फैशन का वास्तविक अर्थ है कि जो कुछ भी आत्मविश्वास से पहन लें वही फैशन है। परंतु अधिकतर लोग फैशन का ये मतलब नहीं निकालते। उनके अनुसार दूसरों की भांति अनुकरण करना ही फैशन कहलाता है, जो कि उनके लिए कभी कभी हानिकारक सिद्ध होता है। बहनों हमारे समाज में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इस अनुकरण रूपी फैशन को अपने जीवन में अधिक महत्व न देकर अपने मन मुताबिक किए गए अर्थात वास्तविक फैशन के अनुरूप जीवन व्यतीत करते हों। बहनों देखा जाए तो ऐसे लोग बहुत कम हैं जो फिल्म सीरियल अपने आसपास के लोगों की होड़ न करके अपने ढंग से अपने जीवन को जीते हों, अर्थात इस होड़ रूपी फैशन की दौड़ में अपने आप को शामिल नहीं करते हों। बहनों फैशन उस हवा का नाम है जो कि जीवन के हर क्षेत्र में फैली हुई है। इस फैशन रूपी हवा के चलते लोग दूसरों की होड़ करते हैं, जिसे पूरा करने की क्षमता चाहे किसी व्यक्ति की हो या ना हो, पर वह फैशन समाज में प्रचलित है तो वो हमें भी करना है, अर्थात हमें भी उसी के अनुरूप चलना है। बहनों फैशन का तात्पर्य केवल फैशन के मुताबिक कपड़े पहनने या मेकअप करने तक ही सीमित नहीं रहा। इस फैशन के चलते हमारे पुराने रीति रिवाज, प्रथाएं एवं धार्मिक संस्कार भी परिवर्तित होते जा रहे हैं। बहनों यहाँ मेरे कहने का अर्थ है कि हर एक क्षेत्र में इस दिखावटी फैशन की जड़ें हमारे समाज को बुरी तरह जकड़े हुई हैं। फैशन के चलते हमारे बच्चे बड़ों के चरण स्पर्श करने में अपनी तोहीन समझते हैं, जबकि इसके स्थान पर हेलो हाय बाय इत्यादि करने में गौरव महसूस करते हैं। अब आप बच्चों की पढ़ाई को ही ले लीजिए। बच्चों की पढ़ाई के संदर्भ में भी एक फैशन सा ही चल गया है कि हम चाहे अंग्रेजी में योग्य हों या ना हों, हमें चाहे अंग्रेजी आती हो या ना हो, पर आज समाज के अधिकतर बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मेरा बच्चा भी इंग्लिश स्कूल में ही पढ़ेगा, नहीं तो हमारी शान में कमी आ जाएगी। आज इस फैशन के चलते अधिकतर माता पिताओं की यह सोच बन गई है, चाहे ये पढ़ाई बच्चों के सिर पर से जा रही हो, चाहे ये पढ़ाई से बच्चों को कोई ज्ञान नहीं हो रहा हो, पर इससे क्या फर्क पड़ रहा है, कम से कम यह नाम तो है कि हमारा बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है। इसी तरह आप पहनावा ओढ़ावा को ही ले लीजिए। चाहे वो कपड़ा जो हमने पहन रखा है हमारे शरीर पर 2 कौड़ी का भी नहीं लग रहा हो, पर इससे क्या फर्क है तो फैशन का। इस फैशन के चलते लड़के लड़कियों के पहनाव उड़ाव में भी कोई भिन्नता दिखाई नहीं पड़ती है। आजकल फैशन के चलते लड़के भी बालों में हेयर बैंड का प्रयोग करने लगे हैं और इसी प्रकार हमारी अधिक बहन बेटियों के कपड़ों में भी काफी परिवर्तन आ गया है। साड़ी का स्थान जींस टॉप आदि ने ले लिया है, अर्थात इस फैशन के चलते प्राकृतिक सौंदर्य
मिट सा गया है। इसी तरह खान पान, बैठने उठने के तौर तरीके को भी फैशन रूपी चादर ने

ढकसा लिया है। चाहे अमरस, ठंडियाई, सिकंजी, छाछ कितनी भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, पर हम तो कोल्ड ड्रिंक ही पियेंगे क्योंकि फैशन ही इन चीज़ों का चल रहा है। बहनों, शादी विवाह को ही ले लीजिए, चाहे पत्तल दौने की दावत कितनी भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, परंतु वह नहीं करेंगे। फैशन में तो बफर की दावत का ही चलन है। चाहे उसमें कितना भी खाना वेस्ट क्यों ना हो, चाहे बिल्कुल स्वाद ना हो, पर हम तो फैशन के ढंग से ही करेंगे। और तो और बहनों, अंतिम संस्कार को भी नहीं छोड़ा। अंतिम संस्कार को भी लोग वाग दिन प्रतिदिन फैशनेबल ढंग में परिवर्तित करते जा रहे हैं। अर्थात किस समय क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित, इसकी तो समझ सी मिट गई है। पहले यदि किसी घर में गमी हो जाती तो उस घर की तो बात

0: यदि किसी घर में गमी हो जाती तो उस घर की तो बात छोड़ो, आसपास के घरों में भी चूल्हा नहीं जलता था, परंतु अब मुर्दे के जलने की प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि उससे पहले ही खान पान के विविध आइटमों की स्टॉल लगवा दी जाती है, क्योंकि ऐसा करना भी एक फैशन सा हो गया है। अंत में मेरा मेरी बहनों से यही कहना है कि आडंबर रूपी फैशन को छोड़कर वास्तविक फैशन को ही अपने जीवन में विशेष महत्व दें, और वास्तविक फैशन वो है जो कि स्वयं व्यक्ति के आत्मविश्वास से उपजता है।
1: बहनों, अभी आपने सुना उमा अग्रवाल को, उन्होंने हमें बताया कि जीवन में प्रभावित करता फैशन पहनावा के अंतर्गत। तो बहनों, हमारे जीवन को पहनावा बिल्कुल प्रभावित करता है, और साथ ही शिक्षा संस्कार भी बहुत ज़रूरी हैं हमारे घर परिवार में, हमारे बच्चों के लिए और ख़ास तौर से बेटियों के लिए भी, क्योंकि शिक्षा के द्वारा देश का, समाज का, राष्ट्र का और परिवार का कल्याण और विकास संभव है। इसलिए शिक्षा प्राप्त करना सभी का अधिकार है। ख़ास तौर से एक बेटी शिक्षित होती है तो समाज की नींव सुरक्षित होती है, और साथ ही समाज के भविष्य को बदलने की क्षमता भी बढ़ती है। इससे महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ और परिवार की अन्य महिलाएं बेटियों की पहली शिक्षक, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत होती हैं। बेटा और बेटी दोनों को समान शिक्षा का अधिकार बिना किसी भेदभाव के मिलना चाहिए। शिक्षा के द्वारा ही बेटियां आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं। शिक्षा के साथ साथ अन्य कौशल को, अन्य रुचियों को भी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। परिवार का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहां बेटियां अपने विचार को सकारात्मक रूप से बताकर अपनी पहचान बनाने के लिए स्वतंत्र हों। शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन के निर्णय लेने में बेटियां स्वयं सक्षम हो सकती हैं। इसलिए बेटियों को शिक्षित करना केवल परिवार की नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। हर बेटी को शिक्षा का, सम्मान का और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर दें, क्योंकि शिक्षित बेटी ही सशक्त समाज की पहचान है। तो बहनों, हमारी बेटियां शिक्षित भी होनी चाहिए, संस्कारवान भी होनी चाहिए, जिससे कि वो जब तक हमारे पास हैं तब तक खुश रहें। हमें अपने परिवार को खुशियां देनी चाहिए, क्योंकि बेटियां आज तो हमारे पास हैं, कल पता नहीं कहां वो अपने विकास के लिए या फिर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़कर किस जगह, किस स्थिति में हों। तो हमें सिर्फ अपनी बेटियों की याद ही आती है, और हम उन सुनहरे पलों को हमेशा याद ही करते रहते हैं, कुछ इस तरह।

अब आगे बढ़ते हैं घरेलू टिप्स की ओर। तो बहनों, हम सभी में आमतौर से बालों को झड़ने की जो समस्या है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसके लिए आपको

मेथी का प्रयोग करना है। मेथी जो है हेयर फॉल को कंट्रोल करने में असरदार है। मेथी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि बालों के विकास को बढ़ाने में मददगार होते हैं। इसके लिए बस आपको मेथी के दानों को पानी में रात में भिगो कर रख दें। अगले दिन मेथी के दानों को ग्राइंड कर लें। इसमें 1 चम्मच नींबू का रस और नारियल तेल मिलाएं। इस पेस्ट को बालों की जड़ों पर लगाएं और इसे सूखने दें ताकि बालों पर ये तब तक लगा रहे जब तक कि ये सूखे। उसके बाद इसे पानी से धो लें तो आपको कुछ समय बाद ही चंद दिनों में असर दिखने लगेगा। और बहनों, इसके साथ ही अपनी डाइट में साबुत धनिया का भी प्रयोग जरूर करें। साबुत धनिया पेट की गैस, अपच और एसिडिटी को दूर करता है। साथ ही ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसको किसी भी व्यंजन पर डालने से उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। और इसके साथ ही ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, शरीर की सूजन को घटाने में, कोलेस्ट्रॉल सुधारने और वजन कम करने में भी मदद करता है। इसकी तासीर ठंडी होती है जो कि पित्त को शांत करने में मदद करती है। इसके अलावा बहनों, डाइट में साबुत पिस्ता का भी इस्तेमाल ज़रूर करें। पिस्ता स्वादिष्ट होने के साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर मेवा है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, स्वस्थ वसा, विटामिन और खनिज पाए जाते हैं जो शरीर को ऊर्जा देने, पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद कर सकते हैं। संतुलित मात्रा में पिस्ता खाना हृदय स्वास्थ्य और बेहतर पोषण के लिए भी फायदेमंद होता है। तो बहनों, उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। और चलते चलते कार्यक्रम में अब सुन लेते हैं एक गीत।

बहनों, जीवन एक यात्रा है। शुरुआत और अंत एक जैसे होते हैं, इसलिए इस सफर को खुशी से जिएं, हंसकर जिएं। तो वनिता लोक कार्यक्रम में आज इतना ही। इसी के साथ मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी दीप्ति शर्मा। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। और आइए अब सुनिएगा फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे इला अरुण और लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम था लम्हे। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और इस गीत को धुन से संवारा था शिव हरि ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। शंकर महादेवन और प्रीति उत्तम की युगल आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अर्जुन पंडित। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और इस गीत को धुन से संवारा है दिलीप सेन और समीर सेन ने।

और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। इस गीत को लिखा है कैफी आजमी ने और इस गीत को आवाज और संगीत दोनों दिया है जगजीत सिंह ने। फिल्म का नाम है अर्थ।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले अंग्रेजी उसके बाद हिंदी में सुने जा सकेंगे, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: Brent crude oil prices continue to trade above $100 per barrel as Iran-US conflict intensifies. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Odisha today. And in cricket, India to take on Bangladesh in semi-final of Women's Asia Cup in Dubai this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में कृषि क्षेत्र में सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने मलेशिया के कृषि मंत्री मोहम्मद बिन साबू के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत के जरिए करने पर सहमति जताई। म्यांमार के कृषि मंत्री मिन नोंग के साथ बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कृषि व्यापार की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में दालें, कपास, डेयरी विकास और कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली वार्षिक फिनटेक सम्मेलनों में से एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण मुंबई में चल रहा है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है पोटेंशियल टू इम्पैक्ट, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय, आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आज तीसरा दिन है। एजेंटिक एआई एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन अ बिलियन यूजर नेशन विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन निलेकणी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 160,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर

0: कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत ये आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
3: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, VIP और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितम्बर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, BLO और चुनावी साक्षरता क्लब ELC के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
4: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्म भूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमलुक संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमिलगा वेत्री कषगम TVK के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यबामा और मधुरंतकम से मरगथम कुमारवेल को मैदान में उतारा है। विपक्षी DMK ने मधुरंतकम से पारंथमन और धरपुरम से S सुगन्या को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1377 हो गई है। 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, कई नदियों का जलस्तर घट रहा है, राहत और बचाव कार्य

0: तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निरीश्री।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,443 पर था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनीता विलियम से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत ने महिला हॉकी जूनियर विश्व एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई, जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधुसिदार, सुप्रिया और रोशनी एंद ने दो दो गोल किए। भारत 12 सितंबर को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेगा। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमरीका

और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। करते हैं शुरुआत गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी जी द्वारा भेजे गए सुविचार के साथ। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। सचमुच कैसे नादान हैं हम सब। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। आपके सुविचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच है श्रोता मित्रों, जीवन को जीने का हमारा दृष्टिकोण हमेशा संतुलित और परिपक्व होना चाहिए। सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं, जल है तो कल है, वृक्ष है तो फल है। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी ने। मिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, असमानाज अंसारी और सुल्तान अंसारी, और शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज के प्रेरक प्रसंग में एक बार फिर से हम याद करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर को, जब अंग्रेजी शासन का शिकंजा भारत पर कसता जा रहा था। हम आजादी के बहुत से अमर शहीदों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम तीन ऐसे नौजवानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, लगभग नहीं के बराबर। मित्रों, अगर मैं कहूं कि मात्र 18, 19 या 22 साल के तीन आजादी के दीवाने नौजवान अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित सरकारी भवन में घुस गए थे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? असंभव सा लगता है ना, लेकिन ऐसा हुआ। वे तीन जवान थे, विनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। उन दिनों कोलकाता में अंग्रेजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दफ्तर था जो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। ये ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी वहीं बैठते थे। ये 8 दिसंबर 1930 की घटना है। सामान्य दिन था। अंग्रेज अधिकारी अपने दफ्तर यानी राइटर्स बिल्डिंग में आ चुके थे और अपना काम कर रहे थे। महत्वपूर्ण जगह होने के कारण वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुरक्षा का घेरा तोड़कर विनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता उस भवन में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग दोपहर की बात है, वे तीनों युवा क्रांतिकारी भवन में घुस गए। उस दफ्तर में कई भारतीय भी काम करते थे, इसलिए उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों जैसा पहनावा पहना और अंदर प्रवेश किया। उनके निशाने पर थे लेफ्टिनेंट कर्नल एनएस सिम्पसन, जो जेलों में भारतीय राजनीतिक बंदियों के साथ कठोर व्यवहार के लिए कुख्यात माने जाते थे। और देखते ही देखते तीनों ने लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन पर गोली चला दी। कर्नल की वहीं मृत्यु हो गई। इसके बाद वही हुआ जो आमतौर पर होता है, राइटर्स बिल्डिंग के अंदर ही ब्रिटिश पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। तो श्रोताओं, आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वे तीनों वहां से निकलने में सफल हुए? इसका उत्तर है नहीं। उन्होंने प्रण कर लिया था कि किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। वे समझ गए थे कि अब बच निकलना लगभग असंभव है। तो नौजवान बादल गुप्ता और बिनोय ने स्वयं को गोली मार ली। बादल गुप्ता की वहीं पर मृत्यु हो गई। बिनोय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1930 को उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके साथी दिनेश गुप्ता घायल अवस्था में पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला और 7 जुलाई 1931 को अलीपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। और अब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश ने इन तीनों की स्मृति को कैसे जीवित रखा। कोलकाता के बेहद प्रसिद्ध डलहौजी हाउस का नाम बदलकर बीबीडी बाग यानी बादल, बिनोय और दिनेश रखा गया और एक स्मारक बनाया गया। श्रोताओ, एक बात बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि हम इन क्रांतिकारियों के साहस और बलिदान को आभार के साथ याद करते हैं, लेकिन हिंसा को जीवन का रास्ता नहीं मानते। हम बस उस दौर के इतिहास को उस समय के संदर्भ में समझते हैं। तो श्रोताओ, जब हम बीडीडी बाग का नाम सुने

0: तो केवल उसे कोलकाता की एक जगह समझकर नजरअंदाज न कर दें। हम जरूर याद करें इन क्रांतिकारी युवाओं को, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आजादी को केवल एक विशेषाधिकार की तरह ही नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व की तरह भी देखें, और जिन्होंने देश के लिए अपना आज दे दिया, हम उनके बलिदान को याद करके अपने आज को बेहतर बनाएं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। आप 8800044559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CITNCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बरसात और मेंढक। इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पशु पक्षियों और संपूर्ण जीव जगत का ख्याल रखना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए।
1: बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।

0: पास थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
3: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
4: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे।

0: नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढ़क ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ,
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में रूस के एक भालू से जुड़ी एक घटना के बारे में बताया गया है और ये संदेश दिया गया है कि हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पूरी तरह से पहचानना चाहिए।
0: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए जरा, बताइए तो।
0: अच्छा चलिए हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
0: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया।

0: वो भूखा था और घायल भी।
1: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
0: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
1: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
0: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
1: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
0: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
1: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
0: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था, वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था, वो जहां चाहता वहां जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का

0: सीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: और अब सुनते हैं एक सुंदर गीत।
3: फूल सी गुड़िया हमारी,

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 4 बजे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 4 बजने को है, हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

ये भारतवर्ष कितना सुंदर है ना, वो वादियां, वो पहाड़, वो फूल पत्ते, वो मिट्टी और उसकी महक, ये देश, ये लोग, वो प्रांत, वो भाषा, वो जौहर, वो जलवा, वो प्रसिद्ध अभिनेता, वो प्रसिद्ध खिलाड़ी, वो उच्च स्तरीय एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि बस दुनिया कहने पर विवश हो जाती है कि भारतवर्ष इस पृथ्वी का सबसे अच्छा देश है। हम जैसे भी हैं हम एक हैं, हम जैसे भी हैं इस मिट्टी के बच्चे हैं, इस मिट्टी से हमें इतना लगाव है, इतना प्यार है जो शायद ही हम किसी और से करते हों। इस फिजा में, इस सभा में वो खुशबू है जिसकी बदौलत हम शान से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, और इसी आन बान और शान को दुरुस्त रखने के लिए सरहदों पर और इस भारतवर्ष के अंदर हमारी सेनाओं का प्रमुख रोल है। वो पैरा सर्विसेज हो, पैरा मिलिट्री फोर्सेज हो या आर्म्ड फोर्सेज हो, द पीपल इन यूनिफॉर्म प्रोटेक्ट आवर कंट्री। और आज हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में ऐसे ही एक जाबाज अफसर मौजूद है हमारे साथ, सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर, जो आज हमसे एसएसबी की गाथा, उसके गुण और अपनी उस शौर्य की गाथा शेयर करेंगे। क्योंकि एसएसबी सशस्त्र सीमा बल एक ऐसी फोर्स है जिस पर दायित्व है भारत की सुरक्षा का। आइए मिलकर स्वागत करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर का। बहुत बहुत स्वागत है आपका।

0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड इवनिंग। मैं सैयद अफसर, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सबसे पहले मैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक महोदय तथा आकाशवाणी FM रेनबो का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मंच पर उपस्थित होकर अपने सेवा अनुभव और अपनी यात्रा साझा करने का अवसर प्रदान किया। मेरे लिए यह अवसर एक इंटरव्यू नहीं बल्कि देश के श्रोताओं से सीधा संवाद करने और अपने अनुभवों के माध्यम से युवाओं तथा देशवासियों तक कर्तव्य, साहस और राष्ट्र सेवा का संदेश पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर के लिए मैं आकाशवाणी FM रेनबो और पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी हूं।
1: आपकी आवाज़ सुनकर मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में लोगों को बहुत ही उत्साह, एक गर्व महसूस किया गया होगा। आप पुलिस गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं और दो खास ऑपरेशंस जिनकी हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले आज इस प्रोग्राम में, और वो है पिथौरागढ़ और जमुई में जो दो ऑपरेशंस हुए, वो बड़े ख़ास और इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस थे। मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़ुबानी इन ऑपरेशंस के बारे में बताएँ।
0: जी बिल्कुल, मैं अभी जमुई में हुए ऑपरेशन के बारे में आपको कुछ प्रकाश डालूँगा। उस ऑपरेशन की पूरी जानकारी काफ़ी विस्तृत है और यह कई फेजेस में कंडक्ट किया गया था। 11 फरवरी 2021 मेरे सर्विस कैरियर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दिन था। हमें इंटेलिजेंस प्राप्त हुई थी कि लखीसराय जिले के जंगल क्षेत्र में नक्सलियों का एक सशस्त्र दस्ता देखा गया है और उनके लिए आसपास के क्षेत्रों से भोजन सामग्री पहुंचाई गई है। प्राप्त सूचना को वेरीफाई करने के बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। हमने 10-11 फरवरी 2021 की मध्यरात्रि के दौरान अपना मूवमेंट शुरू किया। क्षेत्र की ज्योग्राफिकल कंडीशंस काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी, इसलिए ऑपरेशन में पेशेंस, एंड्योरेंस और सतर्कता की विशेष आवश्यकता थी। ऑपरेशन के दौरान प्राप्त एक अन्य इनपुट के आधार पर परिस्थितियों के अनुरूप हमारी टीम ने अपनी योजना में आवश्यक बदलाव करते हुए आगे मूवमेंट किया। 11 फरवरी की सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास हमारी टीम पर अचानक भारी मात्रा में फायरिंग शुरू हुई। हमने स्थिति का असेसमेंट करते हुए जवाबी कार्रवाई की। एंगेजमेंट का कुछ समय तक रुक रुक कर जारी रहा। इसके बाद एरिया की सिस्टमेटिक सर्च की गई। इस कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण नक्सली कैडर मनसा कोड़ा जोनल कमांडर को न्यूट्रलाइज किया गया तथा कुछ अन्य कैडर के घायल होने की जानकारी बाद में प्राप्त हुई। साथ ही साथ कुछ हथियार, गोला बारूद एवं अन्य सामग्री जब्त की गई। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे संतोषजनक और महत्वपूर्ण बात मेरे लिए यह रही कि हमारी पूरी टीम सुरक्षित रही और किसी भी साथी को कोई इंजरी नहीं हुई। मेरे विचार से यही किसी भी ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता होती है। मिशन को प्रभावी ढंग से पूरा करना और अपनी पूरी टीम को सुरक्षित वापस लाना। लेकिन मैं इस पूरी कार्रवाई को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं देखता, यह पूरी टीम का कलेक्टिव एफर्ट था। हर व्यक्ति ने, हर कार्मिक ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और सभी ने एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखा। हमारे लिए ऑपरेशन की सफलता केवल ऑब्जेक्टिव हासिल करने में नहीं थी, हमारे हर साथी का सुरक्षित रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उस दिन पूरी टीम का डिसिप्लिन, म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हमारी सबसे बड़ी ताकत रही।

0: तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आपने किया, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जब अचानक से फायरिंग शुरू होती है तो मन में पहला विचार क्या आता है? आपके मन में वो पहला विचार उस समय क्या आया जब एकदम से फायरिंग शुरू होगी? और खासतौर से मैं जानना चाहूंगा कि जो सिविलियंस होते हैं वो कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि एकदम से फायरिंग शुरू हो गई और जवाबी कार्रवाई हुई, तो जब एकदम से फायरिंग शुरू होती है तो मुझे जहाँ तक कॉम्बैट की नॉलेज है कि हम गोलियों के सामने नहीं आते, हम एक कवर लेते हैं, एंड ऑफ कोर्स कवर लेने के बाद थोड़ा सा उस कवर के दौरान ही हम लोग एक समीक्षा करते हैं, एक ऑपरेशन हो रहा होता है, फायरिंग शुरू हो गई, इसके लिए ट्रेनिंग हमें वाकई में पहले दी जाती है, पर फिर भी ट्रेनिंग और उस एक्चुअल मोमेंट में जब अचानक फायरिंग शुरू हुई तो आपके मन में पहला विचार क्या था?
1: जी बिल्कुल, उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि सिचुएशन को जल्दी एसेस करना, एसेस किया जाए और टीम को कोऑर्डिनेटेड तरीके से रिस्पांस दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में ट्रेनिंग बहुत काम आती है, आपके पास सोचने के लिए बहुत कम समय होता है, इसलिए ट्रेनिंग के कारण रिस्पांस इंस्टिंक्ट और डिसिप्लिन्ड हो जाता है। उस समय मेरा फोकस था कि फ्रंटलाइन को एस्टेब्लिश किया जाए, कम्युनिकेशन क्लियर रहे और टीम एफेक्टिवली रिस्पॉन्स कर सके।
0: ओके, तो उस समय जब आप आगे बढ़ रहे थे तो आप क्या आपने एक क्षण के लिए भी कुछ विचार आया? उस समय होता है ना एकदम से फायरिंग शुरू हो गई, दिस इज द रियल एक्शन, अब क्या होगा आगे पता नहीं, लोग परिवार के बारे में सोचते हैं, तरह तरह की बातें आती हैं जहन में, कुछ होता है?
1: जी, खतरे की स्थिति में डर या तनाव एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है, लेकिन ऑपरेशनल ड्यूटी में ट्रेनिंग आपको सिखाती है कि उस भावना को अपने डिसीजन मेकिंग पर हावी नहीं होने देना है। उस समय मेरे लिए पर्सनल फेयर से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरी टीम और मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं करेज को इस तरह देखता हूँ कि खतरे के बावजूद आप अपने कर्तव्य से पीछे ना हटें।
0: आप बीच में फायर डिसिप्लिन, आपने एक वर्ड यूज किया, तो मैं चाहूंगा कि इसका महत्व आप लोगों को समझाएं, वो लोग जो आपको अभी सुन रहे हैं, क्योंकि हमने डिसिप्लिन तो बहुत सुना है कि द पीपल हु आर इन यूनिफॉर्म वो डिसिप्लिन रहते हैं, लेकिन कॉम्बैट के वक्त फायर डिसिप्लिन, ये मैं चाहूंगा कि ये मैंने सुना तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सशस्त्र सीमा बल के फायर डिसिप्लिन का एक जो महत्व है वो लोगों को बताएं, और साथ ही साथ जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे थे, कितनी जल्दी आप लोग आपस में अपने साइन लैंग्वेज में ही बात करते होंगे शायद, एंड यू माइट नॉट बी काइंड ऑफ यू नो, एक वो भी एक महत्वपूर्ण एक अंश है कॉम्बैट का, लेकिन फायर डिसिप्लिन एंड ऑफकोर्स उसके बाद उसका जो महत्व है वो थोड़ा बताएं।
1: जी बिल्कुल, ऑपरेशन में किसी भी ऑपरेशन को सक्सेस बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फायर डिसिप्लिन का होना, और कम्युनिकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने ये इंश्योर किया कि आरटी के माध्यम से जो भी ऑर्डर्स पास किए जा रहे थे उन्हें सभी सेक्शंस तक क्लियर और काम तरीके से रिले करना आवश्यक था। इंटेंस एंगेजमेंट के दौरान अगर कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन हो जाए तो सिचुएशन और डिफ़िकल्ट हो सकती है, इसलिए मैंने कोशिश की कि ऑर्डर्स एक्यूरेटली और टाइमली तरीके से आगे पहुंचे और ट्रूप्स के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहे। इसी तरह फायर डिसिप्लिन भी बहुत महत्वपूर्ण था
0: जी।
1: हमारा उद्देश्य कंट्रोल्ड और एफेक्टिव रिस्पॉन्स देना था, ना कि केवल अधिक एमिनेशन खर्च करना।
0: ऑलराइट, बेसिकली यू नो आप लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो पब्लिक तो होती नहीं, इसलिए ये प्रोग्राम जो है संदेश टू सोल्जर्स, जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं उसके माध्यम से हम सिविलियंस को कुछ थोड़ा बहुत पता लग जाता है कि किस तरह का डिसिप्लिन, हम लोग डिसिप्लिन एक वर्ड यूज़ करते हैं लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा फैलाव है, और डिसिप्लिन हमेशा रहने में मेरे ख्याल से इट डजंट मीन कि आप हमेशा सीरियस हैं और सीरियस हैं, लेकिन उसके बाद

0: थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, जैसे हम आकाशवाणी रेनबो में करते हैं, थोड़ा सा गीत संगीत भी सुनते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी पसंद का एक गीत हमें चुनकर बताएं कि कौन सा गीत हम इस समय थोड़ा सा माहौल को थोड़ा सा और सॉफ्ट करने के लिए प्ले कर सकते हैं, और कौन सा गीत हो सकता है वो।
1: जी, मैं चाहूंगा कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए,
0: वो दिस अ
1: लड्डू ले
0: ग्रेट
1: बैठा।
0: सॉन्ग है
1: ओके
0: ना, पुरानी फिल्म का है,
1: जी जी बिल्कुल
0: मतलब मैं पैदा नहीं हुआ था जब ये फिल्म रिलीज हो गई थी,
1: जी
0: और आपकी फिगर और आपकी स्मार्टनेस देखकर मेरे ख्याल से हमारे पैदा होने से पहले ये फिल्म बनी थी। इट्स अ ग्रेट सॉन्ग, किशोर कुमार लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। इस गीत को सुनते हैं, उसके बाद मैं आपके से जानना चाहूँगा, आपके पास आऊँगा दोबारा, कि ये गीत आपको क्यों पसंद है, पन्ना की तमन्ना। लेट्स हेयर इट आउट ऑन संदेश टू सोल्जर्स।

0: तो आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में। तो कुछ बताना चाहेंगे, पन्ना की तमन्ना बड़ा सॉलिड सॉन्ग है, एक बॉलीवुड से कुछ खास प्यार?
1: जी मुझे किशोर कुमार जी के गाने सुनने अच्छे लगते हैं, और जब मैं स्टडी करता था कॉलेज टाइम पे तो उस वक्त जो है मैं जब भी टाइम मिलता था तो फोकस तोड़ने के लिए मैं किशोर जी के गाने और अपने
0: मतलब एक अलग ही जादू है इनकी आवाज में। खिलाड़ियों से हम बात करते हैं वो किशोर दा के फैन है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो किशोर दा के फैन है, लता मंगेशकर जी के फैंस हैं, भले ही ये लोग फिजिकली हमारे साथ नहीं हो लेकिन इनकी आवाज़ सदियों तक रहेगी। और आई एम श्योर किशोर दा, लता जी की सोल, उनकी आत्मा जहाँ भी होगी बहुत गर्व महसूस करती होगी कि द मैन एंड वुमेन इन यूनिफॉर्म आज भी उनकी आवाज़ उनको इतना प्रेरित करती है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपके सैन्य जीवन के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, अभी नक्सल अफेक्टेड जो एरियाज़ हैं उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि जब हम उन अफेक्टेड एरियाज़ में जो ड्यूटी करते हैं तो उस समय जो जो पर्सनल होते हैं वो किस प्रकार विजिलेंट रहते हैं?
1: जी बिल्कुल। नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कभी भी कंप्लेसेंट ना हो, ऐसे एरियाज़ में ग्राउंड सिचुएशन लगातार बदल सकती है, इसीलिए इंटेलिजेंस इनपुट्स, ब्रीफिंग्स, लोकल सिचुएशन, रूट असेसमेंट और टीम कोऑर्डिनेशन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारी ट्रेनिंग हमें यह सिखाती है कि रूटीन मूवमेंट को भी पूरी प्रोफेशनल अलर्टनेस के साथ किया जाए, लेकिन विजिलेंट केवल हथियार लेकर चौकन्ना रहने का नाम नहीं है। विजिलेंट का अर्थ है अपने सराउंडिंग्स को समझना, असामान्य गतिविधियों को पहचानना, कम्युनिकेशन बनाए रखना और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत एप्रोप्रिएट डिसीजन लेना।
0: आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि हमारे साथ सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर मौजूद हैं, और SSB की जहां तक हम बात करें तो ओरिजिनली इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1963 को, तब स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से इसे जाना जाता था, नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व ये इसका मोटो है, सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। और हमारे बॉर्डर्स को गार्ड करते हैं और देश के अंदर जब भी कोई चुनौतीपूर्ण एक मौका आता है या वो क्षण आता है उसमें बिल्कुल सामने डटकर खड़े हो जाते हैं, उसका सामना करते हैं और विजयी होते हैं।

0: चलिए हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़े से पन्ने जो हैं उनको घुमाते हैं, और सबसे पहले जानना चाहेंगे यहाँ जब हम ये पन्ने थोड़ा सा पीछे मोड़ रहे हैं कि आपके प्रारंभिक जीवन के जो पल थे, जहाँ बचपन है, शिक्षा है, परिवार है, आपकी अपनी पर्सनालिटी, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मैं जमशेदपुर झारखंड का निवासी हूँ। मैंने अपने प्रारंभिक जीवन की बात करूँ तो मेरा बचपन एक सामान्य मध्यम वर्गीय पारिवारिक परिवेश में बीता है। मेरे परिवार ने बचपन से ही मुझे अनुशासन, ईमानदारी, मेहनत और बड़ों का सम्मान करने जैसे संस्कार दिए। मैंने रांची यूनिवर्सिटी से BSc मैथमेटिक्स में स्नातक की शिक्षा पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ मुझे शारीरिक गतिविधियों, खेल और अनुशासित जीवन में रुचि थी। मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में मेरे माता पिता और परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। मैं मानता हूँ कि व्यक्ति की सफलता केवल उसकी अपनी मेहनत का परिणाम नहीं होती, उसके पीछे परिवार के संस्कार, शिक्षकों का मार्गदर्शन और जीवन में मिले अनुभवों का बहुत बड़ा योगदान होता है।
0: SSB में जब आपके भर्ती होने की जब बारी आई, तो आपको ये SSB में ही, सशस्त्र सीमा बल में ही आने के लिए प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगा कि आपने जब SSB ज्वाइन किया, तो उसकी भर्ती की जो प्रक्रिया थी वो कैसी रही?
1: जी बिल्कुल, मेरे लिए प्रेरणा का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मेरे पिता रहे हैं। वे इंडियन रेलवेज में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, साथ ही टेरिटोरियल आर्मी में थे। बचपन में जब मैं उन्हें वर्दी में देखता था तो उन्हें वर्दी में देखकर मेरे अंदर भी देश के लिए कुछ करने का जोश और जुनून पैदा होता था। शायद वहीं से मेरे मन में यह भावना विकसित हुई कि भविष्य में मुझे भी ऐसी वर्दी पहनकर राष्ट्र की सेवा करनी है। इसी भावना को व्यक्त करने वाला अंग्रेजी का एक कोट जो मुझे प्रेरित करता है वो मैं कहना चाहूँगा। द यूनिफॉर्म इज नॉट मेयरली वॉट यू वेयर, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी यू कैरी, द वैल्यूज यू अपहोल्ड एंड द नेशन यू सर्व। मेरे लिए वर्दी केवल पहनावा नहीं है, यह उस जिम्मेदारी, अनुशासन और समर्पण की पहचान है जिसे पहनने वाला व्यक्ति अपने कंधों पर लेकर चलता है।
0: तो दोस्तों, आप सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर की आवाज़ सुन रहे हैं। हमने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे उनकी ही जुबानी कि SSB ज्वाइन करने से पहले और उसके बाद उनके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं।
1: जी, परिवार के लिए यह गर्व का विषय था लेकिन स्वाभाविक रूप से थोड़ी चिंता भी थी। यूनिफॉर्म सर्विस में पोस्टिंग्स अलग अलग राज्यों और कई बार कठिन तथा संवेदनशील क्षेत्रों में होती है, इसलिए परिवार को पता था कि आगे का जीवन आसान नहीं होगा। लेकिन मेरे परिवार ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया और उसके बाद अलग अलग लोकेशंस पर मेरी पोस्टिंग हुई तो धीरे धीरे उन्हें भी इस प्रोफेशन की चुनौतियों की समझ हुई। और जब मुझे पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया तो वह मेरे परिवार के लिए अत्यंत भावुक और गर्व का क्षण था।
0: आपने अपने गैलेंट्री अवार्ड की बात की, तो मेरे ख्याल से ये जो ऑपरेशंस आपने किए जिसके लिए ये सम्मान आपको दिया गया, गैलेंट्री अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है ना, तो इसकी जो उपलब्धि थी, इसके महत्व के बारे में तो हम लोग जानेंगे, लेकिन आपके लिए वो क्षण कैसा था जब आपको पता लगा कि आपको इस गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ख़ास तौर से जब एक ऐसी फोर्स के बारे में हम बात करते हैं जिसे 2001 में

मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और जो नेपाल और भूटान के बॉर्डर्स पे जो मैनिंग की जो ड्यूटीज थी, उसके बाद एक और दायित्व दिया गया इन्हें, क्योंकि जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास कारगिल युद्ध के बाद, तो एक अडॉप्शन जो कहते हैं कि वन बॉर्डर वन फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है,

0: सुना, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है, जब ये अनाउंस हुआ और आपको पहली बार पता लगा तो आपके वो क्षण कैसे थे?
1: जी, यह मेरे लिए बहुत गर्व और भावनात्मक क्षण था। सबसे पहले मेरे मन में अपने सीनियर्स, अपने साथी कार्मिक और अपने परिवार के प्रति आभार आया, क्योंकि जिस ऑपरेशन के लिए मुझे यह सम्मान मिला उसमें मैं अकेला नहीं था। पूरी टीम ने कठिन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारी निभाई, इसलिए मैं इस मेडल को पूरी टीम के साहस, प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन का सम्मान मानता हूँ।
0: ये जो गैलेंट्री अवार्ड की हम बात कर रहे हैं, तो असिस्टेंट कमांडर सैयद अफसर से मैं पूछना चाहूँगा कि ये मेडल मिलने के बाद आपकी सोच में भी कोई बदलाव आया?
1: जी, बताना चाहूँगा, सम्मान मिलने के बाद मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। मेडल मेरे लिए यह रिमाइंडर है कि मुझे आगे भी अपने प्रोफेशन में उसी डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म को बनाए रखना है। मैं इसे उपलब्धि का अंत नहीं, बल्कि आगे बेहतर करने की प्रेरणा मानता हूँ।
0: और मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा अर्थ है गैलेंट्री मेडल का।
1: जी, बिल्कुल।
0: राइट देन, जब गैलेंट्री अवार्ड मेडल मिलता है, सैयद अफसर मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो मेडल की जब खबर आती है तो उस दिन रात को नींद कैसे आती है और अगली सुबह वो भाव कैसे होते हैं? गौरव का क्षण होता है।
1: बिल्कुल, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए जो ऑपरेशन में उस दिन डटकर खड़े थे साथ, और उन सभी मेहनत और ट्रेनिंग के दिनों के लिए जो हमने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए किया था।
0: उस दिन जब ये खबर आपके पास आई तो शायद कोई ऐसा मोमेंट भी होगा जहां आप अकेले होंगे, कोई नहीं होगा आसपास, कुछ देर के लिए, उस समय नहीं तो उसके थोड़ी देर बाद, आप और सिर्फ आप, जहां आप अपनी आत्मा से बात कर रहे होंगे, कुछ ऐसा मोमेंट था, कुछ शेयर करना चाहेंगे?
1: जो बिल्कुल, जब हम ऑपरेशंस करते हैं तो उस वक्त हमारे दिमाग में मेडल्स ये सब नहीं होता, बट जब आपके किसी अच्छे काम को रिकग्निशन मिलता है तो बिल्कुल बहुत खुशी होती है, और वो भावुक क्षण था मेरे लिए।
0: एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जिसके बारे में मैंने आपसे नहीं बताया, और मैं नहीं बताता किसी को कि ये सवाल मैं शो में पूछूंगा आपसे, और ये सवाल मैंने भारत के टॉप स्पोर्ट्स पर्सन से पूछा है, देश के जांबाज सिपाहियों से पूछा है, अफसरों से पूछा है, सोल्जर्स से पूछा है, इसलिए ये सवाल मैं अब आपकी आंखों में देखकर ये पूछना चाहता हूं। सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर, ये तिरंगा आपके लिए क्या मायने रखता है, जिसकी आन बान शान के नीचे आप अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं?
1: जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया, तिरंगा हमारी आन बान और शान है, और इसी के लिए हम अपनी जान निछोर कर सकते हैं। इसी के हमेशा ऊंचा रहने के लिए हम अपनी सब कुछ निछोर कर देते हैं, और
0: भावुक क्षण है, सवाल उतना आसान नहीं है ना, ये तिरंगा कभी कभी वो भाव निकाल ही लाता है हमारे अंदर से, है ना? अच्छा मुझे ये बताइए, आप देश की सेवा कर रहे हैं और आपका परिवार भी है, और उसके बीच में एक कहते हैं ना, एक संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, कि फैमिली की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फैमिली कहती है कि भाई हमारी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोन आया तो ठीक है, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे, ये थोड़ा सा जो आपकी डिसिप्लिन लाइफ है उससे सिविलियन लाइफ थोड़ी सी अलग होती है, तो आप देश सेवा और परिवार के बीच में जो संतुलन है वो कैसे बनाए रखते हैं?
1: जी, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। यह निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। हमारी पोस्टिंग्स और ड्यूटीज़ के कारण कई बार परिवार से दूर रहना पड़ता है, और जो इम्पोर्टेंट ओकेजन्स होते हैं जो हमारे परिवार के, वो भी कई कबार मिस हो जाते हैं। ऐसे में परिवार का

0: अंडरस्टैंडिंग रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब भी समय मिलता है मैं परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताता हूँ और कम्युनिकेशन बनाए रखता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि जब एक सोल्जर देश की सेवा करता है तो उसके साथ उसका परिवार भी सेक्रीफाइस करता है।
1: देखो, परिवार का योगदान तो बहुत रहता है। एंड ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं परिवार के संतुलन के बारे में, उनका सपोर्ट, उसके बगैर तो कोई बैलेंस बन ही नहीं सकता लाइफ में। और हम आकाशवाणी में एक बैलेंस बना के रखते हैं अपने लिसनर्स के साथ। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी श्रोता इस समय संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं, न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से देश और विदेश में भी हमें सुना जा रहा है, हम इस बात से परिचित हैं। तो अगर आप कोई व्हाट्सएप मैसेज करना चाहें तो एक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर आप व्हाट्सएप से अपने भाव, अपने प्रतिक्रिया, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सईद अफसर जी से तो वो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 9868107070, 9868107070। लग ही नहीं रहा कि किसी अजनबी से मुलाकात हो रही है। और समय हो गया है कि एक और गीत सुने, तो कौन सा गीत आप प्ले करना चाहेंगे? किशोरदा के तो आप फैन हैं।
0: जी, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई।
1: अरे, इसके अंदर तो बहुत राज छुपे हैं असिस्टेंट कमांडेंट साहब, जरूर इसके पीछे बहुत बड़ा कोई रीजन है। तो ये गीत सुनते हैं आपकी फरमाइश, किशोरदा की आवाज में, फिल्म अजनबी से।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ यहाँ असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर मौजूद हैं, सशस्त्र सीमा बल जो हमारी फोर्स है उसको बहुत सारी शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए भी आकाशवाणी की तरफ से, और बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं जिनसे थोड़ा सा परिचित होंगे थोड़ी देर में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि सशस्त्र सीमा बल में जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो कैसी रहती है और आपके लिए कैसी थी?
1: जी, मैंने SSB वर्ष 2012 में बतौर उपनिरीक्षक के पद पर ज्वाइन किया एवं अपनी सेवा यात्रा शुरू की। भर्ती की प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा, मेडिकल परीक्षण, इंटरव्यू तथा अन्य निर्धारित चयन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। सेलेक्शन और ज्वाइनिंग के दौरान मेरे लिए यह एक नया अनुभव था। एक यूनिफॉर्म फोर्स में आने के लिए फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल प्रिपेयर्डनेस, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की भी आवश्यकता होती है। ज्वाइनिंग के बाद मेरा पहला महत्वपूर्ण चरण सलोनीबाड़ी असम में सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक ट्रेनिंग का रहा। ट्रेनिंग के दौरान मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अब जीवन की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। अब केवल व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन और देश के प्रति जिम्मेदारी भी थी। वर्ष 2023 में मैंने विभागीय लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दैट इज LDC उत्तीर्ण कर असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी के पद पर पदोन्नति प्राप्त की। वर्तमान में मैं सशस्त्र सीमा बल 24वीं वाहिनी रंगिया असम में बतौर सहायक कमांडेंट अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं।
0: तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट तक का जो आपका सफर है वो कैसा रहा, और इससे पहले कि आप उत्तर दें मैं कुछ मैसेजेस भी पढ़ लेता हूं जो हमारे पास आ रहे हैं देश भर से। और सबसे पहले ये मैसेज जिनका आया है वो है यश शिंदे, मुंबई से लिख रहे हैं, और प्रोग्राम के बारे में उनकी प्रतिक्रिया ये है कि उन्हें ये प्रोग्राम आपकी आवाज़ और आपके विचार सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। शांताचारा बदीगर कोकानूर देवनागरी से संदेश टू सोल्जर्स की तारीफ करते हुए लिख रहे हैं कि वो याद दिलाते हैं ये प्रोग्राम की सर्विस सैक्रिफाइस ड्यूटी हमारे ब्रेव सोल्जर्स की जो हमारे इस भारतवर्ष को गार्ड कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। और प्रभावित होते होते BK दत्त हमें नई दिल्ली से मैसेज लिख रहे हैं, अनमोल राय छपरा बिहार से हमें मैसेज लिख बैठे हैं, और आकाशवाणी का धन्यवाद दे रहे हैं चेतन पटेरिया ग्वालियर से, राजकुमार संतानी एक मैसेज लिख रहे हैं, मोहन चंद्र जोशी ने अपना एक मैसेज हमारे तक पहुंचाया है, और एक और मैसेज हमारे पास आया है जो मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ पर। सैयद सर के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, अस्सलाम वालेकुम सर, हमें ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, और स्वर रोड मुरसेना डिस्ट्रिक्ट रामपुर UP से मैसेज आया है, और गुलाफशा इदरिसी जीनत और नाजिया शाजिया के साथ ये मैसेज हम तक पहुंचा है। कोकानूर से भी एक मैसेज आया है जिसको हम पढ़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम में वार्ता सुनकर हमें लग रहा है कि SSB कितना महत्वपूर्ण और बड़ा काम कर रही है। अमेरिका से एक मैसेज आ गया हमारे पास, एंड ऑफ कोर्स वो कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, नाम लिखा नहीं है तो हम नाम ले नहीं पाएंगे। सूरज कुमार शेखुपुरा बिहार से हमें मैसेज लिख रहे हैं, SSB को सैल्यूट दे रहे हैं, SSB कमांडेंट साहब को संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम का नियमित श्रोता, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से विजय कुमार विश्वनाथन का प्रणाम, बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं आपकी गैलेंट्री अवार्ड के लिए। सैनिकों का जज्बा जो है उनकी शौर्य गाथा पर ये केंद्रित प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, संतोष श्रीवास्तव को

0: पसंद आ रहा है जो प्रयागराज ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में प्रोग्राम्स करते हैं. सुरेश कुमार 68 बटालियन एसएसबी मणिपुर LNO ड्यूटी कर रहे हैं सर, और LNO ड्यूटी के लिए कुछ टिप्स बताइए, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं क्या? ASI सुरेश कुमार आपसे परिचित है, एसएसबी के ही हैं
1: जी बिल्कुल.
0: तो वो कह रहे हैं कुछ टिप्स बताइए. LNO
1: LNO बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी होता है.
0: ओके
1: अभी आप जानते हैं मणिपुर की सिचुएशन थोड़ी सी मतलब गड़बड़ाई हुई है, और वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस जो रेगुलर फोर्सेस वहाँ तैनात हैं उसके अलावा अभी वहाँ पे तैनात की गई है ताकि सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा सके. मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आपको जो ड्यूटी आपकी कंपनी कमांडर के द्वारा या जो एडहॉक कमांडेंट आपके हैं वहाँ पे उसके द्वारा लगाई गई है, या अभी हमारे 68 बटालियन वहाँ पे बेसिकली उनका KLP वहाँ पे रिलोकेट हो गया है, तो अभी 68 बटालियन की लगभग सभी वाहिनियाँ मणिपुर में हैं. मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो आपको ड्यूटी दिया जाए दी जाती है उस ड्यूटी को आप बहुत ही सतर्कता के साथ में और विजिलेंट होकर के करें, और किसी भी अनटूवर्ड स्थिति के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, और साथ ही साथ स्थिति को समझें और सिचुएशन की डिमांड को देखते हुए एक्शन लें. और जो आपके सीनियर हैं, जो आपके जस्ट सीनियर हैं, जो आपके सुपीरियर हैं, उनके जो ऑर्डर्स प्रॉपर फॉलो करें, और जो ट्रेनिंग में आपने सीखा है उस ट्रेनिंग को वहाँ पे जो है पूरी तरीक़े से उतारें, और आपकी अपने आप ही जो ड्यूटी है वो परफेक्ट हो जाएगी.
0: बहुत अच्छे विचार आपने शेयर किए हैं यहाँ पे, और बहुत सारे लोग हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं. मानसी महास्कर अंधेरी मुंबई से उनमें से एक हैं, और आपको दिल से वो बधाइयाँ दे रही हैं. कह रही हैं कि आज के मेहमान अफसर सर और सब दलों के फौजी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, और मैं हमेशा सुनती हूँ प्रोग्राम, एंड ऑफ कोर्स वो अपने भाव भले ही व्हाट्सएप के ज़रिए चार लाइनों में ही व्यक्त कर रही हूँ, लेकिन इन चार लाइनों के पीछे ढेर सारा प्रेम हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, एंड ऑफ कोर्स फॉर द ग्रेट नेशन दैट वी लिव इन.

0: तो हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, एंड ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें. तो सबसे पहले उसी सवाल को मैं दोहरा रहा हूँ असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर की, सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट तक का जो आपका सफ़र था वो कैसा था?
1: जी, यह सफ़र मेरे लिए निरंतर लर्निंग्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सफ़र रहा है। मैंने एसएसबी में अपने कैरियर की शुरुआत सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री के रूप में की और आज असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। समय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्वरूप बदलता गया। एक जूनियर रैंक्स में आपका फोकस मुख्य रूप से अपनी असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रोफेशनली पूरा करने पर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको अपने साथ काम करने वाले कार्मिकों की सेफ्टी, उनका मोरल, डिसिप्लिन और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इस सफ़र ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाई। लीडरशिप का अर्थ केवल

0: आगे रहना नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर अपनी टीम के लिए आगे खड़ा होना भी लीडरशिप है।
1: सशस्त्र सीमा बल, जितनी भी तारीफ हम करें शायद शब्द कम पड़ जाएं। जानते हैं कि साल 2013 में सशस्त्र सीमा बल पर एक पोस्टल स्टैंप इशू किया गया था, और वहां पे भारत की वो सरहद जहां पर बर्फीली चट्टानों के बीच में हमारे जाबाज सैनिक सुरक्षा का वो दायित्व संभालते हैं, एक कवच पहनते हैं, भारत मां का दिया हुआ वो कवच उस यूनिफॉर्म के रूप में। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, हर प्रांत, हर जगह में सशस्त्र सीमा बल लगभग हर जगह अपनी सेवाएं हमें देती हैं। और इस सशस्त्र सीमा बल में लीडर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो यहां हमारे साथ स्टूडियो में जो बैठे हैं असिस्टेंट कमांडर सैयद अफसर, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके अनुसार एक अच्छा लीडर कौन होता है।
0: जी बिल्कुल, लीडर्स की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। जो मेरे लिए है मैं बताना चाहूँगा, मेरे विचार से अच्छा लीडर वह होता है जो अपनी टीम को केवल आदेश ना दे बल्कि उन्हें समझे। एक लीडर को अपने कार्मिकों की कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशंस दोनों को समझना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, लीडर को अपने एक्शन से एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अगर आप अपनी टीम से कमिटमेंट की अपेक्षा करते हैं तो आपको भी उतना ही कमिटेड होना चाहिए।
1: वाह, और बहुत कम समय बचा है, लगभग हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, तो अपने श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप नंबर है जो मैं आपको दोबारा शेयर कर रहा हूँ, आप अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर है 9868107070, 9868107070। असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ और मैं आपसे बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा चीज़ों को हमने बहुत सीरियसली लिया, लेकिन हमारे देश के युवा भी हैं जो शायद कोई मार्गदर्शन चाह रहे हों। अगर उन युवाओं के लिए मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी ज़ुबानी, सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर की ज़ुबानी, अगर कोई मैसेज उन यंग लोगों तक पहुंचाया जाए तो क्या होगा?
0: जी बिल्कुल, मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि अपने कैरियर का चुनाव केवल सैलरी या स्टेटस के आधार पर ना करें। ऐसा प्रोफेशन चुनें जिसमें आपकी रुचि हो और जिसमें आप समाज और देश के लिए मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकें। अगर कोई युवा यूनिफॉर्म सर्विस में आना चाहता है तो उसे फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और प्रिजर्वेंस पर भी काम करना चाहिए। फेलियर्स आए तो उनसे सीखें, लेकिन अपने लक्ष्य को ना छोड़ें।
1: आज से अगर 14 साल पहले थोड़ा पीछे जाएं, साल 2012 में, तो 2012 के सईद अफसर और आज के अफसर जो हमारे सईद अफसर साहब हैं, उनसे अगर वो दोनों पर्सनालिटी मिलें तो 2026 के सईद अफसर 2012 के सईद अफसर से क्या कहेंगे? कुछ ऐसे ही भाव जो आपने युवाओं के लिए कहे?
0: जी बिल्कुल, मैं 2012 के सईद अफसर से कहना चाहूँगा कि अपनी मेहनत और अपने उद्देश्य पर विश्वास बनाए रखो। आगे रास्ते में कई चैलेंजेस आएंगे, कई बार परिवार से दूर रहना पड़ेगा और कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स और अपने ड्यूटी से कंप्रोमाइज़ मत करना, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सफलता का श्रेय अकेले खुद को मत देना। जिन लोगों ने आपके सफर में आपका साथ दिया है उन्हें हमेशा याद रखना।
1: और आकाशवाणी ने भी तो आपका बहुत साथ दिया है, मेरे ख्याल से आपकी फोर्स में बहुत सारे लोग जो बहुत डिफिकल्ट टेरेन में होंगे, क्या मतलब पहले तो बहुत सारे लोग खुले तरीके से आकाशवाणी को चला के रेडियो सुनते थे, आपका आकाशवाणी के साथ वो रिलेशन और

0: जो आपके जो आपके बटालियन हो या आपके ग्रुप के जो लोग हैं, आकाशवाणी के प्रति उनका भी एक भाव होगा, जुड़ाव होगा, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। देश की सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात फोर्सेस की जिम्मेदारी नहीं है, राष्ट्र निर्माण में हर नागरिक की अपनी भूमिका है। मैं विशेष रूप से युवाओं से कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और हार्डवर्क को महत्व दें। जो युवा यूनिफॉर्म फोर्सेस में आने का सपना देखते हैं, वे पूरे समर्पण के साथ तैयारी करें और कठिनाइयों से कभी ना घबराएं। मेरे लिए राष्ट्र सेवा केवल एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि एक कमिटमेंट है, और पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मेरे लिए उस कमिटमेंट को और मजबूत करने की प्रेरणा है।
0: संदेश टू सोल्जर्स में समय निकलता जा रहा है बहुत ही जल्द, हमें इस प्रोग्राम का आज समापन करना पड़ेगा, लेकिन चलते चलते वो लोग जो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं व्हाट्सएप, जिनसे मैंने मंगाया है, उनके नाम मैं अपने ही अंदाज में लेना चाहूँगा। मंसूर अली बीकानेर से हमारे को मैसेज भेज रहे हैं, साथ ही साथ SHQ बोंगाई गाँव CTGD पार्था बर्मन, शायद ये भी SSB से ही हैं, इन्होंने हमें मैसेज भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया ये मैसेज भेजने के लिए। जय हिंद सर। नाम अपना नहीं लिखा, हाँ सौरभ कुमार हमें मैसेज भेज बैठे हैं, 16वीं बाहिनी SSB से स्वागत, बंधन अभिनंदन संचार शाखा से, ये आपके लिए मैसेज आया है। एंड ऑफ कोर्स सौरभ हिमाचल प्रदेश से हमें मैसेज भेज चुके हैं, जय हिंद कहते हुए वो कह रहे हैं कि एक नए योद्धा है 73rd वाहिनी सशस्त्र सीमा बल सेंथुक में, नहीं टाटा योद्धा के आगमन के अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना का आयोजन किया है, सर को बता दीजिए। जय हिंद सर। बहुत कम समय बच गया है, हमें ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो पे आए, अपने भाव शेयर किए, और वो गैलेंट्री अवार्ड मेडल मैं देख पा रहा हूँ और मेरे अंदर बहुत ही इमोशन आ रहा है जो मैं व्यक्त नहीं कर सकता, और उन मेडल्स को देख के मैं यही कह सकता हूँ दैट आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: थैंक यू सो मच।
0: और यहीं पे हम संदेश टू सोल्जर्स से आप सभी लोगों से विदा लेते हैं, आशा करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।
1: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे अभिजीत और श्रेया घोषाल की आवाजों में बेशरम फिल्म का गीत। राजीव बेरीवाल के बोल थे, ललित पंडित का संगीत निर्देशन था। कार्यक्रम की पेशकश अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से। आवाजें आतिफ असलम और अलीशा चिनाई की।

आतिफ असलम और अरशद चिनॉय की आवाज़ों में आप सुन रहे थे अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था आशीष पंडित ने और संगीत तैयार किया था प्रीतम ने। फिल्म संगीत आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम की अगली पेशकश राहत फतेह अली खां की आवाज़ में। फिल्म का नाम है मौसम। गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीत प्रीतम का है।

राहत फतेह अली खां की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे मौसम फिल्म से इरशाद कामिल की रचना, संगीत निर्देशन था प्रीतम का। फिल्म संगीत की अगली पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गली गली चोर है से, आवाज़ ममता शर्मा की है, स्वानंद किरकिरे की रचना, अनु मलिक का संगीत निर्देशन।

तो अभी आप सुन रहे थे ममता शर्मा की आवाज़ में गली गली चोर है फिल्म का गीत। स्वानंद किरकिरे की रचना थी, अनु मलिक का संगीत निर्देशन था। और अब आइए सुनते हैं शालमली खोलगड़े और मोनाली ठाकुर के युगल सुरों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत निर्देशन है। फिल्म का नाम है अय्या।

0: शाल मलिक होलगड़े और मोनाली ठाकुर की आवाजों में अय्यर फिल्म का किताब सुन रहे थे। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत निर्देशन था। फिल्म संगीत की अगली और आखिरी पेशकश शाम के रेडियो सेट पर।
1: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले उबम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे, अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब। शम्मा हूँ नई नई, जलूंगी सारी रात।
0: शाल मलिक होलगड़े की आवाज में वेलकम टू कराची फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे शर्मली खोलगड़े की आवाज़ में वेलकम टू कराची फिल्म का यह गीत। इस एक साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त हो।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को अरविंद कुमार का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी भर एक ही किताब की तरह, कभी कोई पन्ना बहुत खूबसूरत होता है तो कभी कोई पन्ना ऐसा भी आता है जिसे पढ़ते हुए मन ठहर सा जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, एक कठिन पन्ना पुरानी उस पूरी किताब की तरह नहीं होती है। आज की बात इस विश्वास से शुरू करते हैं। आज 10 सितंबर है, हमारे लिए दो महत्वपूर्ण अवसर लेकर आया है ये दिन। एक ओर हम याद कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी, कुशल प्रशासक और राष्ट्र निर्माता पंडित गोविंद वल्लभ पंत को, और दूसरी ओर आज है विश्व आत्महत्या निरोध दिवस। एक ऐसा दिन जो हमें जीवन की कीमत समझने और संकट में घिरे व्यक्ति तक संवेदना का हाथ बढ़ाने की ओर प्रेरित करता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत की। दोस्तों, 10 सितंबर सन 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र में जन्मे गोविंद वल्लभ पंत स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण सेनानियों में रहे हैं। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, जेल यातनाएं सही और स्वतंत्र भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंत जी का जीवन हमें क्या सिखाता है, आइए बात करते हैं। दोस्तों, यही कि बड़ी उपलब्धियां अचानक नहीं मिलती, उनके पीछे होता है संघर्ष, धैर्य, अनुशासन और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास। आज के युवाओं के लिए पंत जी का यही जीवन इसलिए भी प्रेरणादायी है कि उन्होंने परिस्थितियों को अपनी राह का अवरोध नहीं बनने दिया। तो युवा साथियों, अगर अपने सामने, आपके सामने कोई यदि कठिनाई होती है, कोई परीक्षा है, कोई असफलता है या कोई सपना अभी अधूरा है, तो रुकिए नहीं, संघर्ष से घबराइए मत, क्योंकि कई बार रास्तों की मुश्किलें ही हमें हमारी मंजिल की योग्य बनाती हैं। और अब बात उस विषय की जिस पर बात करना आज बेहद जरूरी है, विश्व आत्महत्या निरोध दिवस। श्रोताओं, कभी कभी हमारे आसपास कोई व्यक्ति बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वो बहुत गहरे तनाव, अकेलेपन और निराशा से गुजर रहा हो सकता है। ऐसे में हमें सिर्फ ये पूछने की जरूरत नहीं कि तुम ठीक हो, बल्कि जरूरत है ये कहने की कि अगर मन में कुछ है तो मुझसे कहो, मैं सुनने के लिए हूं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आत्महत्या की रोकथाम के लिए खुलकर और संवेदनशीलता के साथ बातचीत करना महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 में इस अभियान का संदेश भी है, कथा को बदलें, बातचीत शुरू करें। तो आइए हम अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाएं जहां किसी व्यक्ति को अपनी परेशानी बताने में शर्म ना आए। अगर आपका कोई मित्र लगातार उदास दिखाई दे, लोगों से दूर रहने लगे, निराशा व्यक्त करे या जीवन को लेकर बेहद नकारात्मक बातें करें, तो उसे अकेला न छोड़ें, उसकी बात ध्यान से सुने और आवश्यकता होने पर परिवार, किसी विश्वसनीय व्यक्ति या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करें। और अगर आप स्वयं किसी कठिन मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं है। आपकी जिंदगी मूल्यवान है, आपकी कहानी अभी बाकी है, मुश्किल समय स्थायी नहीं होता। दोस्तों,

आज पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती हमें संघर्ष और संकल्प का संदेश देती है, वहीं विश्व आत्महत्या निरोध दिवस हमें संवाद, संवेदना और जीवन के प्रति आशा का संदेश देता है। तो आज का एक छोटा सा संकल्प लें, किसी की परेशानी का मजाक नहीं उड़ाएं, किसी को उसकी असफलता से नहीं आंकेंगे, और जब कोई दिल की बात कहना चाहेगा तो हम उसकी बात सुनेंगे भी और समझेंगे भी। आइए, एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? एक कदम बढ़ाइए, मैं तुम्हारे साथ हूं, और एक विश्वास जगाइए, ये समय भी गुजर जाएगा। इसी उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आइए सुनते हैं एक ये बहुत ही मीठा और संदेशप्रद संगीत फिल्म से अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाजों में संतोष

0: अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में संगीत फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। संतोष आनंद के बोल थे, नरेश शर्मा का संगीत निर्देशन था। यहाँ पर रुकेंगे अल्प विराम के लिए, इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे एक साक्षात्कार।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: कार्यक्रम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। अब आइए आपको सुनवाते हैं साक्षात्कार, राष्ट्रीय लोक अदालत, उद्देश्य एवं लाभ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा की सचिव अनीता सिंह से बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
3: श्रोताओं नमस्कार, आपसे मिलिए कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं अनीता सिंह जी जो सचिव हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा में। राष्ट्रीय लोक अदालत जो एक साधन है जन सामान्य को न्याय पाने में सुगमता से, आसानी से, सस्ता न्याय मिल सके, इसके लिए लोक अदालतें लगाई जाती हैं, हर माह लगाई जाती हैं। तो और क्या इसके उद्देश्य हैं, कैसे इस प्रक्रिया में हम शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है, इनके निर्णयों की क्या वैधता है और एक व्यक्ति कैसे इसका लाभ पा सकता है, ये आज हमारे सामान्य प्रश्न है। मैडम आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
4: नमस्कार
3: जी। तो ये जो लोक अदालतें लगाई जा रही हैं, इसमें इनके पीछे अगर हम उद्देश्य जानना चाहें एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहा है व्यक्ति, वो कैसे इससे जुड़ सकता है, इस पर थोड़ा सा बताइए कि इनके पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है।
4: लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो इस समय मतलब जो लंबित मामले हैं वो बहुत अधिक संख्या में हैं। पूरे देश में इस चीज की एक व्यापक स्तर पर पहल चल रही है। ये पहल माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरुआत की गई और आज तक ये चलती आ रही है। इसका मुख्यतः उद्देश्य यह है कि ताकि मामले को आपसी समझौते के आधार पर और सुलह के आधार पर निस्तारित किया जा सके, ताकि लोग कम समय में और शीघ्रता से न्याय प्राप्त कर सकें।
3: जी जी।
4: और जो मामले लंबित हैं उनको हम जैसे कि प्रति हम जान रहे हैं कि यहाँ पर एक रेशियो नहीं बन पा रहा है कि एक जज के पास कई मामले हैं, मतलब पेंडेंसी हजारों की, 10,000 की पेंडेंसी एक जज के पास है, जो मामले वो निस्तारित नहीं कर पा रहे। और छोटे मामले जो शमनीय प्रकृति के मामले हैं, इतने मामलों के लंबित होने के कारण उन पर ध्यान भी नहीं जा पाता कई बार। तो इसीलिए इस एक ये एक ऐसा अवसर है जिस पर आप स्वयं उपस्थित होकर अधिक से अधिक संख्या में मामले को निस्तारित करा सकते हैं और आपसी सुलह समझौते के आधार पर, और ऐसे

0: मामले जिनको आप बैठ कर आसानी से निस्तारित करा सकते हैं उनको इसमें शामिल किया
1: मतलब
0: जाता है।
1: एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से जो अदालतों में समय लग रहा है, अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं, तो उसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भाई मेरी और सामने वाले की सहमति बन
0: जी
1: सकती है, तो
0: बिल्कुल
1: हम क्यों ना
0: बिल्कुल
1: इसको जो है अपनी
0: जी
1: आपसी सहमति से।
0: जी
1: तो इसमें
0: बिल्कुल
1: क्या प्रक्रिया क्या रहती है, वो अदालत में जाके इसकी एक आवेदन करता है इसमें?
0: नहीं, उस दिन ऐसा होता है किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं होती। आप
1: जी
0: वहां जाकर पता करिए कि हमारा ये जो है मामला है जिस संबंधित कोर्ट में, जैसे मान लीजिए इसमें, मैं पहले इससे पहले बताना चाहूंगी कि
1: जी
0: कैसे मामले इसमें
1: जी
0: शामिल
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: तब के
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: इसमें सभी प्रकार के जो आपराधिक मामले जो शमनीय प्रकृति के हैं, शमनीय प्रकृति से मतलब जो केवल 2 साल तक के अपराध से संबंधित हैं, वो सभी मामले इसमें शामिल हो जाते हैं।
1: जी
0: इसके अलावा चेक बाउंस एनआई एक्ट से संबंधित मामले, बैंक रिकवरी से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकरवाद से संबंधित मामले, श्रमराज से संबंधित मामले, बिजली व नल बिल से संबंधित मामले, वैवाहिक पारिवारिक मामले, भूमि भूमि से रिलेटेड मामले और सेवानिवृत्ति के परिलाभों से संबंधित मामले, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद और वैवाहिक प्रकृति के सभी वाद इसमें
1: जी
0: शामिल हैं।
1: मतलब जो छोटी छोटी चीजें जीवन में जो आती
0: हाँ,
1: हैं कि हम
0: कठिनाइयाँ आ
1: गए,
0: रही
1: हमारा
0: हैं।
1: चालान हो गया तो वो
0: हाँ
1: पेंडिंग पड़ा
0: हाँ
1: हुआ
0: हाँ
1: है,
0: वो
1: परिवार में कोई हो
0: परिवार
1: गया
0: के
1: या कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उसमें
0: जी
1: एक्सीडेंटल
0: जी
1: केस
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: बहुत सारी पॉलिसीगत चीज़ें होती हैं, तो डे टू डे की जो जीवन में चीज़ें उठती हैं और लीगल
0: जी
1: रूप ले
0: जी
1: लेती हैं, उनका हम इसमें
0: इसमें
1: समाधान
0: समाधान करते
1: कर
0: हैं।
1: सकते हैं। उसमें उसकी बात कर रहे थे कि प्रक्रिया क्या रहती है
0: हाँ,
1: इसमें। जी
0: ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत है प्रत्येक 3 महीने में आयोजित की जाती है।
1: जी
0: वर्ष में 4 लोक अदालतें आयोजित होती हैं। ये हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को ये बहुत अच्छा एक अवसर है कि वो इसका लाभ ले सकता है कि प्रत्येक 3 माह में ये राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाती है व्यापक स्तर पर। और साथ ही प्रक्रिया इसमें ये है कि अगर आप जैसे सुगमता से चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले उस न्यायालय में जिसमें आपका मामला लंबित है उसमें लोक अदालत से 1-2 दिन पहले चले जाइए, वहां प्रार्थना पत्र दे दीजिए, तो आपका मामला जो है वो लोक अदालत वाले दिन
1: वहां पर वहां
0: लगा दिया
1: सूचीबद्ध हो
0: जाए,
1: जाएगा।
0: सूचीबद्ध हो जाएगा। और अन्यथा की दशा में भी अगर यदि आपके पास समय नहीं है तो आप उस दिनांक पर जाइए और दोनों पक्ष यदि समझौते के लिए तैयार हैं, जैसे सिविल मामले संबंधित मामला है
1: जी जी
0: तो दोनों पक्ष जो परिवादी और प्रतिवादी हैं वो दोनों न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों और ये अपना कथन देते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें कि हम समझौते के आधार पर अपना मामला निस्तारित कराना चाहते हैं
1: कराना
0: और
1: चाहते।
0: ये हमारी शर्तें और हम दोनों को मंजूर हैं। तो उस डेट पे यदि वो फाइल लगी भी नहीं है तब भी, सबसे अच्छी बात यह है कि उस डेट पर वो फाइल हो भी ना तब भी कोर्ट उस डेट पे उस फाइल को निस्तारित कर सकती
1: अगर
0: है।
1: आप गए हैं तो
0: तो
1: आपके
0: आपके
1: साथ कोर्ट
0: समझौते,
1: खड़ा
0: हाँ,
1: हुआ
0: खड़ा
1: है,
0: है।
1: खड़ा हुआ है।
0: और सबसे अच्छी बात यह है कोर्ट उस दिन आपके लिए प्रॉपर, मतलब कोई बीच अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे भी जाते हैं तो भी आपकी बात सुन ली जाएगी।
1: जी।
0: जी
1: तो वो जो निर्णय होता है आपसी सहमति से, हमने वहाँ सूचीबद्ध कराया या उस दिन चले गए, सहमति पत्र दे दिया, फिर वो एक तरह से जो जजमेंट होता है वो लिखा जाता है, उसकी वैधता बनी
0: जी जी
1: उतनी
0: जी
1: है जितना कोर्ट में होती है।
0: जी बिल्कुल, जो ऑर्डर होता है उसकी वैधता वही है जो एक ऑर्डर न्यायालय द्वारा किया जाता है। और साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि उस ऑर्डर की अपील नहीं होती है, उस
1: क्योंकि आपसी सहमति से
0: आपसी
1: वो
0: सहमति से होता है, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती। और
1: हाँ
0: जो मामले उस दिन निस्तारित होते हैं उसकी कोर्ट फीस भी जो होती है वो भी आपको
1: वो
0: वापस मिल जाती है। जैसे
1: माँ
0: मान लीजिए कोई सिविल मामला उस दिन आपसी सहमति के आधार पर निस्तारित होता है तो लोक अदालत में जो मामले निस्तारित हो रहे हैं उसके बाद आप प्रार्थना पत्र देते हैं उसी न्यायालय में, तो न्यायालय आपका कोर्ट फीस
1: माफ कर
0: माफ
1: देगा,
0: कर देता है
1: माफ
0: और वो
1: कर
0: कोर्ट फीस आपकी वापस हो
1: जी।
0: जाती है।
1: तो इतनी अच्छी प्रक्रिया और बरसों से चल रही है, और आपने कहा कि हर साल में 4 बार ये होता है, 3 महीने में एक बार ये मौका आता है, व्यक्ति मतलब सुगमता से भी मिल रहा है, सरलता से भी मिल रहा है, बिना फीस के मिल रहा है, आपसी सहमति से मिल रहा है, तो व्यक्ति इसका लाभ लेने में चूक कहाँ हो रही है? कोई ये मतलब कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, व्यक्तियों तक ये मैसेज अभी पहुँच नहीं पा रहा, बावजूद इसके कि आप लोग बहुत इसका कोशिश कर रहे हैं, और अब हम देखते हैं कि शहर में भी जो जो भी चौराहे हैं, जो भी वो हैं, वहाँ लाउडस्पीकर से सूचनाएं होती रहती हैं, तो एक व्यक्ति के मन में क्या है कि वो इस इन चीज़ों का लाभ क्यों नहीं ले पा रहा है इसमें?
0: जी बिल्कुल, हम मतलब ये जो लोक अदालत है वो प्रशासन और न्यायपालिका के सम्मिलित प्रयासों से आयोजित की जाती है, और जिसमें व्यापक स्तर पर मामले निस्तारित किए जाने के लिए हम समय समय पर प्रॉपर

0: व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भी करते हैं। साथ ही हम सोशल मीडिया आजकल चल रही है उस पर भी, और प्रिंट मीडिया, अन्य मीडिया जो
1: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हाँ जी
0: इलेक्ट्रॉनिक
1: जी
0: मीडिया साधनों से हम प्रॉपर प्रचार प्रसार करते हैं, फिर भी ना जाने क्यों ऐसा रह जा रहा है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि कई बार मतलब कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लोगों को नॉलेज नहीं होती, या लोगों को नॉलेज होती है तो मतलब कहीं ना कहीं एक पक्ष
1: वो एक झिझक
0: अधिवक्ता
1: सी
0: गण,
1: है।
0: हाँ झिझक
1: हाँ
0: सी गण, झिझक
1: हाँ
0: है। और थोड़ा सा अधिवक्ता गण को भी हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी अधिवक्ता गण हैं वो अपनी पार्टीज को मतलब समझाएं और इसके लिए प्रोत्साहित करें
1: प्रोत्साहित कर रहे
0: कि वो
1: हैं।
0: समझौते के आधार पर मामले निस्तारित करें। कई बार ये होता है कि मिसकम्युनिकेशन, या मतलब जो भी मामला निस्तारित भी होना चाहता है, लेकिन अधिवक्ता कई बार इस तरीके से प्रयास करते हैं कि
1: कि
0: वो
1: वो और लंबा
0: और
1: चले।
0: लंबा चल जाए,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: मतलब वो चीज़ पेंडिंग रह
1: तो एक
0: जाती है।
1: व्यक्ति को
0: तो
1: अपने इतनी ये
0: मतलब
1: समझना चाहिए कि
0: समझना
1: अधिवक्ता भी हमें
0: चाहिए
1: कहीं ऐसा तो नहीं कि
0: नहीं
1: गलत
0: कि
1: सलाह की
0: हाँ,
1: तरफ ले जा रहे हो।
0: और ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी मीडिएशन में भी हम
1: हाँ
0: रेगुलर जो विधिक सेवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है यहाँ
1: जी
0: पर, एक इसके साथ एक और सुविधा मैं यहाँ आज बताना चाहूँगी इस
1: जी
0: आपके माध्यम से, कि हमारे यहाँ एक कार्यक्रम और आयोजित किया जा रहा है कि 3.0, जिसके मध्यस्थता अभियान 3.0, जिसमें हम रेगुलर बेसिस पर समझौते के आधार पर मामले निस्तारित कर रहे हैं, जिसमें आप डेली आप जिस न्यायालय में आपका मामला लंबित है उस न्यायालय में जाके आप प्रार्थना पत्र देंगे, वो मामला विधिक सेवा प्राधिकरण में आएगा। और हमारे यहाँ अधिवक्ता जो मीडिएटर हैं वो भी अधिवक्ता हैं, वो भी समझौते के आधार पर मामले निस्तारित कराते हैं। और कई हमारे यहाँ करीब 14 अधिवक्ता से अधिक अधिवक्ता हैं
1: जी
0: जो
1: जी
0: इस मामले मतलब रेगुलर बेसिस पर हम बैठते हैं, मतलब उनकी बेंच बैठती है। 4 अधिवक्ता हमारे यहाँ रेगुलर बेसिस पर हैं, हर हर रोज़ बैठते हैं और वो इसको समझौते के आधार पर मामले निस्तारित करा रहे हैं। तो बस मैं शायद लोगों तक ये नॉलेज नहीं पहुंच पा रही है, या कहीं
1: मतलब ये
0: कहीं बीच में
1: सिर्फ
0: गैप है
1: 3 महीने
0: जिसके,
1: की बात नहीं,
0: हाँ
1: रोजाना भी इसका लाभ ले
0: रोजाना भी
1: सकते
0: इसका हो रहा है लाभ। कि मतलब
1: हैं।
0: आपको ये भी नहीं, अब तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में ये जो व्यवस्था चल रही है इसका आप लाभ रेगुलर बेसिस पर ले सकते हैं, और इसका व्यापक प्रचार प्रसार हम सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से कर भी रहे हैं। फिर भी मतलब
1: मतलब जागरूकता आएगी
0: और
1: और हम
0: एक
1: समझते हैं कि
0: समस्या शायद मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों मामले को खींचने की बजाय प्रोत्साहन के लिए हम कहेंगे कि मामले को खींचने की बजाय और अपना समय और न्यायालय मतलब समय बर्बाद करने और अपना पैसा बर्बाद करने की जगह अगर मध्यस्थता के माध्यम से 16 समझौते के आधार पर मामला निस्तारित करते हैं, तो एक बहुत अच्छी पहल है जो समाज को एक अच्छे उस पर ला सके,
1: हाँ,
0: खड़क
1: कम
0: पायदान
1: से
0: पे
1: कम
0: लाके खड़े
1: समाज
0: कर
1: में
0: सके।
1: हम रह रहे हैं तो समरसता आ जाए,
0: हाँ
1: सहनशीलता आ जाए, हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे के पक्ष को भी समझें।
0: जी
1: कई
0: जी
1: बार लेने की बजाय देने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
0: जी
1: तो न्याय की उसमें अवधारणा में भी यही है कि अगर दे के शांति हो जाती है तो उसको हम जो है ले लेना हमारे लिए बेहतर है। इसमें आपने जो डे टू डे की प्रतिदिन की बताई, तो ये कहाँ आपका विधिक सेवा प्राधिकरण का जो कार्यालय वहाँ पे ये
0: वहीं
1: लगती है?
0: वहीं पर आयोजित हो
1: जी
0: रही है ये, मतलब आप लेकिन इसके लिए आपको प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय में देना
1: न्यायालय
0: है।
1: में देना है कि
0: आप
1: मैं
0: संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र दीजिए कि हम अपने मामले को समझौते के आधार पर मध्यस्थता के माध्यम से निपटारा कराना चाहते हैं, तो आपकी पत्रावली
1: जी
0: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेज दी जाएगी और वहाँ पर हमारे अधिवक्ता द्वारा समझौते के आधार पर दोनों पक्षकारों को बुलाया जाता है। उसके बाद समझाया जाता है कि मतलब समझौते के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, और दोनों पक्ष जब समझौता करना चाहते हैं तो वहां पर हम कई मामले हमारे यहाँ निस्तारित हो भी रहे हैं।
1: जी। तो श्रोता बंधुओं, ये बात हम कर रहे थे राष्ट्रीय लोक अदालत जो 12 सितंबर शनिवार को लग रही है, एक त्वरित, सस्ता, सुलभ और ऐसा न्याय जो एक नागरिक का नैतिक अधिकार भी है। अगर आप भी किसी कारण से न्यायालय में आपका कोई केस लंबित है और सहमति बना पाते हैं तो आप जरूर फायदा उठाएं। 12 सितंबर को नहीं है तो जैसा अनीता जी ने बताया कि प्रतिदिन भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अब ये सुविधा मिल रही है, तो हम एक सहमति का वातावरण अगर समाज में बनाते हैं, परिवार में बनाते हैं, कोई भी बात हो अगर हम उसको निपटा लेते हैं तो जीवन में बहुत बड़ी शांति लेकर के आ सकते हैं। कुछ और चलते चलते कहना चाहेंगे मैडम?
0: जी धन्यवाद। बाकी मैं नागरिकों से समस्त

0: तरह वासियों से अपील करती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में उस दिन उपस्थित हों और अपने इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में हमारा सहयोग प्रदान करें।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय लोक अदालत उद्देश्य एवं लाभ। अनिता सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा से बातचीत कर रहे थे ओपी सिंह। और अब आइए सुनते हैं ये गीत।

0: रेखा भारद्वाज की गाए डेली फिल्म के इसी गीत के साथ ही युववाणी कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। मुझे यानी अरविंद को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रहे हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
2: India's approach is rooted in वसुधैव कुटुंबकम, that is one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support

0: support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति शी 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से सोमवार तक राजधानी में ड्रोन और अन्य छोटे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत ये आदेश जारी किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक, उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने दूरदराज और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में भरोसेमंद बिजली विकल्प उपलब्ध कराने में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री नाइक ने आज भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी के पूर्वावलोकन कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में उल्लेखनीय बदलाव आया है। और खेलों में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। और भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में भी अपना स्थान पक्का कर लिया है। अब 12 सितंबर को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज संध्या 7:30 पर महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत बनाम बांग्लादेश के मध्य खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल क्रिकेट मैच का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आंखों देखा हाल हम आपको सुनवाएंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 6:15 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत देश हमारों के क्रम में सुनिएगा रमणीक स्थल धर्मशाला के बारे में जानकारी देंगे कैलाश कुमार कौशिक। भजनों पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन का प्रसारण किया जाएगा संध्या 6:30 पर। संध्या 6:50 पर

किसान श्रोता सुनेंगे, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

ये सभी कार्यक्रम आप FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सुन सकेंगे। संध्या 7:31 पर श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुनेंगे हमारे ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संकेत। रात्रि 8:20 पर देशगान प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिएगा बाजीराव मस्तानी फिल्म के कुछ गाने। रात्रि 9:15 पर सुहाने तराने कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कंट्री वाइड रात्रि 9:30 पर, इनसाइट्स रात्रि 9:45 पर। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे रूपक अनहद नाद, जिसके लेखक होंगे सोमदत्त शर्मा और प्रस्तुति भी सोमदत्त शर्मा की होगी। प्रसारण समय याद रखिएगा रात्रि 10 बजे। रात्रि 10:30 पर उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा विदुषी नैना देवी का दादरा और गजल गायन। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों के बारे में। हम अपने सुनने वालों को एक बार पुनः याद दिलाते हैं, आज संध्या 7:30 से महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत बनाम बांग्लादेश के मध्य खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल क्रिकेट मैच का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आंखों देखा हाल आप सुन सकेंगे। इस कार्यक्रम को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुन सकेंगे मैच की समाप्ति तक। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं देश गान।

जगा धरा का लाल कि अब क्यों सोएगा। समवेत स्वरों में अभी आप सुन रहे थे रमेश दत्त इंदु की ये देशभक्ति परख रचना। इसके साथ देशगान का ये कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है।

0: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत देह समारोह के क्रम में लीजिए सुनिए रमणीक स्थल धर्मशाला के बारे में जानकारी दे रहे हैं कैलाश कुमार कौशिक।
1: हमारा देश तीर्थन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानो जावे है। जा देश में अनेकन देवी देवतान ने अवतार लये, जाई वजह ते बहुत सी जगह प्रसिद्ध है गई, जैसे राम जन्म ते अयोध्या, कृष्ण जन्म ते मथुरा आदि। जी बात तो हमारे उत्तर प्रदेश की रही, कछु न कछु प्रमुख तीर्थ स्थल हरेक प्रदेश में है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में नगरकोट, कांगड़ा देवी, धर्मशाला, मनसा देवी, नैना देवी, ज्वाला देवी, चिंतपूर्णी देवी आदि। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिलो है। जा जिले में धर्मशाला एक बहुत ही रमणीक स्थल है। यहाँ पे बड़े बड़े सुंदर पेड़ पौधा बाग बगीचा है, जी प्राकृतिक सुंदरता जा नगर की शोभा में चार चांद लगावे है। और यहाँ के लोग बहुत ही सीधे और शांत स्वभाव के हुए हैं। धर्मशाला के आसपास कछु प्रमुख स्थान हैं, जैसे मैकलियोडगंज, सेंट जॉन्स चर्च, डल झील, धर्मकोट, करेरी, देहरा, गोपीपुर, त्रिलोकपुर।

पालमपुर आदि। धर्मशाला कांगड़ा घाटी के शहरन में ते एक प्रमुख स्थान हुए, जे धौलंधर पर्वत ते 18 किलोमीटर की दूरी पे बर्फ की चोटीन के पीछे कांगड़ा के उत्तर पूर्व में स्थित है। पर्वतन ने जा शहर को तीन ओर ते घेर रखो है। कांगड़ा घाटी जो के दक्षिणी दिशा में फैली हुई है, जा नगर में ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ और चाय के बाग बहुत बड़े क्षेत्रफल में लगे भये हैं। धर्मशाला समुद्र तल ते 1250 मीटर ते लेके 2000 मीटर की ऊंचाई पे है। यहाँ पे तिब्बतीन के कई प्रमुख मंदिर हैं। जा शहर को दो भागन में बांटो गया है, एक ऊपरी धर्मशाला दूसरी निचली धर्मशाला। निचली धर्मशाला को प्रमुख रूप से व्यापारिक केंद्र बनाया गया है। खान पान की सामग्री फल मेवा मिष्ठान आदि मुख्य रूप से जा स्थान पर मिले हैं। इतना ही ना अनाजन की बड़ी बड़ी मंडी जा स्थान में बनी हुई है। पूरे नगर के लोग यहाँ पे सामान खरीदवे और बेचवे के काजे आवे हैं। ये धर्मशाला को भाग आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान करे है। ऊपरी धर्मशाला पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जा में मैकलॉडगंज और फैसीदगंज अंग्रेजन के रहन सहन को दर्शावे हैं। इन स्थानन पर पर्यटन की रुकवे की अच्छी व्यवस्था है। बहुत से लोग तो दो दो तीन तीन महीना रहवे के काजे यहाँ पे जावे हैं। जा शहर के प्रमुख रूप से तिब्बतीन के स्तूप बने हुए हैं, जो के यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगावे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये नगर मध्यम वर्ग में आवे है। यहाँ को कुल क्षेत्रफल 5,739 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 11.5 लाख की मानी जावे है। यहाँ पे घूमे को उचित समय वैसे तो वर्ष भर हो गए पर मार्च से लेके जून तक और सितंबर से लेके दिसंबर तक बड़ो ही मनोहारी हो गए है। गर्मी के समय में यहाँ को तापमान 38 डिग्री तक पहुँच जावे है और जनवरी के दिनों में करीब 0 डिग्री है जावे। यहाँ पूरे महीना बर्फ पड़ती रहवे है और पहनवे के काजे सर्दी के मौसम में अच्छी किस्म के ऊनी कपड़ा खरीदने पड़े हैं। गर्मी के दिनों में जब बरसात हुए है और चाहे जब सर्दी पड़वे लगे, यहाँ बरसात उतनी ज्यादा मात्रा में हुए है। यहाँ की बरसात को आकलन किया जाए तो करीब 300 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर के बीच समझी जावे, जो के देश भर में दूसरे स्थान रखे है। यहाँ की प्रमुख भाषा हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी और पहाड़ी है। धर्मशाला के प्रमुख अंग माने जाने वाले प्रमुख शहर में मैकलॉडगंज, जाकी स्थापना सन 1850 ईस्वी के लगभग एक ब्रिटिश दुर्ग रक्षक के रूप में भई, जिस समुद्र तल ते 1770 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे अनेकन बड़ी बड़ी इमारत, बड़े बड़े होटल बने हुए हैं, जिनमें हजारन तीर्थयात्री ठहर सके हैं। जय शहर में पुरानी कलाकृतीन ते युक्त विलक्षण वस्तुन की दुकान है। इनको निर्माण यहाँ के लोग स्वयं करे हैं। जी यहाँ को एक प्रमुख व्यवसाय मानो जावे है। कलाकृतीन के अलावा विख्यात बहुत से तिब्बतीयन संस्थान हैं, जो जा जगह को महत्व प्रदान करावे हैं। मैकलॉडगंज से 1 किलोमीटर की दूरी पे तिब्बतीयन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स स्थित है, जाए टिप्पा के नाम ते जानो जावे है। जहाँ में पढ़ाई के लिए देश विदेश के हजारन की संख्या में लोग आवे हैं। धर्मशाला शहर के पास में रविवार के दिना एक हाट लगे है, जहाँ में घर गृहस्थ को जरूरी और छोटो बड़ो सामान उचित कीमतन पे मिले है। धर्मशाला के पास में तिब्बतीयन वैदिक और नक्षत्र ज्ञान संस्थान स्थित है, जहाँ संस्थान में वैदिक तथा नक्षत्र ज्ञान की विद्या प्रदान कराई जावे है। जहाँ संस्थान में विशाल पुस्तकालय और अनुसंधान इकाई केंद्र भी स्थित है। जहाँ कौतुक भंडार में उन चीजन की प्रदर्शनी लगाई जावे जो के तिब्बती औषधि

0: इनकू बनावे के काम आवे। धर्मशाला से 11 किलोमीटर की दूरी पे एक पुराना मंदिर है। यहाँ पे एक ताजे पानी को झरना लगा हुआ है, जाए भाग सुनाग झरना के नाम से जानो जावे है, जो के हर काउ पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करे है। धर्मशाला के पास में फोरसाइथ गंज और मैकलोड गंज के बीच में एक मरुस्थली क्षेत्र है, जहाँ में अद्भुत पत्थर से बना हुआ एक चर्च है, जाकु सेंट जॉन्स चर्च के नाम से जानो जावे है। चीड़ के वृक्षन की बड़ी बड़ी शाखान के नीचे ब्रिटिश के एक पदाधिकारी लॉर्ड इल्जन की समाधि बनी हुई है। लॉर्ड इल्जन की मृत्यु 1863 ईस्वी में धर्मशाला में भई हती। यहाँ पे एक कब्रिस्तान बना हुआ है। धर्मशाला से 11 किलोमीटर की दूरी पे पहाड़न की चोटी पे धर्मकोट नामक पिकनिक स्थल बना हुआ है। यहाँ ते कांगड़ा घाटी, पौंग धाम झील और धौलंधर पहाड़ी इनको बड़ी अच्छी तरह से विचित्र नजारे में देखो जा सके है। धौलंधर पहाड़ी के निचले सतह पे एक स्थान है, जाकू ट्रंड नाम ते पुकारा जावे है, जे हर समय बर्फ ते ढको रहवे है, जाकी ऊंचाई 1925 मीटर है, जे एक प्रमुख रूप ते पर्वतीय यात्रा को स्थल मानो जावे है। यहाँ पे ठहरवे की व्यवस्था वन विभाग द्वारा विश्राम ग्रहण में करी जावे है, पर पीवे को पानी यहाँ पे 2 किलोमीटर दूर ते लाया जावे है। धर्मशाला में या विश्राम ग्रहण ते सामान लाए के काजे मोटे मोटे रस्सान को प्रयोग करो जावे है। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर स्थान है, जाकू युद्ध स्मारक के नाम ते जानो जावे है, जी स्मारक धर्मशाला के प्रारंभ में ही मिले है। यहाँ पे उन वीर सेनानी की याद में स्मरणार्थ उत्सव मनाया जावे है, जिनने अपनी मातृभूमि की रक्षा के काजे अपनी जान की परवाह न करते भये शहीद है वे। जानगर में एक स्थान कोतवाली बाजार है, जाकी दूरी धर्मशाला से 3 किलोमीटर है। यहाँ पे देवी देवतान के प्रमुख मंदिर बने भये हैं। हर तीर्थ यात्री को यहाँ देवी देवतान के दर्शन करवे के काजे अवश्य रूप से जाना पड़े है। धर्मशाला पहुँचवे के काजे सबते पास को हवाई अड्डो गांगल है, जो के धर्मशाला से 15 किलोमीटर की दूरी पे दक्षिण में बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने मंडी, देहरादून और दिल्ली के काजे बस सुविधा प्रदान कर दी है। धर्मशाला के दक्षिणी भाग में 20 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा गांव नगरोटा बसो है। यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है। नगरोटा रेलवे स्टेशन से पठानकोट, जोगेंद्र नगर और दिल्ली के काजे सीधी ट्रेन मिले हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे देश समारोह के क्रम में रमणीक स्थल धर्मशाला के बारे में जानकारी दे रहे थे कैलाश कुमार कौशिक। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं रमेश दत्त चतुर्वेदी के स्वर में ये लोकतान।

रमेश दत्त चतुर्वेदी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये ब्रज लोक तान, और इसी के साथ ही ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों के सुरों में सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से पंडित नरेंद्र शर्मा की ये भक्ति रचना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन था। और अब आइए सुनते हैं फिल्म गोपी से मोहम्मद रफी के स्वर में रजेंद्र कृष्ण की ये भक्ति रचना। संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का है।

मोहम्मद रफ़ी के सर में गोपी फिल्म से रजिंदर कृष्ण की रचना आप सुन रहे थे। संध्या वंदन कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अलग अलग से।

आश भोसले और यशोदास के स्वरों में अलग अलग फिल्म से आप सुन रहे थे आनंद बख्श की ये भक्ति रचना। इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: पंचो जय हिंद।
1: ज्योति बहनी।
2: हाँ रामजीत भैया।
1: देखो हम पंच खेती पाती तो करबे करी थे और यह खेती पाती में हम पंच बहुत मेहनत लगाए के करी थे और कौदा ऐसा न होते कि फसल अपन बहुत बढ़िया हो जाते है तो वही के रख रखाव होता है जितना प्रयास हो सके थे हम पंच वही का करी थे।
2: देखो भैया सही कह रहे हो, कई कई बार हम लोग फसल उपजा ले थे मगर हमरे किसान पंच के पास इतनी जगह नहीं होते फसल रखे के ताकि हम अपन फसल सुरक्षित रख सकी।
1: बिल्कुल बहनी ठीक कहती हो। यही बदे तो आपन जौन सरकार है वो बहुत सचेत है और यही की ताए बहुत बढ़िया योजना बनाए है और वही योजना का नाम है कृषि आधारभूत फंड और यही के तहत तमाम तरह के सुविधा जौन है हम पंचन का दीन जात है।
2: सही कह भैया। देखो अपने गांव में यहाँ या पंचायत है उमा अगर एपीओ है या किसानन का संगठन है वही सब जो है ई योजना का लाभ ले सकते हैं। और भैया देखो इसे जो है अपन फसल हुआ रख के सुरक्षित कर सकते हैं और आगे जब उसका दाम बढ़े तो बढ़िया से बेच सकते हैं।
1: बिल्कुल बहनी और यही माँ जो हम पंच बनाए सकी थे वही माँ है कोल्ड स्टोरेज गोदाम पैकेजिंग इकाई छटनी की इकाई और रेफ्रिजरेटेड वैन ई सब चीजन में हम अपन फसल बढ़िया तना रख सकी थे।
2: सही कह रामजीत भैया। अब किसान जो है सिर्फ फसल उपजावे तक ना सीमित रही बल्कि उसका उचित लाभ ले सकी।
1: बिल्कुल जब आपन फसल जौन है खराब ना होई तो धीरे धीरे वो आपन फसल जौन है वो बाजार में सही समय पर ले आई

0: तो भाई के दामों बढ़िया मिली। तो बहनी ये जौन चीजें नई नई होती हैं यही का हम पंच जानित है आज की खबरें में।
1: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा की है। नई दिल्ली में हुई बैठक में मार्च 2027 तक प्राथमिकता वाले 300 कृषि विज्ञान केंद्रों के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के उन्नयन पर जोर दिया गया। इसके साथ ही दिसंबर 2028 तक सभी कृषि विज्ञान केंद्र में इंक्यूबेशन सह कौशल केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों और ग्रामीण युवाओं को कृषि आधारित उद्यम, नई तकनीक, कौशल और नवाचार से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बैठक में केवी के कर्मचारियों की सुविधाओं, समय पर धनराशि उपलब्ध कराने, पर्याप्त मानव संसाधन और राज्यों के सहयोग पर भी चर्चा हुई। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मजबूत केंद्र, राज्य समन्वय, आधुनिक बुनियादी ढांचे और प्रभावी कार्य योजनाओं के जरिए कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों तक वैज्ञानिक जानकारी और आधुनिक कृषि तकनीक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनाया जाएगा।
2: देखो अब रबी फसल आवे वाली है तो किसान पंच बिल्कुल तैयारी में है, सब्जियां उगा ली जाए ताकि अच्छा दाम मिल जाए।
0: बिल्कुल, तो यही वजह देखो आज की बात में लायन है रबी में सब्जी उत्पादन, जही के जानकारी दे रही है प्रज्ञा उपाध्याय बहनी।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, रबी में सब्जी उत्पादन कैसे करें इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं जिला उद्यान अधिकारी बाराबंकी प्रज्ञा उपाध्याय जी, स्वागत है कार्यक्रम में। प्रज्ञा जी ये बताएं कि रबी में जहां सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं किसान भाई बहन तो क्या सलाह है आपकी?
4: नमस्कार किसान भाई बहनों, रबी का सीजन सब्जियों का सीजन है। रबी के सीजन में आप बहुत सारी सब्जियों की खेती कर सकते हैं, जैसे कि आलू है, मटर है, टमाटर है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, पालक, मेथी, धनिया, मूली है, गाजर है, तो बहुत सारी सब्जियां हैं जो आप रबी के सीजन में आप उसका उत्पादन कर सकते हैं।
3: तो दो तरह की स्थितियां, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनकी नर्सरी पड़ती है, कुछ की सीधी बुआई होती है, तो कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है बुआई या नर्सरी में साथ साथ रोपाई में?
4: जब किसान भाई हमारे सब्जी का उत्पादन करे तो सबसे पहले दो तीन बातों का ध्यान रखे,
3: जैसे
4: कि सबसे पहले वो मृदा का परीक्षण करा ले, उसके बाद मृदा को शोधित कर ले, और जब वो बीज का चुनाव करे तो वो अपने जलवायु के हिसाब से और बाजार के डिमांड के हिसाब से बीज का चुनाव करे, और बीज आप उनका रोग रोधी हो, सहनशील हो, कीट रोधी हो, तो ये दो तीन बातों का किसान भाई बहुत ध्यान रखे जिससे उनको उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा।
3: जहाँ नर्सरी तैयार है वहाँ खेत में रोपाई करनी है, लेकिन जहाँ रबी सब्जियों की सीधी बुआई करनी है तो वहाँ कौन सी खास बातें हैं?
4: कि जैसे पहले वो मिट्टी को पूरी तरह वो भुरभुरा बना ले, उसके बाद इसमें सड़ी गली गोबर की खाद पर प्रयोग करे, जैसे कि यदि प्रति एकड़ के हिसाब से देखा जाए तो उसमें वो 10 से 12 टन तक का सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं,
3: यानी 100 से 125 क्विंटल।
4: जी जी, और उसके बाद उसमें वो 60 से 100 किलोग्राम नीम की खली का प्रयोग करे, एवं साथ में एक मित्र फफूद है ट्राइकोडर्मा पाउडर का भी प्रयोग करें, जिससे कि जो भी हमारे मिट्टी जनित रोग है वो नहीं पनप पाएंगे मिट्टी में।
3: यानी भूमि शोधन जरूर करें ट्राइकोडर्मा से जहां भी रबी सब्जियां उगाने जा रहे हैं।
4: जी, किसान भाइयों को मैं ये सलाह दूंगी कि रसायन का कम प्रयोग करें, फिर भी थोड़ी बहुत मात्रा में मूलभूत में कुछ प्रयोग जैसे कि वो एनपीके का करते हैं तो उसको वो कर सकते हैं, जैसे कि यदि वो टमाटर की खेती कर रहे हैं, मिर्च की खेती, शिमला मिर्च की कर हैं, तो इसमें वो जो खाद का प्रयोग करे वो 48-20-20 केजी के अनुपात में एनपीके का प्रयोग करे,
3: यानी 48 किलो नाइट्रोजन की मात्रा, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास प्रति एकड़ तत्व के रूप में।
4: जी हाँ, लेकिन इसमें भी एक तरीका होता है खाद डालने का मिट्टी में। जैसे कि जब वो बुआई करते हैं तो वो फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा वो मिट्टी में मिला दे और नाइट्रोजन को वो दो भागों में बांट ले, आधी मात्रा नाइट्रोजन वो बुआई से पहले ही डाल दे और शेष जो आधी मात्रा बचती है नाइट्रोजन की उसको भी दो भागों में वो बांट ले। इसमें कि आधी मात्रा जो नाइट्रोजन की होती है वो बुआई के 30 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे दे और फिर 45 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में,
3: यानी एक चौथाई।
4: जी जी हाँ,
3: डॉक्टर साहब रबी सब्जियों की बात चल रही है, उनके उत्पादन तकनीक की बात चल रही है, तो बीज की मात्रा प्रति एक

0: एकड़ कितना लगेगी, जहाँ नर्सरी डालनी है या सीधी बुआई करनी है, और रोपाई या बुआई का अंतरण क्या होगा, जैसे टमाटर मिर्च शिमला मिर्च गोभी वर्गीय सब्जियों में?
1: जी जी हर फसल का अलग अलग होता है। जैसे कुछ फसल देखिए, हमारे जो टमाटर है, शिमला मिर्च है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, इनकी हम नर्सरी तैयार करके फिर इसके खेत में रोपाई करते हैं। और कुछ हमारे जैसे कि बीज है, पालक है, मेथी है, धनिया है, मटर, मूली, गाजर आदि हैं, इनको हम सीधे खेत में छिटकवा विधि या लाइन से लाइन में तैयार करके इनको हम खेत में सीधे करते हैं।
0: प्रज्ञा जी, जहाँ गोभी वर्गीय सब्जियों की नर्सरी तैयार है, तो रोपाई का अंतरण क्या होगा?
1: अब जैसे कि यदि किसान भाई हमारे अपने खेत में फूल गोभी पत्ता गोभी लगा रहे हैं, तो उसमें लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। उसी तरह यदि वो टमाटर मिर्च शिमला मिर्च आदि की खेती कर रहे हैं, तो लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर की रखें और पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर तक की रखें।
0: और जहाँ पालक मेथी धनिया लगाने जा रहे हैं, तो वहाँ अंतरण क्या होगा बुआई का?
1: पालक मेथी धनिया आदि में किसान भाई लाइन से लाइन की दूरी 40 सेंटीमीटर रखेंगे और पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर। उसी तरह वो मूली और गाजर में भी वो लाइन से लाइन की दूरी वो 40 सेंटीमीटर की रखें और पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर तक की रखें।
0: और आलू में?
1: आलू में वो किसान भाई हमारे लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें और पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर तक की रखें।
0: और सब्जी मटर?
1: सब्जी मटर में भी लाइन से लाइन तक की दूरी 50 सेंटीमीटर तक रखें और पौध से पौध की दूरी वो 20 से 25 सेंटीमीटर तक रखें।
0: प्रज्ञा जी, उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं जो किसान भाई बहन चुने ताकि पैदावार उनको अधिक से अधिक मिले, बाजार भाव अच्छा मिले?
1: तो हर फसलों में कुछ विशेष विशेष प्रजातियां हैं जिसका वो ख्याल रखें। जैसे कि हमारी मटर है, तो मटर में हमारी एक वैरायटी है अर्किल वैरायटी है, एक IIVR की एक वैरायटी है, काशी मुक्ति है, काशी उदय है, काशी नंदिनी है, और एक इस समय बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है जो अर्ली वैरायटी है,
0: काशी अगेती
1: है,
0: जिसकी बुआई जल्दी कर सकते।
1: जिसकी बुआई वो किसान भाई इस समय वो कर सकते हैं, तो इसका प्रयोग करें और इसका अच्छा रिजल्ट आएगा।
0: और आजाद पिथरी भी है,
1: ये भी अर्ली वैरायटी है।
0: और आलू में
1: तो बहुत सारी वैरायटियां हैं, कुफरी चुपसोना है, पुखराज है, सूर्या है, ख्याति है, सिंदूरी है। तो किसान भाई को यही कहना चाहूंगी किसान भाइयों से कि वो अपने जनपद के क्लाइमेट के हिसाब से आलू के प्रजातियों का चयन करें।
0: और गोभी वर्गीय सब्जियों में?
1: गोभी में भी बहुत से अच्छी वैरायटियां आई हैं, जैसे कि एक पंतनगर की वैरायटी है पंत शुभ्रा है, एक पूसा करनाल की वैरायटी है पूसा स्नोबॉल है, दीपाली है, समर किंग है।
0: और पत्ता गोभी?
1: पत्ते गोभी में भी जो है पूसा ड्रम हेड है, पूसा मुक्ता है, प्राइड ऑफ इंडिया है। तो ये वैरायटियां अच्छी हैं जो अच्छा रिस्पांस दे रही हैं और किसान भाई इसका प्रयोग कर सकते हैं।
0: और मूली जहां लगाना चाहते हैं किसान भाई?
1: जी हाँ, मूली भी बहुत अच्छी प्रजातियां आई हुई हैं, जैसे कि काशी श्वेता है, काशी हंस है, काशी मूली है, ये हमारी वाराणसी की वैरायटी है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है।
0: गाजर में
1: भी अच्छा वैरायटी है, एक वाराणसी की अच्छी वैरायटी आई है काशी कृष्णा है, और एक पूसा करनाल की वैरायटी है पूसा केसर है, जिसको किसान भाई गाजर के खेती में प्रयोग कर सकते हैं।
0: पालक की कौन कौन सी प्रजातियां अच्छी हैं?
1: पालक की प्रजाति में हमारे किसान भाई ऑल ग्रीन का तो पहले से ही प्रयोग कर रहे हैं, एक हमारी वाराणसी की एक नई वैरायटी आई है काशी ज्योति, इसका प्रयोग करें, इसका भी अच्छा उनको रिजल्ट मिलेगा जो है पालक की खेती में।
0: मेथी धनिया लहसुन प्याज और शिमला मिर्च में?
1: मेथी में तो पूछा अर्ली बंचिंग है जो बहुत ही हमारी पुरानी वैरायटी है जो आज भी प्रचलित है और आज भी वो अच्छा रिजल्ट दे रही है, और एक कानपुर की वैरायटी है आजाद वन, उसका भी वो प्रयोग कर सकते हैं। धनिया है तो धनिया हमारा पंथ हरितमा है जो पहले भी किसान भाई हमारे कर रहे थे और आज भी इसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो रहा है।
0: लहसुन और प्याज में?
1: लहसुन में जिसमें की G282 है और G3 है, और प्याज में आपका एग्री फ्राउंड लाइट रेड है, पूसा रेड है, कल्याणपुर लाल गोल है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है।
0: चलते चलते किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे रबी में सब्जी उत्पादन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: जी हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9454334400, 9454334400, 9454334400।
0: प्रज्ञा उपाध्याय जी, आज आप कार्यक्रम में आई और रबी में सब्जी

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: ज्योति बहनी।
7: हाँ रामजीत भैया।
6: देखो अपने पंचन का जानकारी तो खूब दिवाई दी हो, अब कुछ गीतों गवनी सुनवाई दिन जाए।
7: बिल्कुल भैया, देखो लोक गीत के बिना हमारा जो है कार्यक्रम अधूरे रहा।
6: यही बदे रंजुल जयंत गौतम भैया की आवाज में सुन लीन जाए ई लोक गीत।

0: रामजीत भैया,
1: हाँ ज्योति बहनी,
0: देखो हम लोग जो है खेती किसानी करी थे, मगर ज्यादातर जो है दिमाग में यूं रहते हैं कि हम अपन रोजी रोटी कमा ले और हमारा घर परिवार चला करे।
1: बिल्कुल बहनी, मूल बहुत से किसान ऐसे हैं जे न सिर्फ कमात हैं बल्कि हम पंचन की तरह मिसाल बन जाते हैं। अब नहीं कि हम लाइत है आज के किसान में। आज के विषय है गन्ना और केला उत्पादन, जही पे जानकारी दे रहे हैं हिमांशु नाथ सिंह भैया।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ एक ऐसे नौनमेसी किसान हैं, सीतापुर जनपद के बिसवां ब्लॉक के खंभापुरवा गांव के हिमांशु नाथ सिंह भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया आप मिठास की फसल की खेती के लिए जाने जाते हैं, केला उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, मैंने बीकॉम एलएलबी किया हुआ है।

0: मेरी शुरू से ही एक पिताजी को देखते हुए शौक था, खेती की तरफ रुझान था, और उन्हीं को देखते करते ही मैंने सब सीखा। पिछले लगभग 15 साल से मैं पूरी तरह से किसानी में हूँ।
1: इस समय रकबा क्या क्या है?
0: केला का लगभग 8 एकड़ है और गन्ना लगभग 15 एकड़।
1: मिठास की फसल से शुरुआत करें तो लगभग 15 एकड़ मिठास की फसल आपके पास है। शरदकालीन बुआई करते हैं या बसंतकालीन?
0: सारी शरतकालीन ही बुआई रहती है
1: पूरी?
0: जी।
1: उसके साथ क्या सहफसली खेती भी करते
0: हाँ
1: हैं?
0: जी, सब फसली खेती भी करते हैं, सरसों और आलू की
1: साथ में
0: जी।
1: तो वैरायटी कौन कौन सी चुनते हैं शरदकालीन गन्ना में?
0: वैरायटी इस टाइम पे जो है मेरे पास 0118 है, 13235 है, 15023 है और 14201 है, और अभी हाल में ही जो नई रिलीज वैरायटी है वो 16202 और 18231। थोड़ा
1: यानी सभी लेटेस्ट वैरायटी
0: जी
1: आपके खेत में हैं,
0: जी
1: तो इन प्रजातियों की खासियत क्या महसूस कर रहे हैं आप अपने खेत पर?
0: प्रजातियां अच्छी चल रही हैं, उसमें से कुछ हिस्सा सीड के लिए भी मैं तैयार करता हूं, तो उन पर थोड़ा सा खास ध्यान रखा है, लेकिन ये प्रजातियां अच्छा रिस्पांस दे रही हैं और आगे चल के किसान भाइयों को फायदा ही होगा इनसे।
1: यानी बीज उत्पादन भी गन्ने का करते
0: हाँ
1: हैं?
0: जी, बीज उत्पादन
1: कितना
0: भी,
1: रकबा बीज उत्पादन का होता है?
0: बीज उत्पादन लगभग 5 से 6 एकड़ के लगभग रहता है
1: और लेटेस्ट वेराइटीज
0: जी, सारी लेटेस्ट वैरायटी का।
1: कुछ भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के ट्रायल्स भी आपके यहाँ लगते हैं?
0: हाँ कुछ लगते हैं,
1: जैसे
0: जैसे अभी जो अंडर ट्रायल वैरायटी है वो कभी आती हैं, जिसके लिए साइंटिस्ट और वो आते हैं अपना देखते हैं, स्टडी करते हैं, और बाकी जो रिलीज वैरायटी है उनको भी वो लोग स्टडी करते हैं, वो किस तरीके से
1: आपके खेत
0: मेरे
1: पर
0: प्लॉट
1: चल
0: पे क्या रिस्पांस दे रही है, कैसे कर रही है।
1: शरदकालीन गन्ने की बुआई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के और मिठास की फसल की कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं आप अपने खेत में?
0: जी, सबसे महत्वपूर्ण काम तो ये रहता है कि खेत में हरी खाद बहुत जरूरी है लेते हैं, क्रॉप का रोटेशन बहुत जरूरी है, और जो अवशेष रह जाता है उसकी मल्चिंग खेत में ही करते हैं, कोई चीज खेत के बाहर नहीं जाती है और ना खेत को जलाया जाता है
1: आप शरदकालीन गन्ने के पहले हरी खाद ढैंचा उगाते
0: जी।
1: हो
0: ढैंचा उगाते हैं
1: तो पलटाई के बाद खेत की तैयारी बढ़िया से?
0: जी, खेत की तैयारी और साथ में जो है ट्रॉली बीघा गोबर की खाद अगर उपलब्ध हो पाती, कोशिश यही रहती है कि उपलब्ध रहे।
1: शरदकालीन गन्ने की जहां बुआई करने जा रहे हैं कितना रकबा रहेगा इस बार
0: लगभग उतना ही रहेगा, 15 के एकड़ के आसपास
1: शरदकालीन गन्ने की
0: जी
1: बुआई का?
0: जी
1: तो अभी कुछ बुआई शुरू
0: जी
1: हुई?
0: बुआई शुरू हो गई है।
1: कुछ जल्दी नहीं है?
0: नहीं, ऐसा जल्दी नहीं है, लेकिन असल में जब जमाव आ जाएगा तो इसके बाद हमको उसी में लाही और आलू भी लेना है, तो उसका भी बेड साथ ही साथ तैयार हो जाएगा, तो टाइम ठीक रहेगा।
1: अंतरण कितना रखते हैं लाइन से लाइन की दूरी?
0: लाइन से लाइन की दूरी मेरी 5 फीट की रहती है और बट से बट की दूरी जो है 1 से 1.25 फीट की रहती है
1: यानी 1.5 मीटर पर गन्ना उगाते हैं
0: जी।
1: और गन्ने की दो लाइनों के बीच में?
0: जिस प्लॉट में सरसों लेनी है तो उसमें 2 लाइन सरसों की ले लेते हैं और आलू की 2 लाइन लगभग हो जाती है
1: गन्ने के दो लाइनों के बीच
0: जी।
1: में आलू की कोई खास वैरायटी चुनते हैं मिठास की फसल के साथ?
0: आलू की एक वैरायटी है जो हम लोग का कई सालों से रिपीट हो रही है, उसका पैदावार अच्छी मिलती है
1: और आपके यहाँ लोकल मार्केट में
0: जी,
1: भी
0: लोकल
1: है?
0: मार्केट में अवेलेबल है, तो उसी को ही वो रहते हैं, वो कच्चा ही आलू बेच लेते हैं
1: अच्छा,
0: जी।
1: तो आलू की बुआई कब तक पूरी कर लेंगे आप शरदकालीन गन्ने की?
0: शरदकालीन गन्ने की बुआई लगभग हम 15 से 20 तारीख तक पूरी कर लेंगे सितंबर
1: सितंबर में
0: जी
1: ही?
0: जी उसके बाद जो है बड है, सिंगल बड ही बुआई करते हैं
1: अच्छा,
0: जी, सिंगल बड बुआई करते हैं, उसका ट्रीटमेंट ट्राइकोडर्मा से, और ब्यूरिया बेसियाना वो तो प्लॉट में पड़ के पहले ही उसकी जुताई हो चुकी है
1: यानी भूमि शोधन से?
0: जी, और ट्राइकोडर्मा से उसका ट्रीटमेंट रहता है। उसके बाद जब बुआई हो जाती है तो गोबर की अगर भुरभुरी खाद मुझको मिल गई तो उसके ऊपर एक गोबर की खाद कूड़ से कूड़ में डालते हैं
1: अच्छा
0: जी।
1: हिमांशु भैया, आप मिठास की बात हुई, केला उत्पादन से भी जुड़े हैं, तो कोई खास वैरायटी है?
0: G9
1: अच्छा, क्या खासियत महसूस कर रहे हैं ग्रैंड नैंड जो G9 वैरायटी है अपने खेत में?
0: G9 की पैदावार अच्छी है, जो फलत आती है वो अच्छी आती है, केले का साइज ठीक आता है, जिसकी मार्केट में अच्छी डिमांड ठीक रहती है।
1: इस बार बुआई केले की कब आपने की और खेत की तैयारी में क्या कुछ खास किया?
0: खेत की तैयारी में हरी खाद ली, गोबर की खाद ली, और पिछले साल से मैं हाई डेंसिटी फार्मिंग कर रहा हूँ केले
1: अच्छा,
0: जी।
1: तो अंतरण कितना रखते?
0: अंतरण लाइन से लाइन की दूरी 6 से 6.5 फीट रहती है और पौधे से पौधा 5 फीट और 2.5 फीट
1: अच्छा,
0: जी
1: 2.5 फीट पर भी?
0: जी
1: तो जो अंतरकर्षण

0: आए हैं उनको करने में आपको दिक्कत नहीं
1: नहीं,
0: होती?
1: दिक्कत नहीं आती, मेरे पास मिनी ट्रैक्टर है,
0: अच्छा।
1: उसी के हिसाब से गैप रखते हैं। और मिनी ट्रैक्टर 2.5 फिट में नहीं चल पाता है, उसके लिए लेबर लगाने, बाकी सारा मिनी ट्रैक्टर काम कर देता है
0: अच्छा,
1: जी।
0: केला में कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं आप?
1: बुआई के समय तो कुछ नहीं करते हैं, हाई राइज मतलब मिट्टी उठा के बेड बना के पौधा लगाते हैं, उसके 15 से 20 दिन बाद जो है एक टॉप ड्रेसिंग करते हैं पोटाश डीएपी और यूरिया की
0: अच्छा,
1: जी।
0: तो जल मिले? अच्छा,
1: हाँ, उस तीसरी या चौथी डोज में उसका भी ड्रेंचिंग करते हैं जी
0: ड्रेंचिंग शुरू कर
1: जी
0: देते हैं। इस समय जो जुलाई में रोपाई हुई, फसल कैसी चल रही है?
1: फसल ठीक चल रही है
0: तो फसल बढ़वार पर है।
1: जी, फसल बरबाद।
0: पिछले लगातार कई सालों से आप मिठास की फसल गन्ना और केला दोनों पैदा कर रहे हैं मुख्य रूप से। एकड़ में कितनी लागत गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
1: केले में लगभग जो हिसाब जोड़ा है वो करीब 100 से 110 रुपए का खर्चा आ जाता है
0: एक पौधे
1: एक
0: पर?
1: पौधे पर।
0: जी
1: और अगर हम एवरेज 1200 रुपए कुंटल लगभग लें तो 250 के आसपास का
0: पौधे
1: एक
0: पर मिल
1: पौधे पे
0: जाता है,
1: मिलता है
0: यानी लगभग 125 रुपये पौधा
1: जी,
0: आपको मिल जाता है।
1: 125 से 150 तक का पौधा मिल जाता है, वो मार्केट को देखते हुए,
0: और
1: बाजार को
0: एक
1: देखते
0: एकड़
1: हुए।
0: में पौधे लगते कितने हैं केले
1: एक
0: के?
1: एकड़ में पहले तो 6 बाय 6 के हिसाब से 1250 पौधा लगता था, अब जो हम हाई डेंसिटी से कर रहे हैं तो उसमें लगभग 1650 से 1700 पौधा आ जा रहा है एक एकड़ में।
0: तो इस हिसाब से सघन और अति सघन बागवानी से आपको मुनाफा अधिक हो रहा है?
1: हाँ, थोड़ा सा मुनाफा पौधे बढ़ जाने की वजह से ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा खर्चा भी है
0: बढ़ा
1: क्योंकि
0: है।
1: जी, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस कम करने की वजह से उनको खाद पानी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। बाकी
0: और मिठास की फसल में?
1: मिठास की भी फसल में लगभग 500 से 600 कुंटल लेते हैं, 500 भी अगर लेते
0: एकड़
1: हैं
0: में?
1: जी एकड़ में,
0: हाँ।
1: तो खर्चा पे अगर हम जाएं, गन्ने में थोड़ी सी लागत बढ़ जाती है, ये गन्ना मंधाई मिट्टी चढ़ाई ट्रांसपोर्टेशन, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम जो आ रही है वो लेबर की आ रही है,
0: जी,
1: लेबर काफी महंगी हो गई है तो
0: खर्चा बढ़
1: जी
0: जाता है।
1: खर्चा बढ़ चुका है।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: जी बिल्कुल, 9838405500, 9838405500, 9838405500।
0: हिमांशु नाथ सिंह भैया, आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो पहली वाली बात कहाँ,
3: परम तो सब ही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: ज्योति बहनी।
6: हाँ भैया।
5: देखो, अपने खेती पाती में मौसम के जौन जानकारी है वो अगर समय पे मिल जात है तो बहुत नुकसान जौन है वो बच जात है। तो भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 7 दिनों तक कहूं कहूं पर गरज चमक के साथ बौछार पड़े के संभावना है। साथे 10 और 11 में वज्रपात के संभावना है और 12 से लेकर 16 तक कौनो विशेष चेतावनी नहीं है। ज्योति बहनी।
6: हाँ रामजीत भैया।
5: देखो, अपने बहुत से पंच हैं जौन अपन बात हमसे कहे चाहते हैं और कुछ सुझाव दिए चाहते हैं, तो यही की तय वन्ना अपन पता बताए दिन जाए।
6: बिल्कुल भैया, हम बता दें, कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ और पिन कोड है 226001।
5: और साथे जे पंच हम पंचन का मेल करे चाहे वह हमार मेल लिखे, हमार मेल है farmandhome@ lko@

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को परखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवाकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के दिए निर्देश। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में स्ट्रोक यूनिट, सुपर स्पेशियलिटी ओपीडी और न्यूरो सर्जरी वार्ड का किया उद्घाटन। कहा, अस्पतालों के बीच समन्वय से जनता को मिलेंगी गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं। शिक्षकों के लिए 3 नवंबर को होगी स्पेशल टीईटी परीक्षा, 4 अक्टूबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में राज्य के कई जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के निरंतर सेवाकाल पूरा होने के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की उपस्थिति में अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
4: बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सेवाकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और विकसित भारत 2047 के संकल्प को जन संकल्प बनाने का अवसर है। इस दौरान सेवा गतिविधियों, विकास कार्यों, लाभार्थियों की वास्तविक कहानियों, युवाओं की प्रतिभा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जन प्रतिनिधियों की भागीदारी को जोड़कर अभियान को सेवा से संकल्प की व्यापक यात्रा के रूप में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए। अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को सेवा दिवस के तहत दीप प्रज्वलन के साथ होगी।

0: 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण भी किया जाएगा। इनके अतिरिक्त प्रमुख स्मारकों और पर्यटन स्थलों पर नमो सेवा थीम पर लेजर शो, तीर्थ स्थलों और शक्तिपीठों में राष्ट्र कल्याण एवं विकसित भारत के संकल्प के लिए महायज्ञ, 25 सितंबर को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम चौपालों का आयोजन किया जाएगा। 17 अक्टूबर को अभियान का समापन होगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज सेवा संकल्प अभियान की कार्ययोजना को लेकर देश के सभी राज्यों के नगर विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा शामिल हुए। बैठक में नगर विकास मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान के कार्यक्रमों के साथ ही विशेष कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। श्री शर्मा ने बताया कि 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कुल 157 घंटे का अनवरत स्वच्छता अभियान प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देश के पूर्व गृहमंत्री और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 139वीं जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। लोक भवन में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रख्यात अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत का देश की स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने प्रदेश के विकास और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में इस बड़े राज्य की व्यवस्था को सुशासन के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना और इसके आर्थिक उन्नयन, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करना, इसके लिए उन्होंने उस समय अपना प्रयास प्रारंभ किया। अनेक प्रकार के रिफॉर्म लाए, लैंड रिफॉर्म का जो मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया।
1: उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने आज लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में स्ट्रोक यूनिट, सुपर स्पेशियलिटी ओपीडी और न्यूरो सर्जरी वार्ड का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने कई नई स्वास्थ्य सुविधाओं की शुरुआत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गंभीर रोगों वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सा देने के लिए सरकार ने विभिन्न अस्पतालों के बीच समन्वय स्थापित करने की शुरुआत की है।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी व स्ट्रोक के जो पेशेंट्स आते थे, न्यूरोलॉजी के, उनको तत्काल उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके लिए लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और सिविल अस्पताल के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए और वहां के चिकित्सक आकर के यहां पर ओपीडी करेंगे, मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि सिविल अस्पताल में सुविधाएं पहले उपलब्ध नहीं थी, अतः सिविल अस्पताल को उच्चीकृत करते हुए यहां पर चिकित्सीय सुविधाएं बढ़ाने का काम किया है और इस प्रयोग को हम अन्य अस्पतालों में भी ले जाएंगे।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। शिक्षकों के लिए स्पेशल TET परीक्षा 3 नवंबर को आयोजित की जाएगी। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने स्पेशल TET के आयोजन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है, वहीं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। पूर्व में TET या CTET उत्तीर्ण कर चुके शिक्षकों के लिए स्पेशल TET दोबारा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। जिन अध्यापकों ने पूर्व में TET या CTET उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें निर्धारित विज्ञापन के अंतर्गत पंजीकरण कर आवेदन करने और परीक्षा में भाग लेने की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर ने आज बिजनौर में महिलाओं से संबंधित विवादों पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को मामलों के

0: भंडारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण आजीविका मिशन की दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस मिशन से जुड़ी महिलाएं विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाली शक्ति हैं।
1: ये बहनें केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं है, बल्कि ये सभी बहनें विकसित भारत के संकल्प को लेकर अपनी प्रगति करने वाली सभी बहनें हैं। आप सभी वो शक्ति है जो परिवार को संवारती है, समाज को दिशा देती है और राष्ट्र के भविष्य का निर्माण भी करती है।
0: आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों को सुगम यात्रा की सुविधा देने के लिए उत्तर रेलवे ने वाराणसी और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समर्थ गुप्ता ने बताया कि यह विशेष ट्रेन 22 अक्टूबर से 12 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को संचालित होगी। चित्रकूट में कल से शुरू होने वाले भाद्रपद अमावस्या मेले में श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाएं की हैं। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मेला क्षेत्र, प्रमुख मंदिरों, घाटों और पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
2: हमारे इस मेले की सुरक्षा में डिप्टी एसपी रैंक के 14 अफसर हैं, एसओ इंस्पेक्टर्स 15 लगे हुए हैं, 36 इंस्पेक्टर, 262 सब इंस्पेक्टर, 13 महिला सब इंस्पेक्टर, 820 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल, 125 महिला कांस्टेबल, ट्रैफिक के 18 उप निरीक्षक और 80 कांस्टेबल्स, पीएसी की 2 कंपनियां हैं, फ्लड प्लाटून भी हमारे पास 2 प्लाटून हैं।
0: राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 26 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन लगातार निगरानी करते हुए राहत और बचाव कार्यों को संचालित कर रहा है। अब तक 21,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच राज्य की कई नदियां अब भी उफान पर हैं। बदायूं बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी, अयोध्या व बलिया की तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में प्रदेश के कई जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को परखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवाकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में स्ट्रोक यूनिट, सुपर स्पेशियलिटी ओपीडी और न्यूरो सर्जरी वार्ड का किया उद्घाटन। कहा, अस्पतालों के बीच समन्वय से जनता को मिलेंगी गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं। शिक्षकों के लिए 3 नवंबर को होगी स्पेशल टीईटी परीक्षा, 4 अक्टूबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में राज्य के कई जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत बनाम बांग्लादेश के मध्य खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल क्रिकेट मैच का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आंखों देखा हाल।
4: Any changes to your starting 11?
5: No, we are playing in the same 11.
4: What sort of a total are you looking to restrict the opposition to?
5: See, we have been playing here, so we will look to, like we wanted to...
3: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी।

हम का एक खुशनुमा समय दिन भर की भाग दौड़ से थोड़ी सी फुर्सत और उसके साथ गीत संगीत की कुछ मीठी बातें। कहिए श्रोताओं, आप कैसे हैं? उम्मीद है दिन भर की व्यस्तताओं के बाद अब आप हमारे साथ इस संगीतमय शाम का आनंद लेने के लिए तैयार होंगे। आपकी शाम को और भी सुहानी बनाने के लिए

शाम को और भी सुहानी बनाने के लिए मैं आपका रेडियो हम सफर अरविंद कुमार एक बार फिर से आपके बीच हूं। श्रोताओ, शाम सुहानी सिर्फ गीतों का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये आपके और हमारे बीच संवाद का एक खूबसूरत सिलसिला है। आपके व्हाट्सएप संदेश हमें बताते हैं कि इस समय आपके मन में कौन सा गीत गूंज रहा है, कौन सी धुन आपकी यादों के किसी कोने को छू रही है और किस गीत के बहाने आप किसी अपने को याद करना चाह रहे हैं। तो आज की इस शाम भी हमारे पास पहुंचे हैं आपके ढेरों प्यारे संदेश। किसी ने अपने परिवार के लिए गीत की फरमाइश की है, किसी ने दोस्तों के नाम गीत भेजा है, तो किसी ने किसी खास शख्स के लिए अपनी पसंद का नगमा चुना है। और हाँ, हो सकता है आपकी भी कोई फरमाइश आज इस कार्यक्रम में शामिल हो, इसलिए जुड़े रहिए आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र के साथ। तो देरी किस बात की, यादों की गलियों में चलते हैं, कुछ पुराने नगमों की खुशबू खोते हुए और कुछ नई पुरानी धुनों के साथ सजाते हैं अपने इस शाम को।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में आप सुन रहे थे चोरी चोरी फिल्म का गीत। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत निर्देशन था। और इस गीत को सुनने के लिए जो हमें संदेश प्राप्त हुए उनमें श्रोताओं के नाम हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश से आजन कुमार सिंह, वंदना गौरी, विनती विनायक सिंह मोहनी, मोहित और कोकुरानी। कर्मचौक लोहारीडीह से यशवंत साहू, रमेशिया, हर्ष और अंशा साहू। सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश, उर्मिला, दीपक, स्वाति, विपिन, देव कुमार और आर्य कुमार। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर, डॉक्टर रमनदीप। कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। सौगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार, चंदन, सावित्री, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र हेंश। नई दिल्ली से रविंद्र सिंह, स्वीटी, रोशनी, रेहन शर्मा, ध्वनि और सानवी। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्माला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय, ओम कुमार गुंजेश विद्यार्थी, रिया रानी, कुमारी साक्षी, कुमकुम, श्वेता, रंजन, रजनीश, आनंद, अच्छे लाल, बुल्की वाली और फल। यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा, श्रव्या रामटेके। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, सोनू, पप्पी और तमन्ना भाटिया। दतिया मध्य प्रदेश से राहुल पाल, ज्योति, अंजना पाल, हरिमोहन पाल और बेबी। लक्ष्य मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, क्रांति कामेश्वर और अरुण कुमार जयमंत्री की वटिन के साथ हैं। शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मेघा, राहुल खुराना, रजता खुराना, केशु रिधान खुराना। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, योगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। फाजिलका पंजाब से ओम बागड़िया, क्रियांश बागड़िया, रजत और गरिमा बागड़िया। दुर्गा कॉलोनी हंसी से राजू मेघलानी, बबीता मेघलानी, सुभाष, योगी, बब्बू, डब्बू। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी सौरभ, शाइना शर्मा। नीमगांव महाराष्ट्र से श्रीराम गोंधली, उषा गोंधली, वैष्णवी, पूनम और युवराज गोंधली। दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता, कमलकांत गुप्ता, पिपरिया छत्तीसगढ़ से। यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षता, रियांश और इनके परिवारजन। दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, रजमत, नीरा, मुरली और प्रहलाद वर्मा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा का संदेश में मिला है। श्रोताओं, बारी है कैसे खूबसूरत नगमे की, जिसमें शरारत भी है, नजाकत भी है और मोहब्बत की मीठी सी चुवन भी।

0: बारिश की बूंदों से भीगी जुल्फें और उन जुल्फों से छलकता पानी इस दिलकश तस्वीर को आवाज दी है अपनी सदाबहार गायकी से मोहम्मद रफी साहब ने। फिल्म शहनाई का ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपके रेडियो सेट के माध्यम से।
1: न झटको जुल्फ से

मोहम्मद रफी की आवाज में शहनाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनने के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए थे राज पैलेस।

अमरनाथ, भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा, मुन्ना स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार।

मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बरेली से तेजस जयलाम से हर्षिता, सिद्धार्थ नगर दरियापुर भावली से गजानन गेले, नवदीप ये विश्वदीप अशोक येले, अकुल से अरुणा बलदेव दामोदर आदित्य दामोदर, कोल सिटी बरकाना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना सोनू तस्नीम निप्पी साहनी अफजल मल्लिक।

बलिया उत्तर प्रदेश से प्रकाश, ओम प्रकाश, उषा राय, अमित कुमार, प्रतीक रोशनी और प्रांजलि। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, इस्तरार नरगिस खातून।

नवा शहर पंजाब से गगनदीप थां थी, तृप्ता कुमारी थां भी, प्रियंका प्रशांत प्रियम वामिका और वाणी थां थी। गंज टंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज कुलफराज चौर मुस्कान। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद आलिया और अयान। मेहरनेर उमर खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गहवाणकर रही, सरिता सिद्धांत एकांश और टुकटुक गहवाणकर। मेन रोड राजनगर से कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, कांति मिश्रा, संगीता पासवान, मेनका मुखिया, भोलिया देवी और नरसिंह राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णो, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र तांगी।

नागपुर के श्रोता हैं विठल जाधव, अनुसुईया पवन राजे जाधव, संभाजीनगर महाराष्ट्र से मंगेश उंगले, संध्या और सुराज विराज। धाड़ी नादुरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमोल बाठे। मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी सोनी, मोहनी ऋतिक और बलवीर सिंह। कोली नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओम कुमार और साई गायकवाड़, उत्तम कुमार और जमदाड़े वाकोड़ी से। श्रोताओं, कुछ राज पर्दे में ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि इन्हीं अनकहे एहसासों में छिपी होती है मोहब्बत की मिठास। तो आइए अब सुनते हैं फिल्म शिकार का एक बेहद दिलकश गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और साथियों की।

आशु भोसले और साथियों की आवाज़ों में शिकार फिल्म का गीताब सुन रहे थे। हसरत जयपुरी की कलम से निकले हुए इन शब्दों को सुरबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना भरत कुमार का संदेश में मिला है। जबलपुर मध्य प्रदेश से सोनाली दुबे मोनिका और रानू का संदेश। मजनू का टीला से कमल बालूजा मधु बालूजा सागर बालूजा। सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक आकांक्षा और माही मलिक। उज्जैन मध्य प्रदेश से भीरू लाल वाकतरिया धाकड़ भोला वाकतरिया और प्रवीण का संदेश में मिला है। अमरावती से सईद भाई आसिफा परवीन और आयशा। झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। बिजनौर मध्य उत्तर प्रदेश से मोहम्मद वक्कर फरीदी मोहम्मद इकबाल फरीदी सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी परवीन बिट्टू साजिदा रानी और हिना कौसर। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का संदेश में मिला है। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर मंजुला राठौड़ विशाल और निशा।

खंडवा से श्रोता हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण, सोनी, पूजा, पायल और जगदीश जौहरी। बिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा। मंदसौर मध्य प्रदेश से रामलाल चंद्रवंशी। पलसी बुजरुक से हैं विजय शेगोकार, जयश्री शेगोकार और ऋषिकेश शेगोकार, अनूप कुमार और उद्धव धौरेण इनके साथ शामिल हैं। ओमानी महाराष्ट्र से अनूप कुमार और उद्धव पाटिल। खंडवा मध्य प्रदेश से विजय मोहबिया, कविता मोहबिया, विशाल विवेक, सोनू मोनू, रानू, ईशु बाबा और पेंटर बाबू। मगनपुर झारखंड से हैं अब्बास आलम, अमजद अली और निशा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव वैदेही, हंशिका। जगदलपुर से पूनम नायडू। श्रोता, बहुत सारे संदेश लगातार हमें मिल रहे हैं और बहुत सारे संदेश पहले से भी हमें प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन अब समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है कि इस कार्यक्रम को आगे हम जारी रखें। फिलहाल इस प्रोग्राम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने रेडियो दोस्त अरविंद कुमार को। आप सभी को नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कभी कभी आंखों में छिपी शरारत होठों पर आए गुस्से से कहीं ज्यादा बोल जाती है। ऐसे ही नटखट अंदाज और मीठी छेड़छाड़ से सजा फिल्म प्रोफेसर का ये पहला खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म संगीत की ये खूबसूरत पेशकश।

मोहम्मद रफी की आवाज में प्रोफेसर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत निर्देशन था। कार्यक्रम का अगला गीत सीआईडी फिल्म से आ रहा है आप तक, शमशाद बेगम और आशा भोसले के युगल सुरों में। मजरू की रचना है, ओपी नैयर का संगीत निर्देशन।

शमशाद बेगम और आशा भोसले की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे सीआईडी फिल्म का गीत। मजरू का लिखा हुआ गीत था, उपेन अय्यर का संगीत। और आपको बता दें, इस गीत में मोहम्मद रफी को भी आपने सुना। श्रोताओं, अब बारी है उस सदाबहार नगमे की जिसमें देशी मिट्टी की खुशबू है, बैलगाड़ी की रफ्तार है और गांव की पगडंडियों की सहजता भी। फिल्म मदर इंडिया से सुनिए शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में ये लोकप्रिय गीत। बोल हैं शकील बदायवनी के और संगीत नौशाद का है।

शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्म मदर इंडिया के लिए। रचना शकील बदायूं ने की थी और संगीत नौशाद का था। श्रोताओ, प्रेम में जब मन किसी अपने से जुड़ जाता है तो उसकी अनुपस्थिति में भी घर सुना सुना लगने लगता है, और इसी विरह और प्रेम की मीठी अनुभूति को सुरों में पिरोता है फिल्म भूमिका का ये बेहद लोकप्रिय गीत।

प्रीति सागर की आवाज में भूमिका फिल्म का गीत आपने सुना और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम देश गान। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं समवेत स्वरों में पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह देशभक्ति परक रचना।

कार्यक्रम की पहले प्रस्तुति के रूप में अभी आपने सुना पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचित देशभक्ति परक रचना समवेत स्वरों में। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद इकबाल की यह देशभक्ति परक रचना समवेत स्वरों में। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा।

सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद इकबाल की ये देशभक्ति परक रचना। इसी रचना के साथ ही देशगान का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र के इस विशेष कार्यक्रम एक ही फिल्म से मैं आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार। श्रोताओं, सिनेमा की दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो पर्दे पर समाप्त होने के बाद भी हमारे मन में चलती रहती हैं। इतिहास के पन्नों से निकली कोई प्रेम कथा जब संगीत, अभिनय और भावनाओं का रूप लेकर हमारे सामने आती है तो वो केवल फिल्म नहीं रह जाती, वो एक अनुभव बन जाती है। आज की हमारी फिल्म भी ऐसी ही एक कहानी है, बाजीराव मस्तानी।

श्रोतो, एक तरफ मराठा साम्राज्य के महान योद्धा पेशवा बाजीराव, दूसरी तरफ बुंदेलखंड की राजकुमारी मस्तानी, और इनके बीच प्रेम, परंपरा, राजनीति और सामाजिक विरोध का ऐसा संघर्ष जिसने इस प्रेम कथा को इतिहास की सबसे चर्चित गाथाओं में स्थान दिया। कहानी शुरू होती है मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव मस्तानी से। युवा बाजीराव एक कुशल योद्धा हैं। उनकी तलवार युद्ध भूमि में विजय का रास्ता बनाती है और उनकी रणनीति मराठा साम्राज्य का विस्तार करती जाती है। बाजीराव के जीवन में उनकी पत्नी काशीबाई का अपना एक संसार है। काशीबाई अपने पति से प्रेम करती हैं और उनके जीवन की हर खुशी में सहभागी हैं। लेकिन इतिहास की राह हमेशा सीधी नहीं होती। बुंदेलखंड पर संकट आ जाता है। राजा छत्रसाल मुगल आक्रमणकारियों से घिर जाते हैं। सहायता के लिए बाजीराव को पुकारा जाता है। बाजीराव युद्ध भूमि में पहुंचते हैं और छत्रसाल की सहायता करते हैं। यहीं उनकी मुलाकात होती है मस्तानी से।

श्रोतो, मस्तानी केवल सुंदरता की प्रतिमूर्ति नहीं बल्कि साहसी कुशल योद्धा और संवेदनशील हृदय वाली स्त्री है। बाजीराव और मस्तानी के बीच धीरे धीरे एक ऐसा संबंध जन्म लेता है जिसे दोनों के लिए शब्दों में बांधना आसान नहीं है। और प्रेम जब दिल में उतरता है तो फिर वो जाति, धर्म, समाज और परंपराओं की सीमाएं नहीं पूछता। बाजीराव और मस्तानी के इसी आत्मिक जुड़ाव को संगीत में महसूस कीजिए।

श्रोतो, कहानी आगे बढ़ती है और बाजीराव के जीवन में मस्तानी की उपस्थिति अब केवल एक मुलाकात नहीं रह जाती, वो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। लेकिन दूसरी ओर ये संबंध समाज के लिए सहज स्वीकार्य नहीं है। बाजीराव का परिवार और मराठा समाज मस्तानी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। काशीबाई के सामने भी एक ऐसी परिस्थिति आ खड़ी होती है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। यहाँ फिल्म केवल प्रेम की कहानी नहीं कहती, बल्कि यह भी पूछती है कि क्या प्रेम को सामाजिक स्वीकृति का मोहताज होना चाहिए? क्या किसी व्यक्ति के मन में जन्म प्रेम परंपराओं की दीवारों के सामने हार जाना चाहिए? बाजीराव अपने प्रेम के साथ खड़े रहते हैं और मस्तानी भी हर परिस्थिति में उनका साथ निभाती हैं। और श्रोताओ, फिर आती है वो खूबसूरत सांस्कृतिक छटा जहां प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि रंगों और नृत्य की भाषा में भी व्यक्त होती है। अब इसी फिल्म का एक ऐसा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसमें शास्त्रीय नृत्य, रंग और भावनाओं का अद्भुत संगम दिखाई देता है।

श्रोताओं, प्रेम के रंग में रंगा ये गीत अपने आप में एक मनोहारी दृश्य रच देता है, लेकिन कहानी में प्रेम जितना गहरा होता जाता है, संघर्ष उतना ही तीखा होता जाता है। एक ओर बाजीराव की पत्नी काशीबाई हैं, जो अपने पति के प्रेम और बदलती परिस्थितियों के बीच भावनात्मक संघर्ष से गुजर रही हैं, और दूसरी ओर मस्तानी हैं, जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करना चाहता। बाजीराव के परिवार की राजनीतिक और सामाजिक विरोध के बीच मस्तानी को अलग थलग करने के प्रयास होते हैं, फिर भी प्रेम अपनी राह तलाशता रहता है। और इसी बीच फिल्म में हमें एक ऐसे गीत तक लेकर आती है जो आज भी अपनी ऊर्जा, ताल और नृत्य के लिए बेहद लोकप्रिय है। ये फिल्म और ये गीत केवल दो स्त्रियों के नृत्य का उत्सव नहीं, बल्कि फिल्म की सांस्कृतिक विविधता और भावनात्मक जटिलता को भी सामने लाता है।

0: तो श्रोताओं, आज एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आपने सुनी एक ऐसी कहानी जिसमें तलवार की धार भी थी, प्रेम की कोमलता भी, सामाजिक संघर्ष भी था और संगीत की मिठास भी। उम्मीद है फिल्म के इन गीतों और कहानी के साथ गुजरे ये कुछ पल आपकी शाम को, आपकी इस खूबसूरत पल को थोड़ा और खूबसूरत बना पाए होंगी। और इसी के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम से अब मुझे यानी अपने रेडियो हमसफर अरविंद को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम समाचार संध्या, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन। टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स, ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट। अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम more crowded, technologies more powerful and actors more numerous।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
2: India's approach is rooted in वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। दिस स्पिरिट मस्ट नाउ ट्रेवल बियॉन्ड अर्थ। वी सपोर्ट अ सेफ, सिक्योर, पीसफुल एंड सस्टेनेबल स्पेस डोमेन एंकर्ड इन इंटरनेशनल लॉ, डायलॉग एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। साइंटिफिक डेटा मस्ट सर्व द कॉमन गुड विद ओपननेस एंड इंटीग्रिटी। इंडिया स्पेस जर्नी रिफ्लेक्ट दिस फिलोसॉफी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है।

0: उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंचने चाहिए।
1: चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। आदित्य L1 इज अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द सन। लास्ट ईयर एन इंडियन विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लुकिंग अहेड वी एम टू एस्टेब्लिश एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड एन इंडियन टू द मून बाय 2040। इन ऑल दिस एफर्ट्स आवर गाइडिंग प्रिंसिपल हैज बीन क्लियर दैट बेनिफिट्स मस्ट रीच ऑल ह्यूमैनिटी।
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेक्नी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
2: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
3: ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेकर ट्रैफिक से लेकर लॉ एंड ऑर्डर के संबंधी काफी डिटेल में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सुंदर जो मैनेज कराएं।
2: भारत की अध्यक्षता 4 प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में

0: पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। दो दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress. सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा रोधी गांव और शहर तैयार करना है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोना अग्रवाल, अग्नि लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया।

0: धरोहर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India supports a safe and sustainable space domain, virtually addresses first international space summit in Paris. New Delhi gears up to host world leaders at 18th BRICS summit this weekend. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping expected to arrive tomorrow. Home Minister Amit Shah reviews disaster preparedness, calls for climate-resilient villages and cities under zero-casualty vision. India and Russia step forward on joint production of civil passenger planes and deliveries of 105 regional turboprop aircraft to Indian operators. Centre amends e-commerce rules to tighten norms on price transparency, sponsored listings and search result manipulation. India Open campaign at World Para Shooting Championship in South Korea with 4 medal haul including a gold. And in Women's Junior Asia Cup Hockey, India storm into semi-final with record 19-0 win over Pakistan in China. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond Earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
2: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar south pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way.
1: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said, ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions.
2: ISRO, which stands at the heart of this journey, has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. Its capabilities serve farmers and fishermen, weather forecasting, disaster management and navigation. More than 430 satellites from 34 countries have traveled to space aboard Indian rockets. ISRO's technologies and partnerships serve not only India but the wider world.
1: New Delhi is geared up to host world leaders at the 18th BRICS summit this weekend with heightened security infrastructure.

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, गूंज उठी शहनाई फिल्म से। इससे पहले आपको बता दें, जो गीत आपने कार्यक्रम के पहले गीत के रूप में सुना, उसमें आवाज़ें थीं आशा भोसले और उषा मंगेशकर की। फिल्म का नाम था नमक हराम। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का दूसरा गीत।

ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था गूंज उठी है शहनाई। कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश फिल्म बागी से। आवाज़ है शुभा मोदगल की।

बागी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे शुभा मुद्गल की आवाज में। इसी के साथ सुहाने तराने कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए शुष्क क्षेत्रों में कृषि की नई संभावनाओं और जलवायु अनुकूल समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR IARI में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS बाना और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: आज हमारे साथ है वरिष्ठ वैज्ञानिक RS बाना जी। RS बाना जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: बाना जी। सबसे पहले एक बेसिक सा प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि शुष्क भूमि क्या है, इस पर किस तरह की खेती होती है और इसमें चुनौतियां किस तरह की हैं?
2: अगर हमारे देश के हम कुल कृषि रकबे की बात करें तो उसमें 45% के आसपास ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिंचाई के साधन या तो उपलब्ध है ही नहीं और है भी तो बहुत सीमित। और जो सिंचित क्षेत्र है बाकी का 55%, उसमें भी काफी बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां पर सिंचाई के साधन सीमित है। और जो कम बरसात वाला ऐसा क्षेत्र है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, तो ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर बरसात कम होती है। अमूमन 750 मिलीमीटर से कम बरसात वाले क्षेत्रों को अर्धशुष्क क्षेत्र और जो 250 मिलीमीटर से कम वाले हाइपर एरिड क्षेत्र उनको बोलते हैं, यानी कि बहुत ही शुष्क क्षेत्र। तो जो ये शुष्क क्षेत्र है उनमें चुनौतियों की अगर हम बात करें तो पानी की उपलब्धता नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। उत्पादन स्तर काफी कम रहता है फसलों का, गरीबी बहुत बड़ी एक समस्या है, तो कई तरह की सामाजिक आर्थिक विषम परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से, क्योंकि ये जितना भी हमारा जो ड्राईलैंड क्षेत्र की हम बात करते हैं, करीब करीब 40% आबादी इसमें रहती है
1: जी।
2: और जो पशुधन है, हमारे देश का आधे से अधिक पशुधन इस क्षेत्र में है, तो चारे की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, अनाज की उपलब्धता, माइग्रेशन रोजगार के अवसर के लिए, कमाने के लिए दूसरे क्षेत्रों में यहां के लोगों को जाना पड़ता है, तो ये इस तरह की जो समस्याएं हैं वो है। इसके अलावा जलवायु संबंधित, मृदा संबंधित समस्याएं हैं, मृदा की उर्वरा शक्ति कम है, जैविक कार्बन कम है, और चूंकि पशुधन है तो जितनी भी वनस्पति होती है उनको पेट भरने के लिए खिलाना जरूरी है। और जलवायु संबंधित चुनौतियों की अगर हम बात करें तो कभी तो बरसात आती नहीं है, आती है तो बहुत कम आती है, कई बार बरसात के बीच में काफी सारा अंतराल आ जाता है, उस दौरान फसलें खराब हो जाती है चूंकि पानी की कमी है।
1: वैसे मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो शुष्क भूमि है और जो आर्द्र भूमि है, इनमें खेती में क्या अंतर होता है?
2: शुष्क भूमि में जो ऐसी फसलें होती है मुख्यतः जिसमें बहुत कम पानी में ही वो पैदा हो सकती है, और जो हमारे शुष्क क्षेत्र है उनकी अगर हम फसलों की बात करें तो मिलेट्स एक बहुत बड़ा समूह है जो बारानी क्षेत्रों में होता है, यानी कि जो जैसे कि बाजरा है, ज्वार है,
1: और अनाज,
2: जी मोटा अनाज वाली फसलें जिनको श्री अन्न भी बोलते हैं, और मिलेट्स के अलावा दलहनी फसलें, तिलहनी फसलों का भी काफी बड़ा क्षेत्र, यानी कि करीब करीब दलहनों की बात करें तो 85-90% के आसपास दलहन भी बारहनी क्षेत्रों में होती है, और तिलहनी जो फसलें हैं वो भी करीब करीब 80% के आसपास इन क्षेत्रों में ही होती है। तो ये इस प्रकार की फसलें होती है, जबकि आर्द्र क्षेत्र ऐसे हैं जो धान वाले क्षेत्र है जहाँ पर जल भरा होता है, ज्यादा बरसात होती है, तो वहाँ की समस्याएं अलग प्रकार की होती है।
1: आज के समय में अगर हम बात करें तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने की।

0: कोशिश की जाए। तो ऐसे में जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जब हम देखते हैं कि किसानों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी सरकार सहायता प्रदान कर रही है और शुष्क क्षेत्रों में ये पहल कुछ ज्यादा हो रही है।
1: सरकार लगातार प्रयासरत है कि किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों का जीवन स्तर उच्च हो, उसमें कोई संदेह नहीं है। और सरकार और जो सरकारी संस्थान है उसमें वो लगे हुए हैं, और जो जलवायु है उसमें जो परिवर्तन आ रहा है वो

0: उसमें जो परिवर्तन आ रहा है वो शुष्क क्षेत्रों में ज्यादा होने की प्रबल संभावनाएं है। परंतु जैसे जैसे ये वैज्ञानिक विकास हो रहा है, अगर हम आज के एक या दो दशक पहले की हम बात करें, तो यदि 10% बरसात में कमी आती थी, मानसून 10% कमजोर रहता था, तो करीब करीब 13-13.5% से भी ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन कम हो जाता था। अब उसी 10% में 0.22% तक ही कमी आती है। हमारा खाद्यान्न उत्पादन इस तरह हम बना के रखते हैं क्योंकि जो वैज्ञानिक विकास हुआ है और जो सरकार के प्रयास है और हमारे जो किसानों की मेहनत है, उससे हम जलवायु परिवर्तन को काफी हद तक मात दे पाए हैं। परंतु यदि दीर्घकाल की बात करें तो हमें जलवायु सहनशील किस्मों, जलवायु से संबंधित जो रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं, उनको उत्पादन करके सरकार, विज्ञान, वैज्ञानिक और किसानों को मिलकर काम करना होगा ताकि हम निरंतर आगे बढ़ सके।
1: डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, फसल विविधीकरण करना, अंतर फसल करना और कृषि वनीकरण जैसी जो प्रणालियां होती हैं, ये शुष्क भूमि में कितनी लाभदायक हो सकती हैं?
0: जो बारानी क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, उनमें फसल की फैल होने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे आपने पूर्व में कहा फसल विविधीकरण, और ये जो अंतर फसलीकरण है यानी कि जो इंटरक्रॉपिंग है, एक ही साथ दो से अधिक प्रकार की फसलें लगाएं, बागवानी, एग्रोफोरेस्ट्री या फसलों को अदल बदल कर बोना, बहुत सारी फसलें एक साथ खेतों में लगाना, उसका फायदा यह है कि यदि एक फसल फेल हो जाती है तो दूसरी फसल एक तरह से इंश्योरेंस होती है। यही इंटरक्रॉपिंग का सबसे बड़ा फायदा है। इसी तरह से जो हमारा शुष्क क्षेत्र है, वहाँ पर पशुधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है और वो एक बारानी क्षेत्रों की जीवन रेखा है, जीवन की आधारशिला है। तो जो एग्रोफोरेस्ट्री है वो पशुधन के लिए एक चारे का वैकल्पिक स्रोत तैयार करती है, वर्ष भर किसानों की आमदनी होती रहे, इसके लिए जरूरी है कि बागवानी, एग्रोफोरेस्ट्री, अंतर फसलीकरण का समावेश हमारी फसल प्रणालियों में हो और फसल विविधीकरण को हम बड़े पैमाने पर अपनाएं।
1: डॉक्टर बाना, अभी ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया जा रहा है जिसमें साउथ साउथ कोऑपरेशन को विशेष तौर पे महत्व दिया जा रहा है, तो भारत का ये जो सहयोग की भावना है भारत की, इसके माध्यम से शुष्क भूमि की खेती के क्षेत्र में भारत के साथ साथ दूसरे देशों को भी कैसे महत्व दिया जा रहा है, खासतौर पर जब हम अनुभव की बात करते हैं, तकनीक साझा करने की बात करते हैं, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें।
0: जी, भारत सरकार का जो ICAR है, कृषि मंत्रालय का, और ICRISET जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है हैदराबाद, ये दोनों मिलकर जो ड्राईलैंड कॉन्फ्रेंस 10-11-12 सितंबर 2026 का आयोजन कर रहे हैं, उसमें दुनिया भर के विश्व स्तर के जो वैज्ञानिक गण है, किसान है जो बारानी खेती से संबंधित, वो सब एकत्रित हुए हैं और राजनीतिक नेतृत्व भी वहां पे आया है। माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आज वहां पर आके और एक अपना विजनरी टॉक दी है। तो ये क्योंकि भारत अब दुनिया में एक राह दिखाने वाला उस पे चल रहा है, और हम जो विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, हमें बारानी क्षेत्रों को, ड्राईलैंड्स को विकसित करना है, और जो ग्लोबल साउथ की जो हम बात करते हैं, यानी कि दुनिया का वो दक्षिणी हिस्सा जो जिसमें लैटिन अमेरिका भी है, अफ्रीका है, एशिया पैसिफिक के जो देश है, जो विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, उनमें भारत एक लीडर की भूमिका में है। और ये जो ड्राईलैंड से संबंधित अनुसंधान है भारत में, ICAR में, IARI जो पूसा संस्थान है उसमें, और ICAR के इंस्टीट्यूट है जैसे कि काजरी है जोधपुर में, क्रेडा है हैदराबाद में, ये जो तकनीकियों का विकास किया है वो दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है। और जो दुनिया भर के संस्थान है, वैज्ञानिक है जो आज एकत्रित हुए हैं, वो सब उन पे मंथन करेंगे, और ICRISET का और ICAR का ये 50 साल का सहयोग हुआ है, उसको भी एक मनाया जा रहा है 2026 में, तो उस पे मंथन होगा, क्या क्या तकनीकियां हो सकती है जो भविष्य में जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में हमारे किसानों की आजीविका और आय बढ़ाती रहे, और जो ये फसल प्रणालियां हैं बारानी क्षेत्रों की, शुष्क क्षेत्रों की, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, सतत विकास कैसे हो, उस पे मंथन होगा।
1: डॉक्टर साहब, ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस जो हो रही है, इसमें शोध, उद्योग, स्टार्टअप, सरकार और किसान संगठनों को एक साथ लाने पर जोर दिया गया है, तो आपको लगता है कि सभी पक्षों के बीच में जब सहयोग बेहतर होगा तो फिर शुष्क भूमि के किसानों की आय बढ़ेगी और खेती की संभावनाएं जो कम होती हैं उनमें भी बढ़ोतरी होगी?
0: बिल्कुल, इसमें हमें साथ मिलकर काम करना होगा। और जो थीम है ड्राईलैंड कांग्रेस की, साउथ साउथ कोऑपरेशन, मतलब दुनिया भर के जो ग्लोबल साउथ के देश है, यदि साथ मिलकर काम करते हैं तो वो एक बड़ी दीर्घकालिक सोच होगी। और साथ ही जो ये हमारे अलग अलग पार्टनर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, अनुसंधान करने वाले, पॉलिसी बनाने वाले, स्टार्टअप्स,

0: एंटरप्राइजेज, यूथ, महिलाएं, ये सब अगर मिलकर आगे बढ़ते हैं, और ड्राईलैंड कॉन्फ्रेंस का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो जलवायु परिवर्तन के दौर में किस तरह से खेती को सतत उत्पादन मिलता रहे
1: जी,
0: शुष्क क्षेत्रों में किसानों की आय निरंतर बढ़ती रहे, और जो जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कई बार नुकसान हो जाता है, बहुत तगड़ा ड्राउट सूखा आ जाता है, उससे माइग्रेशन बढ़ जाता है, उन सबको रोकने के लिए हम सबको मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर काम करना होगा।
1: डॉक्टर बाना, कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों को किस तरह की फसलों को अपनाना चाहिए, कैसी पद्धति अपनी रखनी चाहिए?
0: हमारे जो ड्राईलैंड्स है उनकी अलग ही प्रकार की फसलें भी होती है, कुछ ऐसी फसलें होती है जो दूसरी जगह पे उतनी नहीं होती। बीजीए मसाले होते हैं जिसमें कि जीरा है, सौंफ है, धनिया है, मेथी है, नागोरी पान मेथी है, तो ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाली फसलें हैं
1: जी।
0: यदि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करें तो यूरोपीय बाजार या अमेरिकी बाजार में इसका बहुत बड़ा स्कोप है, और कुछ किसान और जो आजकल युवा उद्यमी विशेषकर एफपीओ का निर्माण करके और अपनी आमदनी में वृद्धि कर रहे हैं, और भारत में भी जो किसानों की आयु बढ़ रही है, युवा कम आकर्षित हो रहा है, तो ये जो इस तरह की एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाली फसलें हैं और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, उसके जरिए हम युवाओं को खेती की तरफ आकर्षित कर सकते हैं, और जो बरानी क्षेत्रों की फसलें हैं उनमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है अगर युवा इसमें आगे आते हैं और एक्सपोर्ट हब बना के, और इसमें न केवल युवाओं का बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र है बरानी क्षेत्रों के, उनके किसानों की आय बढ़ेगी।
1: डॉक्टर साहब, किसानों के हित की जब बात कर रहे हैं तो कोई किसान यदि मदद लेना चाहे तो ICAR की बात हो, पूसा संस्थान हो, और ICARASAT हो, जिनकी साझेदारी के 50 वर्ष अब पूरे हो रहे हैं, कैसे उनकी मदद ले सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं शुष्क भूमि में अपनी खेती को बढ़ाने के लिए?
0: ICRISET जो कि दुनिया भर में सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में काम कर रहा है, और ICAR का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का जिसकी पहुंच, जहां बोलते हैं ना रेयरेस्ट जो जगह है, सुदूर क्षेत्र है, पहाड़ अरुणाचल के दिरांग से लेके अंडमान के पोर्ट ब्लेयर तक, और सब जगह देश भर में हर जगह ICAR के संस्थान मौजूद है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र मौजूद है जो किसानों के साथ निरंतर काम कर रहे हैं, उनकी सिर्फ समस्याएं सुनी नहीं जाती, उनको लैब तक लाया जाता है और लैब में उनका समाधान खोजा जाता है, और वापस लैब से लैंड को वो ट्रांसफर होती है। और अब तो जो हमारी सरकार है वो निरंतर प्रयास रहता है, भले ही वो विकसित कृषि संकल्प अभियान हो या जो किसानों के साथ जुड़कर बैलेंस फर्टिलाइजेशन का जो अभियान चलाया है अभी इस वर्ष, तो उसके थ्रू हम जो ग्रामीणों तक पहुंच रहे हैं, युवाओं तक पहुंच रहे हैं, महिलाओं तक पहुंच रहे हैं, और ICAR का और जो ICRISET का जो 50 वर्ष की जो ये गोल्डन जुबली है उसमें जो युवा और महिला किसान है उनको सम्मान मिल सके, उस पे बड़ा एक फोकस है।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने युवा और महिला किसानों की बात की, थोड़ा सा छोटे और सीमांत किसानों की अगर हम बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन का असर भी उन पर जाहिर सी बात है पड़ता ही है, तो महंगी तकनीक भी है और जानकारी की कमी की भी बात कह सकते हैं हम, संसाधनों की कमी है, तो ये सारी जो बातें हैं इन पर अगर थोड़ा सा हम फोकस करें तो कैसे इनसे निपटा जा सकता है?
0: छोटे किसानों के लिए हमारे संस्थान है या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ICAR और IARI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, निरंतर प्रयासरत है छोटी मशीनरी, किसानों के लिए कम लागत वाली तकनीकियां, संरक्षण कृषि जिसको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, जीरो टिलेज या नो टिल फार्मिंग भी बोला जाता है, जिसमें बिना जुताई किए ही खेती करें, फसल अवशेषों को जलाएं नहीं, उनको खेतों में ही उपयोग करें ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़े और जो जलवायु को प्रदूषण होता है उसका नुकसान होता है उन सबको बचा जाए, तो स्मॉल स्केल मशीनरी, कम लागत वाली जो सस्य तकनीकियां हैं उनका विकास हम निरंतर कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्योंकि हमारा देश तो छोटे किसानों का देश ही कह सकते हैं, तो उनके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और जुड़ के और खेतों में काम कर रहे हैं हमारे किसान वैज्ञानिक मिलकर साथ में, और जो तकनीकी का विकास हो रहा है उसी का परिणाम है कि आज हम दुनिया में धान उत्पादन में एक नंबर पर पहुंच चुके हैं, हम फूड सिक्योरिटी में सेल्फ सफिशिएंट है, आज हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं यानी कि जो हमारे अनाज होते हैं उनमें ज्यादा सांद्रता में पोषक तत्व हो उसकी बात कर रहे हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, और डिजिटल एग्रीकल्चर और जो एक मौसम सेवा है जिसमें किसान मौसम आधारित तकनीकियों से जुड़ा है, निरंतर हम प्रयासरत हैं कि हमारी तकनीकी उन तक पहुंचे, जिसमें हमारे जो सोशल मीडिया सहित जो पुराने प्लेटफॉर्म भी थे उन सब का उपयोग करते हुए हम किसानों से सीधा जुड़े हुए हैं।
1: डॉक्टर बाना, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे शुष्क

क्षेत्रों में कृषि की नई संभावनाओं और जलवायु अनुकूल समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR IARI में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS बाना और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्रीवाइड

अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होने के साथ ही देश में जगह जगह उनके खिलाफ खोई हुई आजादी पाने के लिए स्वातंत्र कामियों का जागरण अभियान शुरू हुआ। स्वतंत्रता के लिए उत्तर भारत का रोटी और कमल का प्रतीक अभियान इतिहास प्रसिद्ध है। सन 1857 में रानी झांसी के नेतृत्व में शुरू हुए शस्त्र अभियान ने किस भारतीय का सिर गर्व से उन्नत नहीं किया? केरल के क्रांतिवीर वांची अय्यर, मदुरई की रानी मंगम्माल, तिरुनावेली के वीर पांड्या कट्टाबोम, शिवागंगा के मुरुदु बंधु, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, उत्तर पूर्व में मिजोरम के स्वतंत्रता सेनानी सूक पिलल बंधु जैसे क्रांतिवीरों के स्वतंत्रता अभियानों के सम्मुख किस भारतीय का सिर श्रद्धा से नहीं झुकेगा? इन सब अभियानों से निराला एक और अभियान था, शब्द अभियान। इस अभियान के पुरोधाओं में से एक थे बंगाल के महान लेखक, कवि और पत्रकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनके लिखे एक गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारियों को अंतरज्वालाओं में परिवर्तित कर दिया था। कहा जाता है कि सन 1874 के सितंबर माह के एक दिन बंकिम बाबू कलकत्ता के सियालदह रेलवे स्टेशन से नैहाटी जाने के लिए ट्रेन पर सवार हुए। शाम का समय था, मौसम खुशगवार, चारों ओर हरियाली ही हरियाली। बंकिम बाबू का कवि मन अभिभूत हो उठा। मातृभूमि के शस्य श्यामल रूप के सम्मुख कवि नतमस्तक हो गया। वो गुनगुनाने लगा।

0: कि बंकिम बाबू उन दिनों कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले पत्र बंग दर्शन के संपादक थे। एक दिन वे अपने संपादन कक्ष में बैठे थे कि उनका प्रेस मैनेजर आया और बोला,
1: बंकिम दा

0: बंकिमदा, दो पेज का मैटर और चाहिए।
1: ए ना, ए कविता को छपा दो।
0: वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, ये क्या हौच पौच है दादा? आधा संस्कृत आधा बंगला, कौन पढ़ेगा इसे?
1: मैनेजर बाबू, एखन तुम्हें यही गान का महत्व तो नहीं जानेगा। यदि तुम्हें 25 वर्ष जिंदा रहा तो तुम्हें देखबे, देखबे तुम्हें यही गान पर सब बंगाल झूम रहा है।

0: सन 1882 बंकिम बाबू ने आनंद मठ नाम से एक उपन्यास लिखा।
1: उपन्यास के 10वें अध्याय में महेंद्र नामक पात्र लुटेरों के द्वारा हाथ पांव बांधकर गाड़ी में डाल दिया जाता है। तब उसके साथी भावनानंद के भीतर का आक्रोश वंदे मातरम गीत के रूप में फूट पड़ता है।
2: वंदे मातरम।

ये धुन बंकिम बाबू को भी पसंद आई। बाद में सन 1896 के कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसे गाया भी। कलकत्ता के इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्ला सायानी कर रहे थे।

0: इसके पूर्व 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में संपन्न हुए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सुप्रसिद्ध वकील और कवि श्री हेमचंद्र बैनर्जी की रक्षाबंधन कविता के संबोधन के साथ वंदे मातरम देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने की इच्छा रखने वालों के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था।
1: बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, तीनों भुवन में गूंज जाए शब्द वंदे मातरम।
2: 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग की घोषणा की। इस झकझोरने वाली ऐतिहासिक घटना ने देश में राष्ट्रवाद की भावना को और अधिक प्रबल किया।
1: बन जाए सुखदाई हमारा मंत्र वंदे मातरम, ओ हमारी
2: वंदे मातरम इस भावना का प्रतिनिधि गीत बन गया।
1: ओ हमारी पाठ पूजा मंत्र वंदे मातरम।
0: 7 अगस्त 1905 की शाम बंग भंग के विरोध में कलकत्ता में एक जुलूस निकाला गया। कॉलेज स्क्वायर के टाउन हॉल में एक बड़ी सभा हुई। इसमें वंदे मातरम के नारों के बीच विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया।
2: श्री पी के नायर थानकप्पन अपनी पुस्तक द नेशनल सॉन्ग्स एंड सिंबल में लिखते हैं,
3: इस घटना के बाद अंग्रेजों ने सही अर्थों में वंदे मातरम की शक्ति को पहचाना। उन्होंने इसमें महाकाली के रूप का अनुभव किया।
0: वंदे मातरम शक्ति का प्रतीक हो गया।
2: अक्टूबर 1905 में वंदे मातरम संप्रदाय की स्थापना की गई। अध्यक्ष बने कुमार मन्मथनाथ राय।
0: इस संप्रदाय के सदस्य हर रविवार को वंदे मातरम गाते हुए कलकत्ता की सड़कों पर मार्च करते हुए निकलते और आंदोलन के लिए चंदा एकत्र करते। ऐसे ही एक आयोजन में रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी शामिल हुए। पूरा वातावरण वंदे मातरम मय हो गया था।
4: वंदे मातरम।
0: अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों के साक्षी 80 वर्षीय पंडित वचनेश त्रिपाठी ने बताया,
5: तीन चीजें चली, बंग भंग को रद्द करो, भारत हम आजाद करेंगे, आजाद करो नहीं, तीसरी चीज एक और वो थी वंदे मातरम। यहाँ तक कवियों ने उस जमाने में लिख डाला कि भाई एक बड़ा रोगी दिखाई पड़ा, घर के लोगों ने डॉक्टर बुलाया, कहा देखो भाई डॉक्टर ने आया, डॉक्टर आया उसकी देखभाल की मरीज की, तो कवि लिखता है डॉक्टर ने नब्ज देखी और फिर ये कह दिया इसको तो अब हो गया आजार वंदे मातरम, इसको वंदे मातरम की बीमारी हो गई, ये जो बोलता नहीं जब बोलता धीरे से वंदे मातरम वंदे मातरम। और अंग्रेजों ने इसीलिए वंदे मातरम के नारे को गैर कानूनी घोषित कर दिया, जो वंदे मातरम नारा लगाएगा कैद कर लिया जाएगा,

जो विद्यार्थी या छात्र स्कूल कॉलेज में वंदे मातरम बोलेगा स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये वंदे मातरम नारा एक मंत्र बन गया था आज़ादी का।

0: प्रतिबंध के बावजूद रविन्द्रनाथ ठाकुर की भतीजी सरला देवी चौधरानी ने सन 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया।
1: 14 अप्रैल 1906 बारिसाल में बंगाल कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता की बंगाल के सुप्रसिद्ध नेता श्री अब्दुल रसूल ने। वहां स्वयंसेवकों और प्रतिनिधियों के द्वारा वंदे मातरम के बैच लगाने के कारण उन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया।
2: लाठियों की मार युवा नेता चित्तरंजन गुहा पर भी पड़ी, लेकिन हर लाठी पर कराहट की जगह उनके मुंह से वंदे मातरम शब्द निकलता। परेशान पुलिस क्या करती, वश नहीं चला तो चित्तरंजन गुहा को पानी के टैंक में फेंक दिया।
3: देश भर में इस घटना का विरोध हुआ। मद्रास में भी सभा हुई। लोग निर्धारित समय से घंटों पहले वंदे मातरम बोलते हुए खुले मैदान में एकत्र हो गए।
2: सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चंद्र पाल इस गीत से इतने प्रभावित थे कि आंध्र प्रवास पर गए तो वहां इसका खूब प्रचार किया।
3: तमिलनाडु के महान कवि श्री सुब्रमण्य भारती ने तो इस गीत की पृष्ठभूमि पर एक और वंदे मातरम लिखा।
4: वंदे मातरम एन्बू

0: हिंदी, गुजराती, मराठी और न जाने कितनी भाषाओं में वंदे मातरम से प्रेरणा लेकर गीत और कविताएं लिखी गईं।
1: सुप्रसिद्ध साहित्यकार और साहित्य अकादमी के सचिव प्रोफेसर के सच्चिदानंद बताते हैं,
2: सारी भारतीय भाषाओं में वंदे मातरम जैसी रचनाएं हुई हैं, जैसे डीआर बेंद्रे की कविताएं कन्नड़ में और सुब्रमण्य भारती की कविताएं तमिल में, गुलाम मेजर की गीत है और कविताएं हैं कश्मीरी में, पंजाबी में फाइवीर सिंह थे, और हिंदी में जैसे आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त और मखनलाल चतुर्वेदी और सुमितानंदन पंत थे, तेलुगु में गुर्जाडा अप्पा राव थे, और मलयालम में वल्लतोल।
3: लोक गीतों में वंदे मातरम की अनुगूंज सुनाई देने लगी।
0: वंदे मातरम की भावना से प्रभावित होकर आजाद हिंद फौज के लिए गीत लिखा कर्नल राम सिंह ने। अभिव्यक्ति का कोई क्षेत्र शेष नहीं बचा जहां से वंदे मातरम की अनुगूंज सुनाई न देती हो। वंदे मातरम गीत मानो अनहद नाद की तरह समाज के अंतर मन में गूंजने लगा था।
3: इस अनुगूंज की छाप विभिन्न अवसरों पर फहराए जाने वाले ध्वजों पर भी दिखाई देने लगी थी।
4: 7 अगस्त 1906 कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में पहली बार जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया उसे वंदे मातरम ध्वज की संज्ञा दी गई। ध्वज पर लिखा था वंदे मातरम।
5: 18 अगस्त 1907 जर्मनी में आयोजित सोशलिस्ट इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कांग्रेस में मैडम भीकाजी कामा ने जो झंडा फहराया उस पर लिखा था
6: वंदे मातरम।
4: सन 1909 में मैडम कामा जब पेरिस में थी उस समय उन्होंने वंदे मातरम नामक पत्रिका निकालनी शुरू की थी।
0: इससे पहले सन 1906 में बंगाल से भी एक पत्रिका प्रकाशित की जा रही थी, उसका भी नाम था
6: वंदे मातरम।
3: इस पत्रिका के पहले संपादक थे श्री विपिन चंद्रपाल, बाद में श्री अरविंद ने इसका संपादन संभाला। पत्रिका में श्री अरविंद ने वंदे मातरम की पृष्ठभूमि पर

0: लेख प्रकाशित किए।
1: रविंद्र बाबू की भतीजी सरला देवी ने बंगाल में युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण देने के लिए विरासमती उत्सवों का आयोजन शुरू किया था। वे विवाह के बाद पंजाब चली आईं तो वहां मैमन सिंह सुहृद समिति के माध्यम से उन्होंने पंजाब में प्रतापादित्य उत्सव शुरू करा दिए। समिति की अक्टूबर 1909 की रिपोर्ट में छपा है कि अप्रैल 1905 में समिति ने दूसरा प्रतापादित्य उत्सव मनाया। उसमें पहली बार वंदे मातरम को राष्ट्रीय नारे के रूप में प्रयोग किया गया।
0: सुमित सरकार की पुस्तक है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा 1997 में प्रकाशित। इस पुस्तक का अनुवाद किया है श्री आदित्य नारायण सिंह ने। इसमें बताया गया है कि
2: बंगाल के ब्रह्म समाजी नेता थे श्री कृष्ण कुमार मित्र। इनकी प्रेरणा से एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की गई। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जमाना था। ऐसा ही एक आयोजन 7 अगस्त 1906 को हुआ। इसमें सोसाइटी के स्वयंसेवकों ने श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी को एक ध्वज प्रदान किया। लाल, हरे और पीले रंग के इस ध्वज में 8 अर्धविकसित कमल, सूर्य और अर्धचंद्र के साथ झंडे के बीचों बीच देवनागरी में लिखा था वंदे मातरम।
0: इसी पुस्तक में पृष्ठ 353 पर 23 सितंबर 1905 को कलकत्ता के राजार बाजार की उस सभा का जिक्र भी किया गया है जिसमें 10,000 श्रोताओं के सम्मुख भाषण करते हुए जनाब अब्दुल रसूल ने घोषणा की,
3: यहाँ मौजूद हम सब हिंदू और मुसलमान एक ही मातृभूमि बंगाल की संतान हैं।
0: सन 1936 तक आजादी का निर्विवाद प्रेरणा स्रोत बना रहा वंदे मातरम गीत। महात्मा गांधी हो या सरदार पटेल जैसे राजनेता या कोई अन्य, वंदे मातरम के सम्मोहन से बंधे ये सभी नेतागण अपनी सभाओं का समापन वंदे मातरम से ही करते।
4: वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
1: सन 1905 के बाद भारतवासियों के लिए आजादी का महामंत्र बन गया था वंदे मातरम।
0: शायद इसीलिए प्रभाती गाते और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए लोगों के छोटे छोटे समूह जब गली कूचों से निकलते तो अंग्रेज सरकार को उनके पांव की धमक में किसी सैन्य बल के चढ़ते चले आने का आभास होता।

0: वे क्रूर और दुर्दांत होते। वंदे मातरम गाने या नारा लगाने वालों को कभी कोड़ों की मार सहनी पड़ती और कभी कठोर कारावास।
1: लेकिन धन्य हैं वे वीर जिन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण फांसी की सजा मिलती तो वे हंसते हंसते वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदे पर झूल जाते।
2: वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
0: सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के सहयोगी रहे दिल्ली के सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री चिंतामणि बीते दिनों की याद इन शब्दों में करते हैं।
3: बात यह था कि अंग्रेज सरकार केवल शरीर बंद कर सकता था, शरीरों को बंधक कर सकता था, जेल भेज सकता था, अंतर माहौना को तो नहीं दबा सकता था। मैं घटना सुनाता हूँ बनारस जेल का कि औरों को तो पीटते ही थे लेकिन दलित के लोगों कहते ये चमार ये भांगी इन सबों के आज़ादी से क्या मिलेगा, लेकिन तब भी उत्साह था और हर बार वंदे मातरम को ये दलित लोग भी मानते थे। वंदे मातरम माने मातृभूमि की सबसे बड़ी संवेदना थी। खां अब्दुल गफ्फार खां सरहदी गांधी के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। वो भी नमाज जैसा महत्व देते थे।
1: इसके प्रभाव को समझते हुए एक बार भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र बोस से कहा था,
4: काश वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान बन जाए।

0: सन 1937 तक वंदे मातरम गीत भारतीय जनता की स्वातंत्र भावना का एक छत्र प्रतिनिधि गीत बना रहा। उसके बाद इस गीत के चारों ओर राजनीतिक स्वार्थ की काली छायाएं मंडराने लगी।
1: अंग्रेजों की दृष्टि में वंदे मातरम गीत में महाकाली की स्तुति की गई थी, तो कुछ अन्य लोगों की दृष्टि में ये गीत शक्ति रूपिणी देवी दुर्गा का स्तुतिगान था।
0: वर्धा में 14 से 17 अगस्त 1937 तक चली कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस समस्या पर गंभीरता से विचार करने के बाद एक वक्तव्य जारी किया गया।
2: वंदे मातरम के पहले दो चरणों में भारत माता के स्वरूप की वंदना और यहाँ की नैसर्गिक समृद्धि की चर्चा की गई है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो किसी भी तरह से धार्मिक हो। ये गीत देश के किसी वर्ग विशेष को चुनौती देने के लिए कभी नहीं गाया गया, न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से ही गाया गया।
0: वंदे मातरम गीत संदेह की छायाओं को नकारता हुआ भारतीय जनता के हृदय की पुकार बनता चला गया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम गीत गाया।

0: आजादी के बाद राष्ट्रगीत के चयन के बारे में विचार शुरू हुआ। बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय ने 14 जून 1948 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा।
1: सन 1905 से वंदे मातरम गीत ने आजादी के आंदोलन में त्याग और बलिदान की भावना जागृत करने के लिए जो ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, उसे देखते हुए वंदे मातरम गीत ही राष्ट्रगान होने के योग्य है।
0: और भी स्वतंत्रता सेनानी व राजनेता थे जिन्होंने वंदे मातरम के महत्व के बारे में अपनी राय व्यक्त की। डॉक्टर दूधनाथ चतुर्वेदी ने बताया,
2: मैंने इस विषय में पंडित नेहरू को 13 पत्र लिखे। आप क्या कर रहे हैं पंडित जी, जिस वंदे मातरम से ये स्वराज की प्राप्ति हुई, लाखों लोग फांसी के तख्ते जेलों में गए, जेल में यही गाना ही गाते थे वंदे मातरम। एक जेलर, एक राजनीतिक व्यक्ति दूसरे से कहता था वंदे मातरम, भारत माता की जय। पंडित नेहरू ने बार बार हमारे पत्र का उत्तर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा यह छोड़ा नहीं जा रहा है, यह भी रहेगा और यह भी रहेगा।
0: 24 जनवरी 1950 का दिन संविधान सभा में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान पर गंभीर चर्चा हुई। स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम के महान योगदान को स्वीकार करते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना ऐतिहासिक वक्तव्य दिया।
3: वंदे मातरम, जिसने आजादी की लड़ाई में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, सदैव जनगण मन के समान एक राष्ट्रगीत की तरह आदर

अभी आप सुन रहे थे अनहद नाद। ये रूपक जिसके लेखक थे सोमदत्त शर्मा और प्रस्तुति भी सोमदत्त शर्मा की थी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी नैना देवी के दादरा और गजल गायन।

0: उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
1: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इनमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण कंपनी राइड भारत की कंपनी टेक मी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2 दिन के सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और भारत सहित 11 सदस्य देश शामिल होंगे। ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम भी सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस और ब्राजील के राष्ट्रपति आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे, जबकि कई अन्य नेता कल राजधानी पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने विषय पर चर्चा के साथ होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में कल दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन 3 विषयों की दोबारा परीक्षा प्रश्न पत्रों में कई गलतियों की शिकायतों के बाद आयोजित की गई थी। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को, जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा आज हुई। क्रिकेट में दुबई में खेले जा रहे महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बांग्लादेश की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंथ।
1: Bangladesh was able to put up only 109 for the loss of 7 wickets in their allotted 20 overs, and thereby the Indian women finally storming into the finals of the ongoing Asia Cup 2026. I'm Sakshi Mandwal, joined over here by my dear friend and co-host for the evening, Anand Srivastav. Good evening, Anand.
2: Good evening. और इस कार्यक्रम में हमारे साथ दो विशेष मेहमान हैं, बीसीसीआई कोच रविंद्र सिंह और वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
3: शुक्रिया।
1: ओके, वेरी क्विक क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम अपने श्रोताओं को भी बधाई दे दें कि भारतीय महिलाएं अब की बार एक बार फिर से एशिया कप 2026 के फाइनल्स में एंटर कर चुकी है। द 10th कंसेक्यूटिव एंट्री बाय इंडिया, इंडियन वुमेन शुड आई से, इन क्रिकेट इन एशिया कप फाइनल्स। मोना, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस?
3: बिल्कुल, दसवां टूर्नामेंट है, 10 बार इंडिया फाइनल में पहुंचा है, तो डोमिनेंस की अगर कोई परिभाषा होती है तो वो यही है। और जिस तरीके से आज खेल दिखाया है भारतीय टीम ने, हम पहले बात कर रहे थे कि रन में शायद हम पीछे रह गए, लेकिन गेंदबाजों ने वो कमी पूरी कर दी। और स्पिनर्स, खास तौर पे यहाँ बात करेंगे दीप्ति शर्मा की, क्या मैच विनर प्लेयर है। फॉर्मेट कोई हो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी वर्ल्ड कप में, और अब भी आप देखिए कि सबसे ज़्यादा 11 विकेट उनके नाम हो गए हैं एशिया कप में भी, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन।
2: जी हाँ, बहुत ही बेहतर प्रदर्शन दीप्ति शर्मा का। 26 रन देकर उन्होंने 3 विकेट लिए हैं, साथ ही साथ नंदिनी शर्मा को 2 विकेट मिले, दोनों विकेट उनको आखिरी 2 गेंदों पर मिले हैं। साथ ही साथ श्रीचरणी, जो इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस साल भारत की लीडिंग T20I विकेट टेकर हैं, उनके नाम एक विकेट। और प्रेमा रावत ने भी 21 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। रविंद्र, देखने में ओवरऑल बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा। एक समय लग रहा था कि हम 10-15 रन पीछे हैं, लेकिन बांग्लादेश कहीं से भी इस रन चेज में टक्कर देता नजर नहीं आया।
4: देखिए, शुरुआत में तो जैसे 2 ओवर निकले थे, 3 ओवर निकले, तो ऐसा लग रहा था कि टक्कर शेषा शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास एक ट्रम्प कार्ड है, तुरुप का इत्ता है, श्रीचरणी। ये बॉलिंग एनालिसिस, शायद उसके ज़्यादा विकेट्स नहीं मिले हैं, लेकिन जो 4 ओवर में 14 रन और एक मेड इन है, एक मेड इन T20 में होना बहुत बड़ी बात है। और ये जो बॉलिंग दिखा रहा है, ये पूरे मैच को पलट देती है। श्रीचरणी इस समय एक स्पिनर सारे अच्छे हैं, लेकिन जो श्रीचरणी बॉल कर रही है वो वाकई उसको लेवल बहुत ऊपर है। इसकी वजह से आपको अच्छी अच्छी टीमें इस समय धराशायी होती दिख रही है।
1: जी, और इसी बात को थोड़ा आगे लेके भी जाए तो बांग्लादेश की जो क्रिकेट में, मतलब बांग्लादेश के क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने शुरुआती फेज में, हम देखेंगे पहले 6 ओवर्स के अंदर, कोशिश जरूर करनी चाहिए थी कि एक फास्ट अटैक के थ्रू अग्रेसिव क्रिकेट से इनको लीड दिलवा सके, बट दे वर नॉट एबल टू स्टिक टू दैट मोमेंटम एंड पेसिंग। कंटिन्यूअस विकेट लॉस affected the Bangladeshi women very strongly today, Mona.
3: बिल्कुल, आप देखिए कि 4 विकेट निकल चुके थे, 70-75 रन का स्कोर था जब टीम का, और शुरुआत में लगा था कि 1-2 अच्छे स्ट्रोक्स लगाए थे, खासतौर पे जो दूसरे तीसरे ओवर में एक चौका आया था ज़बरदस्त, और भारतीय खिलाड़ियों से भी कुछ कैच छूटे। पहले प्रतिका ने कैच छोड़े, उसके बाद एक कैच बाद में भी छूटा, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये फील्डिंग लैप्सेस भारी पड़ जाए या बांग्लादेश के बैटर्स आज अच्छा खेल जाएंगे, लेकिन वो जो नियमित अंतराल पे उनके विकेट गिरते रहे और वो मोमेंटम बन ही नहीं सका, जिसको कहते हैं कि 150 रन भी अगर आपको बनाने हैं तो आपको एक एंकर चाहिए जो पारी को संभाल के खेल सके और दूसरे छोर पे बल्लेबाज को खुलकर खेलने की आज़ादी दे। वो कहीं नज़र नहीं आया, गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेल के बांग्लादेशी बल्लेबाज आउट होते चले गए।
2: इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं? जी बताएं। ये कह रहे हैं शेफाली वर्मा ने जिस तरीके की बैटिंग की, इनको वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी की याद आ गई।
4: बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपको याद आई, वीरेंद्र अच्छी बैटिंग करी उन्होंने, चाहे 2-3 चांसेस मिले, लेकिन वाकई अच्छी बैटिंग करके उन्होंने टीम को स्कोर को 150 तक पहुंचाया, नहीं तो टीम का स्कोर लग रहा था कि 125-30 पर ही खत्म हो जाता है।

0: लेकिन अगर लेकिन ऐसी बैटिंग उनसे कंसिस्टेंटली चाहिए, क्योंकि 6 ओवर जो पहले पावर प्ले के 6 ओवर होते हैं वो बहुत क्रुशियल होते हैं। हमने पहले बताया था कि बांग्लादेश को भी पहले 6 ओवर में 40 रन तो चाहिए चाहिए अगर एक अच्छा स्टार्ट मिलता है, क्योंकि स्पिनर्स के बाद गेम को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। इसीलिए वो मीडियम पेसर्स को अटैक भी कर रहे थे शुरू में कि इनको जितने ज़्यादा रन बटोरे जा सके, लेकिन वो श्री चन्नी ने वो 3रे ओवर में ही आके वो गेम को पाछा पलट दिया।
1: सवाल मेरा आपसे मोना ये होगा कि हम बात करते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट में काफ़ी बेहतरी हुई है ओवर द ईयर्स, इजाफा जिसको हम कहते हैं उनके खेल के प्रदर्शन में भी, लेकिन क्या आपको सही मायने में दिखता है दैट द बांग्लादेशी वुमेन्स क्रिकेट हैज़ इवॉल्व फॉर द बेटर और देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट इन बांग्लादेशी वुमेन क्रिकेट?
2: देखिए, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे टूर्नामेंट नहीं जीते जा सकते। बेहतरी हुई है, उनके पास कई अच्छी खिलाड़ियां हैं जिनमें से एक उनकी स्विंग बॉलर है मारूफा अख्तर, लेकिन एज अ टीम एज अ यूनिट आपको हर डिपार्टमेंट में अच्छा खेल दिखाना होगा। अगर एक डिपार्टमेंट कम रह गया है तो दूसरे को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, जैसा चैंपियन टीमें करती है। लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं कमी है अभी जो नज़र नहीं है, जो नज़र आती है कि आप जब तक ICC टूर्नामेंट बड़े टूर्नामेंट नहीं जीतोगे, एक पैरामीटर होता है आपके जो आपने प्रगति की है, जो विकास किया है, जो आपके प्रदर्शन में सुधार आया, उसके लिए आपके कैबिनेट में ट्रॉफीज़ भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस मामले में अभी बांग्लादेश जब तक कोई बड़ी ICC खिताब नहीं जीतता तब तक हम ये कह सकते हैं कि अभी भी वो विकास की राह पर है।
3: जब हम जीतते हैं तो बहुत सारी कमियां छिप जाती हैं रविंद्र जी। आज 40 रन की इस जीत में एक जो कमजोर पहलू था वो भारतीय फील्डिंग थी। 3 कैचेस छूटे, कुछ मिस चांसेस हमने रनआउट में भी देखे, और प्रतिका रावल इस टूर्नामेंट में अब तक 4 ड्रॉप कैचेस उनके नाम है।
0: देखिए, बिल्कुल सही कहा क्वेश्चन आपका कि ये जीत में बहुत कुछ छुप रहा है, लेकिन ये आज बांग्लादेश की इमेच्योर बैटिंग थी। कहीं पे कोई बैटिंग लग नहीं रही थी कि कोई जिस हिसाब से लेवल है वहाँ खेलना चाहिए। प्लेयर्स एक ही शॉट खेली जा रहे हैं, स्वीप करे जा रहे हैं। उनको किसी ने ये नहीं बताया कि ऑफ साइड में कवर्स पर सामने खेलना चाहिए, वी में खेलना चाहिए। इसके लिए अभी इनको बहुत काम करना पड़ेगा। जिस हिसाब से बांग्लादेश की जो बॉलिंग अच्छी है, बॉलिंग में नो डाउट ये वैसे मैडम ने बताया, अच्छे इन स्विंगर बॉलर मिल गए आपको, एक दो बॉलर अच्छे हैं, लेकिन आपको बैटिंग में बहुत काम करना पड़ेगा। नहीं तो ये एक जो आज जिस हिसाब से इंडिया ने फील्डिंग करी है, और जिस हिसाब से इंडिया में सिर्फ चन्नी को छोड़ के बाकी बॉलर इतने ऐसे नहीं थे कि उनको रन नहीं बनाए जा सकते थे। अल्टीमेटली आपने कोई बैटिंग नहीं करी, लेकिन तब भी 40 रन का डिफरेंस रह गया। अगर दो प्लेयर आपके अच्छी बैटिंग करते तो ये रन आराम से चेज हो सकते थे।
1: या एंड आई थिंक समवेयर ये भी चीज हमने देखी आज की, जिस तरह से जो बांग्लादेश का इनिशियली अप्रोच दिखा था, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, ऐसा लगा कि वो कोई एक प्लान लेके उतरे हैं कि पावर प्ले में कितने रन बनाने। बहुत जल्दी उनका वो सारा अप्रोच डिजॉल्व होता हुआ नजर आया, रेकलेस इम्पल्सिव शॉट्स, टारगेट इतना बड़ा था नहीं, फिर भी उनके अंदर जो एक कहते हैं ना एक मचलता दिखाई दी कि रन्स को जल्दी जल्दी बटोरो किसी तरीके से। द इमेच्योरिटी इन देयर क्रिकेट वॉज वेरी ऑब्वियस मुना।
2: इमेच्योरिटी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रेशर, सेमीफाइनल का प्रेशर भी हावी हो गया टीम पर, और वो उस प्रेशर में विकेट एक के बाद एक गंवाते चले गए। और जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बहुत गहराई नहीं है उनकी बल्लेबाजी में, 2 या 3 बल्लेबाज हैं जिनसे उम्मीद की जा रही थी, उनमें एक कप्तान निगार सुल्ताना भी है, तो जब वो नहीं चल पाए तो निचले क्रम से तो उम्मीद करना ही बेमानी था।
3: जी हाँ, उनका लोअर मिडिल ऑर्डर नहीं चला। ज़रूर शुरुआती दौर में जो ओपनिंग बैटर्स हैं उन्होंने ज़रूर प्रदर्शन किया, लेकिन वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाया मिडिल ऑर्डर पर। और कहीं ना कहीं जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जो अनुभवी भारतीय गेंदबाजी है, चाहे वो दीप्ति शर्मा हो, चाहे इनफॉर्म श्रीचारिणी हो, साथ ही साथ प्रेमा रावत, जिनके लिए बहुत बढ़िया ये टूर्नामेंट घट रहा है, वो भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा। नंदिनी ने भी आज दिखाया कि क्रूशल मौकों पर वो किस तरीके से विकेट निकाल सकती हैं टीम इंडिया के लिए। क्रांति गौड़ एक पहलू वो भी है चर्चा करने के लिए कि शुरुआती ओवर्स वो करती हैं लेकिन मनचाही सफलता नहीं मिल रही, इस पर हम बाद में लौटेंगे। चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ, जहां सबसे पहले बांग्लादेश की कैप्टन को सुनते हैं कि वो क्या कह रही
4: है। I thought about 20 runs much more, isn't it?
5: Yeah, actually we didn't bowl well today, because what we have done in the last 3 games, we bowled really well as side of, I guess we fielded really well. We lost so many chances over there, so yeah, it happened.
4: What do you put down to? Probably pressure of playing a semi-final against India?
5: I don't think so. No, that was the pressure, I guess.

0: and possibly that was one of the things that worked better for India as compared to Bangladesh. Your take.
1: जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि reckless batting बांग्लादेश की रही, वो अच्छी बॉल को इज्जत देने की ही बात है कि भारतीय बल्लेबाजों ने ढीली गेंदों का इंतजार किया, अच्छी गेंद को इज्जत दी. तो मेरे ख्याल से हरमनप्रीत का कहने का मतलब वही था कि जो रेकलेस शॉट्स थे वो हालांकि कुछ बचा जा सकता था, लेकिन एक कैप्टन का जो ऑब्जर्वेशन है उस हिसाब से यह है कि अच्छी गेंदों को उन्होंने इज्जत दी और ढीली गेंदों को नसीहत दी, जो बांग्लादेश की टीम जैसे आप कह रहे नहीं कर पाई. और जिस तरह से हमने देखा उनके विकेट जिस अंदाज में गिरे हैं, तो उससे यही है कि जो आपके यहाँ की अच्छी गेंदों को इज्जत देना.
2: एक बार फिर आज के मैच में दीप्ति शर्मा ने दिखाया कि अनुभव का कोई तोड़ नहीं, और जिस लेंथ पर वो खास तौर पर गेंदबाजी कर रही थी, बांग्लादेश के बैटर्स सोच रहे थे कि फ्रंट फुट पर खेले बैक फुट पर खेले, और कुछ एक गेंद जो स्पिनर्स के लिए कही जाती कि खिंची हुई लेंथ पर गेंद, और वहीं पर उनको 3 विकेट मिल गया.
3: बिल्कुल, देखिए ये ना एक्सपोजर की बात है, खेलने की बात है, कितना आप खेलते हैं उस पर बहुत मैटर करता है. जो इंडिया के बॉलर्स खेलते हैं इनके पास एक्सपोजर है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना खेलते हैं उतना मुझे लगता नहीं कि बांग्लादेश की टीमों के पास इतने रिसोर्सेज भी होंगे या इतने सब मैचेस मिलते होंगे जितने इंडिया को मिलते हैं. इसका यही चीज़ का बेनिफिट है. लेकिन ये जो फिर जो आपने बताया है, आप ये देखिए जब अच्छी टीमें आती हैं तो इस चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं. जहाँ पर आप देखिए वर्ल्ड कप वगैरह में इंडिया जाती है तो उसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के सामने हम लोग नहीं टिक पाते हैं, वहाँ पे हम लोग इन चीज़ों मात खा जाते हैं, क्योंकि वो उनकी फील्डिंग लेवल और हमारी फील्डिंग लेवल में बहुत फर्क है. ये इंडियन जो हमारी टीम को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इनसे जीत तो रहे हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी कमियाँ हैं, जहाँ आपने कैचे छोड़ी हैं, और जो अभी उन पर ज़्यादा बैट्समैन बैटर दिख नहीं रहे थे जो कि अटैक कर सकें, लेकिन अच्छी टीमों में आपको अच्छे बैटर मिलेंगे और अच्छी फील्डिंग भी मिलेगी, वहाँ पर आपके जो कैचेस बहुत महंगे पड़ने वाले.
0: राइट, मोना आपके पास आती हूँ. उससे पहले मुझे बताया जा रहा हमारे साथ इस वक्त एक श्रोता जुड़ गया है, उनसे भी बात कर लेते. नमस्कार, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे? गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप. थैंक यू सो मच, थैंक यू. जी, जेमी रॉड्रिक्स के बारे में बता दें कि उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से वो मैच का हिस्सा नहीं बन पाई है काफ़ी समय से. लेकिन दूसरा, इन्होंने यहाँ पर हमारे बॉलर के ऊपर बात करी है मोना, और इनका ये कहना था कि जिस तरीके से प्रेमा रावत है, उनकी जगह अगर राधा यादव होती तो शायद ज़्यादा बेहतर बॉलर का एक हमें कह लीजिए सब्स्टिट्यूट या फिर ऑप्शन मिल जाता. प्रेमा रावत ने 4 ओवर में 21 रन देके 1 विकेट निकाला एट एन इकोनॉमी ऑफ 5.2 एंड दैट इन इटसेल्फ, जिसमें उनकी बांग्लादेश की कप्तान यानी निगार सुल्ताना जी, वो उनका सबसे इम्पोर्टेंट विकेट रहा है.
1: आप मुझे बताओ, T20 क्रिकेट में 6 से नीचे की इकोनॉमी से अगर कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है और इम्पोर्टेंट विकेट भी ले रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे समय में आप उसके टीम में रहने पर सवाल उठा सकते हो. जो आपको परफॉर्मेंस चाहिए, और सिर्फ इस मैच में नहीं, प्रेमा ने थ्रू आउट टूर्नामेंट अच्छी गेंदबाजी की है, अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है टीम के लिए, और अभी तक भारत का अपराजय रहा है अभियान जो है, एक भी मैच हम हारे नहीं है, तो एक अच्छा खासा विनिंग कॉम्बिनेशन है. मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी खिलाड़ी की भूमिका पर आप उंगली उठा सकते हैं.
2: प्रेमा रावत ने इस टूर्नामेंट में इस मुकाबले से पहले 5 विकेट लिए थे, तो अच्छी फॉर्म में हैं, और आज भी उन्होंने एक सफलता हासिल की है. एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं प्लेयर ऑफ द मैच कार्यक्रम में. नमस्कार, स्वागत है आपका. जी रेड्डी साहब, स्वागत है, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप.

0: भारती फुलमाली को लेकर इनका सवाल है, लेकिन बहुत ज़्यादा गेंदे इस टूर्नामेंट में उनको खेलने को नहीं मिली है रविंद्र, बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं श्रोता भारती को लेकर।
1: बिल्कुल, देखिए उनको पूरा मौका नहीं मिल पाया भारती को भी, लेकिन अभी पूरी तरह आप देख नहीं पाए, अच्छी अच्छी बैटर है, लेकिन आप ये देखिए जो बाहर के जो बेंच थे उसमें कोई बैटर नहीं है, आप खिलाएंगे किसको, आप सारे बॉलर्स हैं और एक विकेट कीपर है, तो कोई बैटर नहीं आपके पास, तो मुझे लगता है कि अब आपको इन्हीं से जाना पड़ेगा और इन्हीं पर ट्रस्ट करना पड़ेगा और उम्मीद करिए कि ये अच्छी बैटिंग करके दिखाएंगे।
2: राइट, ओके, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं बिकॉज वी आर ऑल्सो लुकिंग एट द फाइनल्स अब तो, और भारत के चांसेस मोना आपके पास भी आऊंगी रवि, आपसे पूछूंगी आप दोनों किस प्रकार से देखते हैं फाइनल के अंदर। अभी हमें पता होना चलना है कि कल के मुकाबले में जो पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में होने वाला है, जो भी उस मुकाबले को जीतेगा भारतीय टीम का अपोनेंट बनेगा फाइनल्स के मुकाबले में, और भारत के चांसेस आपको किस तरीके के दिखते हैं?
3: देखिए अभी तो पहले हमें पता चलना चाहिए कि कौन खेल रहा है भारत के खिलाफ। वैसे ज़्यादा चांसेस है कि श्रीलंका से ही फाइनल होगा, श्रीलंका पहले भी खिताब जीत चुका है दो बार, और इस टूर्नामेंट में अगर श्रीलंका की बात करें तो बांग्लादेश ने ही उसे बहुत कड़ी टक्कर दी थी, तो मुकाबला भारत के खिलाफ खेलना, वैसे भी 7 बार की चैंपियन भारतीय टीम है, एक प्रेशर होगा, और इतनी कन्विंसिंगली जीत कर जा रही है फाइनल में टीम, तो अब देखना होगा कि कल श्रीलंका का प्रदर्शन कैसा रहता है, उसके आधार पर ही कोई कयास, और उससे पहले भारत को अपनी जो कमज़ोर कड़ियां हैं उनको दुरुस्त करना होगा।
2: ओके
0: जी हाँ, कमज़ोर कड़ियों की जब चर्चा हो रही है तो पहली कमज़ोर कड़ी जो भारत का है वो मध्यक्रम, आज भी उस तरीके से प्रदर्शन नहीं हो पाया, चाहे हरमन का बल्ला हो चाहे प्रतिका रावल हो, ऋचा घोष भी उस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी नहीं कर पा रही हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर में हमने देखा कि भारती की चर्चा हुई, बहुत कम गेंद उनको खेलने को मिली, साथ ही साथ दीप्ति शर्मा ने आज ज़रूर बेहतर प्रदर्शन किया। और दूसरी कमज़ोर कड़ी जो इस टीम इंडिया की है वो है फील्डिंग, क्रूशियल मौक़ों पर अगर आप कैचेस छोड़ेंगे तो आप निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप उस मोमेंटम को लूज करेंगे। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, नमस्कार जी, बताएं कहां से बोल रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं जी? प्रकाश जी, जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप?
1: नमस्कार,
4: तो सर हमारे विमेंस टीम में जो इंडिया विमेंस टीम है, आप वो बेहतर जवाब दे पाएंगे कि सर हमारे मिडिल ऑर्डर में ना फायर पावर की कमी है, या फिर देखो मेंस टीम में जैसे कोहली है स्ट्राइक रोटेट बार बार होती है, विमेंस टीम में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि फायर पावर आए या फिर डोमेस्टिक प्लेयर को चांसेस दिए जाए?
1: देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बैटिंग में मुझे थोड़ी कहीं ना कहीं वीकनेस लग रही है, जो जेमिमा के ना होने से भी थोड़ा फर्क पड़ रहा है बीच में टीम में, भारतीय अभी पूरी तरह बैटिंग अब उनको पूरी तरह मिली नहीं है, और हरमनप्रीत अभी उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, जब 3-4 बैटर आपके सामने ऐसे केसेस आ जाएँ तो मिड ऑर्डर हमेशा थोड़ा सा चरमरा सा जाता है, स्मृति उसकी कमी को पूरा कर रही हैं, शेफाली पूरा कर रही हैं, और प्रतिका रावल से हमें उम्मीद है कि इस समय प्रतिका रावल का चलना ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि फाइनल में थोड़ा ठीक जो भी आज कमियाँ रहेंगी उनको मैनेजमेंट ठीक करेंगी, और ये बैटिंग आपको थोड़ा बेटर होगा अगले मैच में, बेटर दिखेगी फाइनल्स में।
2: राइट, सो अगले मैच में हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि यानी अगला मैच तो अब क्या कहें, सिर्फ फाइनल्स ही है, एंड द बिग डे जो कि रविवार को होगा जब भारतीय टीम सामने आमने होगी इधर श्रीलंका या फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो उसमें हमें ये उम्मीद रखनी पड़ेगी कि प्रतिका रावल जिन्होंने आज एक बार फिर से एक मेडियोकर पारी खेली हम कह सकते हैं, पारी को संभालने वाले किरदार को निभाने आई थी नंबर 3 पर, लेकिन खेल के गई जिसमें 24 में 20 रन उन्होंने बनाए 24 गेंदों में, बट उससे ज़्यादा बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न जो मुझे लगा वो थी हरमन कौर मोना, जिन्होंने काफी बॉले 16 गेंदे इनिशियली वेस्ट करी और फिर मोमेंटम पिकअप किया। अगर श्रीलंका संडे को हमारे सामने आती है तो ये पॉइंटर्स या ये जो एरिया ऑफ कंसर्न्स हैं बहुत बुरी तरह से भारतीय टीम के एक्सप्लॉइट हो सकते हैं अगर हमें अच्छी ओपनिंग नहीं मिली, और उस दिन सामने बांग्लादेश नहीं होगी।
3: मैं मैच के बीच में देख रही थी कि ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था कि आज टॉकिंग पॉइंट क्या होगा, हरमनप्रीत कौर का स्ट्राइक रेट या ड्रॉप्ड कैचेस, तो मुझे लगता है कि ड्रॉप्ड कैचेस पे तो काफ़ी बात हो गई है, लेकिन हरमनप्रीत का स्ट्राइक रेट लगातार वर्ल्ड

कप में भी काफ़ी इस पर बात हुई थी, लेकिन बाद में एक पारी उन्होंने अच्छी खेली थी। तो जब आपके पास स्मृति मंधाना या शेफाली वर्मा अगर जल्दी आउट हो जाते हैं, तो सबसे अनुभवी और अच्छी बल्लेबाज हैं हरमनप्रीत। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले बड़ी पारियां, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ उन्होंने बड़ी बड़ी पारियां खेली हैं, तो लोगों को उसी हरमनप्रीत कौर का इंतज़ार है जो कप्तानी पारी खेल

0: का इंतजार है जो कप्तानी पारी खेले, मोर्चे से अगुवाई करे, वो कहीं इंटेंट अभी नजर नहीं आ रहा है। तो फाइनल मैच है, उम्मीद यही करेंगे कि कप्तान एक उस पुरानी हरमनप्रीत कौर की झलक देखना चाहेंगे जो मैच जिताती थी अपने बल्ले से।
1: रविंद्र जी, जब टीम जीत रही होती है तो कोई भी कप्तान या टीम मैनेजमेंट, जिसमें कोच भी शामिल होता है, वो टीम की संरचना में बदलाव नहीं करना चाहता। यहाँ पर जैसे कि हम वीक लिंक की बात कर रहे हैं, तो वीक लिंक में हम देख रहे हैं कि मध्यक्रम है जहाँ पर ऑप्शंस नहीं है। क्रांति गौड़ को विकेट नहीं मिले हैं, चूँकि ये स्पिन फ्रेंडली ट्रैक हैं, ज़्यादातर स्पिनर से गेंदबाजी कराई जा रही है। क्या देखते हैं यहाँ पर, रेणुका ठाकुर भी हैं इस 15 सदस्यीय टीम में, बड़े मैच में, चूँकि हमने देखा कि मारूफा अख्तर को जिस तरीके से स्विंग मिल रही है, रेणुका उसमें महारत हासिल कर चुकी हैं, क्या उनको चांस देने के बारे में सोचा जा सकता
2: है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही पे है कि क्रांति गौड़ के बदले आप रेणुका को चांस दे सकते हैं, क्योंकि रेणुका का बॉल स्विंग भी ज़्यादा होता है और क्रांति उतना अच्छा बॉल नहीं कर पा रही जिस हिसाब से है। ये भी डिपेंड करता है कि विकेट टर्निंग ट्रैक्स है तो मीडियम पेसर्स को ज़्यादा मदद नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि क्रांति से अगर वो रेणुका नेट्स पर अच्छा बॉल कर रही है, मैनेजमेंट को लग रहा है कि अगर उनको उनका टच अच्छा है तो खिलाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
3: अब क्विकली थोड़ी सी एक बार कल के मुकाबले की भी बात कर लेते हैं, श्रीलंका अप अगेंस्ट पाकिस्तान। श्रीलंका कम इन अनडिफीटेड, अनबीटन, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अपने ग्रुप बी के तीनों मुकाबले ये टीम जीत कर आ रही है, कॉन्फिडेंस बहुत हाई होने वाला है। पाकिस्तान समहाउ हैज़ पिक्ड अप द मोमेंटम एट द राइट टाइम, बिकॉज जस्ट कहते ना पीकिंग एट द राइट टाइम, जो कि एक चीज़ वो एक टर्म होती है, पाकिस्तान उस तरह की स्थिति में है। कल का मुकाबला आप किस तरह से आंकती है मोना?
0: मुझे लगता है श्रीलंका का पलड़ा ही भारी रहेगा। एक तो डिफेंडिंग चैंपियन है, पूरे टूर्नामेंट में एक मैच में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था लेकिन अच्छा प्रदर्शन रहा है, कई मैच विनर है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन पाकिस्तान कर रहा है, मोरल बहुत डाउन हुआ होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ग्रुप फेज में एक भारत ही था जिसके खिलाफ हार्ड टेस्ट था उसके लिए और उसमें वो बिल्कुल ही 19 साबित हुआ। तो काफ़ी कठिन चुनौती है पाकिस्तान के लिए कि रीग्रुप करके श्रीलंका जैसी टीम के सामने अच्छा परफॉर्म करना। तो मुझे लगता है इस मैच में श्रीलंका का पलड़ा ही भारी होने वाला है।
1: रविंद्र, कल दो ऐसे बॉलर्स के बीच भी फाइट देखने को मिलेगी। एक तरफ चमारी अट्टापट्टू जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 7 विकेट लिए, पाकिस्तान के लिए नासरा ने 6 विकेट चटकाए, तो वो बैटल भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
2: बिल्कुल होगा, नो डाउट कि लेकिन जो इस समय श्रीलंका का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है, मुझे लग रहा है कि और जो उनकी थोड़ी बहुत बैटिंग में फर्क है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग और श्रीलंका की बैटिंग में ही फर्क रह जाएगा और वो श्रीलंका ही एकमात्र ऐसी टीम लगती है भारत के बाद इस एशिया कप में जो कि जहाँ पर उनके जो कप्तान है बहुत डेंजरस प्लेयर है, अगर वो खड़े हो जाते हैं तो T20 में अकेला ही मैच करके लिए मैच खत्म कर सकते हैं, 70-80-90 रन बनाने की दायरा रखते हैं वो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे उनको जो कप्तान अट्टापट्टू है उनका सबसे बड़ा डिफरेंस रहेगा।
3: राइट, थोड़ा सा पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। हमें पता है पाकिस्तान है इंडिया के जब मुकाबले होते हैं तो एक राइवलरी ऑन फील्ड कही जाती है, लेकिन पर से वो राइवलरी अब उतनी दिखती नहीं है। खासतौर से अगर हम पाकिस्तान के इस टूर्नामेंट के परफॉर्मेंस की भी बात करें तो थाईलैंड की अगेंस्ट 119 में थाईलैंड ने पाकिस्तान को समेट दिया था या रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। भारत के खिलाफ वाले मुकाबले को तो हम भूल नहीं सकते, मेयर 55 रन रहे। सो पाकिस्तान का जो कहते हैं ना एक इंटरनल कॉन्फिडेंस होगा इस सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर आते हुए, मनोस्थिति भी उसके साथ साथ, आपको लगता है कि दे विल बी एबल टू प्ले फॉर देयर प्राइड एंड पुट अप अ गुड फाइट टुमारो?
0: वही मैं आपसे कह रही थी कि पाकिस्तान का मोरल पूरी तरह से डाउन होगा भारत के खिलाफ जो उनका प्रदर्शन रहा है। और ये जो राइवलरी की बात करते हैं, मुझे लगता है अब ये बंद कर देनी चाहिए, कोई राइवलरी रह नहीं गई है ना मेंस क्रिकेट में ना विमेन क्रिकेट में, जमीन आसमान का फर्क है प्रदर्शन में। और उसमें एक एक्सपोजर की भी बात है, इंडियन क्रिकेटर्स इतना क्रिकेट खेलते हैं, पाकिस्तान में अब वो क्वालिटी रह नहीं गई है जो हम बार बार मैदानी प्रतिद्वंदिता की बात करते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा बड़ी प्रतिद्वंदिता भारत और ऑस्ट्रेलिया की लगती है। तो वो मोरल डाउन है पाकिस्तान का, परफॉर्म नहीं कर पा रही है टीम और कल श्रीलंका की चुनौती भी उनके लिए बहुत कड़ी होने वाली है। तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बहुत कड़ी टक्कर या कोई उलटफेर की संभावना, लेकिन फिर ये अप्रत्याशित प्रारूप है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो आकलन होता है, हमने पहले भी बात की थी कि वो पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे होता है, रिकॉर्ड के आधार पर होता है, प्लेयर्स के फॉर्म के आधार पर होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज के आधार पर होता है, और वहाँ मुझे लगता है श्रीलंका काफ़ी आगे है।

0: Right, so hopefully it's going to be bright days tomorrow for everyone. I think bright days तो already हर भारतीय क्रिकेट फैन के लिए हो चुके हैं, because भारतीय महिलाओं की टीम इस ऑन गोइंग एशिया कप 2026 के फाइनल्स में एक बार फिर से पहुंच चुकी है. द 10th कंजेकेटिव एंट्री फॉर द इंडियन वुमेन आउट देयर इन द एशिया कप और 2026. आनंद
1: जी हाँ, 40 रन से आज भारत ने जीत दर्ज की है और हम सब उम्मीद करेंगे कि जब रविवार को भारतीय टीम फाइनल में उतरेगी तो एक नया इतिहास लिखेगी. प्लेयर ऑफ द मैच कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ने के लिए बीसीसीआई कोच रविंद्र सिंह जी आपका और वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पारसारथी आपका बहुत बहुत आभार.
2: थैंक यू.
1: इस कार्यक्रम में हमें टेक्निकल सहयोग दिया लीला सेठी ने, उर्मिला कपिला और नागेंद्र पटेल ने. साथ ही साथ प्रस्तुतिकरण में सहयोग प्राप्त हुआ वंदना भारद्वाज का, माधवी तिवारी का और स्वाति कपूर का. और इस पूरे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शाहनवाज खान. आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ. नमस्कार.
0: नमस्कार.
3: प्लेयर ऑफ द मैच.
4: अभी आप विमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे.
5: You have been listening to a special program, Player of the Match, of the first semi-final T20 cricket match played between India and Bangladesh of Women's Asia Cup T20 Cricket Tournament 2026. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.
6: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं. इस समय रात्रि के 11:42 हो चुके हैं. अब प्रसारण समाप्त होते हैं. कल प्रातः 5:53 पर आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे. तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए. जय हिंद.